ये ठंडी हवा और खुली फिजा जैसे हमें याद दिलाती है कि जीवन को बोझ नहीं एक खूबसूरत सफर की तरह जीना चाहिए। हर सांस में प्रकृति का शुक्रिया और हर कदम में आगे बढ़ने का विश्वास हो तो जीवन थोड़ा सा सरल हो जाता है।

हवा मतवाली फिजा संसार सुहाना लगता है, मत होश हवा मतवाली फिजा संसार सुहाना लगता है। कर लेना किसी से प्यार कहीं दिल अपना दीवाना लगता है, मत होश हवा मतवाली।

जब नींद से जागती हुई बहार चारों ओर रंग भरती है तो मन भी कह उठता है, उठो कुछ नया करो। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को सुंदर बनाने की कोशिश ही जीवन को सार्थक बनाती है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 26वीं तिथि तदनुसार 17 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस का। 7:10 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात। 8:45 का समय रहेगा प्रोग्राम म्यूजिकल दिल्ली का।

1:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल। दोपहर 2:30 का समय रहेगा प्रोग्राम संगीत.com का। 3:10 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मन भावन। शाम 5:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गाते गुनगुनाते का। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सांझ ढले। 8:10 का समय रहेगा प्रोग्राम मधुरिमा का।

रात्रि 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम हार श्रृंगार का और 11:40 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से 1 महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The three-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years of public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as Prime Minister of India. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown Varnagar in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Varnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. Delhi government will organise four major programmes in the national capital today on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday. The programmes are centred on service, dedication and public participation. Additionally, to mark the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public life, Delhi government will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan. During this period, various projects related to transport, roads, sewerage, water treatment, education, electricity, public amenities and urban beautification will be inaugurated or have their foundation stones laid. Delhi government has approved the construction of a 250-bed super speciality cum trauma block at Guru Tegh Bahadur Hospital in Dilshad Garden of Delhi. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi. The Chief Minister said that once the new block becomes operational, critical patients will have access to 24/7 emergency and trauma care, specialist treatment, diagnostics, surgery and intensive care at one place. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, Ministry of External Affairs MEA spokesperson Randhir Jaiswal said, the ministry has seen reports in this regard and India's position on this matter is clear and consistent. He said there is no boundary between Pakistan and China. Mr. Jaiswal said, New Delhi rejects the Pakistan-China Boundary Joint Commission, which is without any legal basis. MEA spokesperson reiterated that the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and will always remain integral and inalienable parts of India. He said India has never recognized the so-called China-Pakistan Boundary Agreement of 1963 and have consistently maintained that it is illegal and invalid. The US Federal Reserve has raised its benchmark interest rate for the first time since 2023 in an effort to lower persistent higher inflation. The central bank also signaled that another rate hike could occur later this year. The quarter point increase lifts the Fed's key rate to about 3.9% and over time could result in higher borrowing costs for mortgages, auto loans and credit cards. In a set of quarterly projections, the Fed also signaled that its rate cutting committee expects to hike rates a second time to 4.1%. In men's cricket, India will play the final match of the three-match T20 International Series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India has already secured the series with convincing wins in the first two matches, while Afghanistan has only managed brief moments of resistance. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूँ मैं सुरती। सुप्रभात, आइए प्यारी सी सुबह की शुरुआत करें एक बहुत ही प्यारे से भजन के साथ। जय श्री राम।

हमारे आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है अगर हम सीखना चाहें तो। जैसे कि दरवाजा कहता है अतिथि का स्वागत करो, घड़ी कहती है काल के चक्र को पहचानो, खिड़कियां कहती हैं दूर दृष्टि और दुनिया का ज्ञान रखो, छत कहती है उच्च विचार और ऊंची आकांक्षा रखो, लेकिन धरती क्या कहती है? धरती कहती है कि पग सिर्फ मुझ पर ही रहने दो।

हमारे जो स्वप्न हैं वो विशाल, हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची, हमारी प्रतिबद्धता गहरी और हमारे प्रयत्न जो हैं बड़े होने चाहिए।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरी यानी सुरती के साथ, और ये है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। विचार जो है इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें अपने चिंतन को रचनात्मक और उच्च स्तरीय विचारों में ही संलग्न रखना चाहिए।

दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए लोग मिन्नत करने लगें।

जाति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोक से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झोटा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस और अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे संस्कृत में समाचार, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ठीक 7:10 पर सुनना न भूलिएगा प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरति के साथ। लेकिन अब वक्त हो गया है समाचारों का, तो आइए सुनते हैं अब संस्कृत में समाचार FM गोल्ड पर।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशोभूमि इत्यत्र ऐषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम।

0: बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री को भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 तक की स्थिति समीक्षा के अनुसार इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जीवित चीते और उनकी संतानों के साथ बोत्सवाना से हाल में लाए गए चीते भी शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today morning at Yashobhoomi in New Delhi. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to System.

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।

0: लगता है।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है।
2: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
4: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आज का मौसम कैसा रहने वाला है भाई? सुबह सुबह जब मैं उठी तो अचानक से तेज हवा चलने लगी, बहुत तेज आंधी आई और उसके बाद थोड़ी देर के लिए बारिश हुई और उसके बाद सब कुछ थम गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए शुरुआत ऐसी हुई है, तो पूरा दिन कैसा रहेगा? आपको बता दूं कि दिल्ली में आज का मौसम जो है, मौसम विभाग के अनुसार आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना वाला रहने वाला है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम जो है 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और दिन में जो है आंशिक धूप के साथ बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं भी चल सकती है। भाई मौसम चाहे जैसा भी हो, प्यारे प्यारे गाने एफएम गोल्ड पर आपका साथ दे रहे हैं, है ना?
7: ना
8: दिल में मेरे आज क्या है,
7: क्या है?

क्या बात है। क्या आप अपनी आंखों की देखभाल करते हैं? क्या आप अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ज्यादातर टाइम तो मोबाइल में ही बिता कर गुजारते हैं। जानते हैं आंखें बहुत अनमोल और कीमती होती हैं, इसलिए सुबह सुबह उठकर सबसे पहले इनका ध्यान रखने की शुरुआत से ही दिन की शुरुआत करें। क्या करना है? सुबह उठकर साफ और नॉर्मल वाटर से हल्के छींटे मारकर अपने रात भर की गंदगी को निकालते हुए आंखों को ताजगी देनी है। नींद से जागने पर आंखें मलने की बजाय आप अपनी आंखों को नॉर्मल रखें, क्योंकि आंखें मलने से जो है संक्रमण या फिर जलन हो सकती है। हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही उठते हैं मोबाइल फ़ोन हाथ में ले लेते हैं। जानते हैं ये जो मोबाइल फ़ोन आंखों के सामने आता है, इसकी जो रोशनी है वो आंखों को टेंशन देती है, आंखों का तनाव बढ़ाती है, तो इसे ना करें सुबह उठते के साथ ही तो एटलीस्ट। और सुबह उठकर पर्याप्त पानी पीते हैं तो वो शरीर के साथ साथ आंखों को भी नमी पहुंचाने का काम करता है। और हाँ, सुबह की ताज़ी हवा में टहलना ज़रूरी है और कुछ मिनट तक प्राकृतिक रोशनी के पास बिताना भी ज़रूरी है। बाकी तो आप जानते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, फल और ओमेगा 3 से भरपूर चीज़ें शामिल कीजिए और अपनी आंखों को बेहतरीन, खूबसूरत और सुंदर बनाइए, क्योंकि यही आंखें जो हैं हमें इस बेहतरीन दुनिया का आनंद लेने में साथ निभाती हैं।

0: गोल सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ वक्त हो गया है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का, ठीक 8:45 पर म्यूजिकल दिल्लगी में करूंगी ढेर सारी बातें। सुनते रहिए अपना मनपसंद आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और अब वक्त है समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का, आइए सुनते हैं।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

राह कठिन हो तो हौसला और बड़ा कीजिए। हर सुबह को एक नई शुरुआत माना कीजिए। जो बीत गया वो सिर्फ एक सबक था बीते कल का। जो सामने है उसे अपना बनाना सीखिए। श्रोता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन हर सुबह हमें एक और मौका जरूर देता है। कल की नाकामियां हमारे रास्ते का पत्थर बन सकती हैं, या फिर वही पत्थर हमारी सीढ़ी भी बन सकता है। ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है। बड़ी बात ये नहीं है कि हम कितनी बार गिरे, बड़ी बात ये है कि हर बार उठकर हमने फिर चलना शुरू किया या नहीं। और सबसे अच्छी बात ये है कि शुरुआत करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। आज की ये सुबह ही काफी है। इसी नई उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ

0: मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी खूबसूरत सहयोगी सरबजीत कौर. हेलो सरबजीत.
1: हेलो वैष्णवी. एंड ऑफ कोर्स विद दिस होप दैट एवरी डे ब्रिंग्स इट्स ओन सेट ऑफ एनर्जीज एंड पॉसिबिलिटीज वी वेलकम यू वंस अगेन टू टुडेज एडिशन ऑफ आज सवेरे. द नेक्स्ट 30 मिनट्स आर गोइंग टू बी पैक्ड विद न्यूज विच शैल बी फ्रॉम यू नो द नेशनल न्यूज. Also, international news will be roped in. There'll be Metro City updates. And of course, the last and most interesting segment, the historical segment, where we'll flip the pages of history to see what makes 17th of September so, so special. So without much ado, let's begin the program with the news headlines. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi, New Delhi this morning. He will also address the gathering. The three-day event being held on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem, will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups and students from across the semiconductor and electronics sector. The event will showcase India's growing semiconductor ecosystem and provide a platform for industry leaders, innovators and young talent to connect and collaborate.
0: तो पहली खबर में तकनीक और नवाचार पर खास नजर रही और अब बढ़ते हैं जनसेवा तथा देशव्यापी अभियान से जुड़ी अगली खबर की ओर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज गुजरात के वडनगर से एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत होगी. इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे. वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा और रुद्राभिषेक किया जाएगा. वाराणसी से वडनगर तक सेवा यात्रा में शामिल करीब 500 युवा बाइकर्स को भी सम्मानित किया जाएगा.
1: An e-auction of mementos and gifts received by Prime Minister Narendra Modi will commence from today. Addressing the media in New Delhi, Minister of Culture and Tourism Gajinder Singh Shekhawat said around 1,500 items have been kept for auction this year, including painting, textiles, statues, antiques and handicraft artworks representing India's diverse cultures, faiths and traditional craftsmanship. A total of 1,498 mementos are being offered in this edition.
0: और अगली खबर की ओर रुख करते हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया है. संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी. मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा.
2: 25,000 रुपीस पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शंस. इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा. जो कि 15-25 वाले बैंड में थे, दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स. भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीस एवरी ईयर.
1: And listeners, now some heartening story from India's wildlife conservation efforts, where India's cheetah population has risen to 52, 4 years after cheetahs were brought back to the country from Namibia, South Africa and Botswana. The reintroduction program marked the world's first intercontinental translocation of large wild carnivores. According to the latest status review, 32 cubs have been born in India since the program began. At present, 49 cheetahs are in Kuno National Park, while 3 are in Gandhi Sagar Sanctuary. The review also says that 8 of the 12 South African cheetahs introduced in 2023 have survived. Along with them, 10 India-born offspring have taken the South African origin population and its progeny to 18. Authorities say the survival of breeding females and second-generation cubs marks an important stage in India's cheetah reintroduction program.
0: वन्यजीव संरक्षण के इस सकारात्मक खबर के बाद अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, जहां स्थानीय उत्पादों और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है. मेघालय के तुरा में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनी 2026 और रोड शो का कल शुभारंभ हुआ. इसका आयोजन स्थानीय उत्पादों का उत्सव, स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा और मेघालय को सशक्त बनाना विषय पर किया जा रहा है. प्रदर्शनी का उद्देश्य मेघालय की रचनात्मकता, शिल्प कौशल

0: नवाचार और उद्यमिता को प्रदर्शित करना है। इसमें राज्य के विभिन्न हिस्सों के स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई उत्पादों के 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें खासी हिल्स की 6 इकाइयां भी शामिल हैं।
1: And of course, while supporting local products is important, checking the authenticity of information is equally important. Here is a quick fact check. The government has rejected social media claims that the finance ministry has issued a notification regarding the merger of public sector banks. The PIB fact check unit has clarified that the document being circulated on social media is fake and was not issued by the finance ministry. The government has advised citizens to verify such information through official and credible sources before believing or sharing it. So before forwarding any such message, it is important to check the source and confirm the information through official channels.
0: बिल्कुल। और अब खबरों के सिलसिले में बारी है क्रिकेट के रोमांच की। चलिए जानते हैं आज के बड़े मुकाबले के बारे में। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। अब अफगानिस्तान की नजरें आखिरी मैच जीतकर सीरीज का समापन जीत के साथ करने पर होगी। दिल्ली में आज दोनों टीमें एक बार फिर मैदान पर उतरेंगी। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक मुकाबले का इंतजार रहेगा। अब जरा अपने सफर को रोककर देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। तो शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आज की खबरों में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। दिल्ली ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में देश में पहला स्थान हासिल किया है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में दिल्ली को 100 में से 84 अंक मिले हैं। सूचकांक में परिवहन के विद्युतीकरण, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार जैसे मानकों का आकलन किया गया है। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 तक सड़कों पर 14,000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का लक्ष्य रखा है और चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार पर भी बल दिया जा रहा है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि दिल्ली की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नीतियों और ईवी इकोसिस्टम को मिली राष्ट्रीय पहचान है।
1: And of course, let's get an update from Chennai now. Greater Chennai Traffic Police have opened 15 special centres from September 21st to 30th to clear pending traffic e-challans. The centres will operate from 9 a.m. to 7 p.m. Motorists will also receive SMS alerts about violations. Pending challans can be checked and paid through Next Gen e-challan, Paytm, post offices and Tamil Nadu e-seva centres. Drunk driving penalties can be paid through court. CSIR will celebrate its 85th Foundation Day on 26th of this month at its Taramani campus in Chennai. As part of the celebrations, the Eureka 2026 Inter-School Science Quiz was held yesterday. Students from 39 schools participated with 6 teams reaching the final. Winners will receive prizes and shields during the Foundation Day event. And Vaishnavi, are you updating us about Mumbai now?
0: Yes, absolutely. सरबजीत, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तो बहुत ही खूब उत्साह चल रहा है। इसी बीच राज्य सरकार केरल में भी महाराष्ट्र की गणेश उत्सव परंपरा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी। महाराष्ट्र सरकार 24 सितंबर को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। अभिधाश्रमम हॉल में होने वाले इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के गणेशोत्सव की कला और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें केरल की पारंपरिक और ग्रामीण कला विधाओं की प्रस्तुतियां होंगी तथा दोनों राज्यों के कलाकार संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। इसके अंतर्गत देशभर के स्कूलों में शिक्षा, सामाजिक सरोकार और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुंबई में भी विकसित भारत 2047 विषय पर चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। विद्यार्थियों को कौशल विकास, नवाचार, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका के बारे में जागरूक किया जाएगा। सरबजीत, इसी क्रम में मैं आपको कोलकाता भी लेना चाहूंगी क्योंकि वहां पे भी ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा है। तो अभियान के अंतर्गत कोलकाता में आज शाम 6 बजे फेरली घाट स्थित मिलेनियम पार्क 3 में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें

0: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 400 से अधिक लाभार्थी दिए जलाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।
1: एंड वैष्णवी, नाउ लेट्स टेक आवर लिसनर्स टू न्यूज अपडेट्स फ्रॉम बेंगलुरु एंड हैदराबाद। कर्नाटका एम्स टू डेवलप द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री चेन फ्रॉम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टू टेस्टिंग एंड एक्सपोर्ट्स। स्पीकिंग एट द कर्नाटका इलेक्ट्रॉनिक्स लीडरशिप समिट इन बेंगलुरु, Industries Minister M.B. Patil said the state has over 20,000 chip designers and more than 100 chip design companies. The minister said Bengaluru, Mysuru and Hubli-Dharwar will be developed as major electronics clusters. September 17 marks the historic integration of the Hyderabad princely state into the Indian Union in 1948. The central government has been officially observing Hyderabad Liberation Day on this date since 2022. This year's celebrations will be held at Secunderabad Parade Grounds today, with Vice President C.P. Radhakrishnan attending as the chief guest. Union Ministers Gajendra Singh Shekhawat and G. Kishan Reddy, MOS Home Affairs, Bandi Sanjay Kumar and other dignitaries are also expected to participate. Ahead of the celebrations, former Governor Bandaru Dattatreya inaugurated a photo exhibition at the parade grounds, showcasing the 1948 integration, the social conditions of the time, the people's struggle, and other key historical developments.
0: सरबजीत, अब मौसम के रंगों रूबरू होते हैं और जानते हैं आज का दिन कैसे रहने वाला है। शुरुआत करते हैं दिल्ली से ही। तो दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई की बात करें तो यहां भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता में गरज के साथ बारिश हो सकती है। शहर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
1: Well, Chennai is likely to see a partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The temperatures are expected to range between a minimum of 27 degrees and a maximum of around 37 degrees. Bengaluru is forecast to experience generally cloudy sky with light rain, minimum temperature around 21 degrees, maximum may go up to 31 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a partly cloudy sky with possibility of development of thunder and lightning. Temperatures are expected to range from 24 degrees to a maximum of 33 degrees Celsius.
0: और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर के पन्नों पर सिमट कर रह जाती है, लेकिन कुछ तारीखें इतिहास की धारा को नई दिशा दे जाती है। 17 सितंबर भी ऐसी ही एक तारीख है। आइए जानते हैं आज का दिन इतिहास में क्यों खास है।
1: 17 सितंबर 1787, the Constitution of the United States was formally signed by 39 delegates at Independence Hall in Philadelphia, establishing the foundation of American governance.
0: आगे बढ़ते हैं। 1948 में आज ही के दिन भारत के एकीकरण की कहानी का एक निर्णायक अध्याय पूरा हुआ। आजादी के बाद हैदराबाद रियासत ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सरदार पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई ऑपरेशन पोलो नाम की कार्रवाई 13 सितंबर को शुरू हुई थी और 17 सितंबर यानी आज ही के दिन निजाम की सेना के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुई। शाम 5 बजे निजाम ने डेक्कन रेडियो से युद्ध विराम की घोषणा की और अगले दिन ही हैदराबाद की सेना ने मेजर जनरल जेएन चौधरी के समक्ष औपचारिक आत्मसमर्पण किया था।
1: 1978, on this day, Egyptian President Anwar Sadat and Israeli Prime Minister Menachem Begin signed the historic Camp David Accords at the White House, establishing a peaceful diplomatic framework in the Middle East.
0: और 1991 में Finnish computer programmer Linus Torvalds ने इंटरनेट पर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल लिनक्स का पहला आधिकारिक संस्करण जारी किया था।
1: 1995, on this day, the London Symphony Orchestra officially welcomed its new principal conductor, Colin Davis, marking a celebrated new era of classical orchestral performances.
0: वहीं 2004 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से तमिल को देश की पहली आधिकारिक शास्त्रीय भाषा का प्रतिष्ठित दर्जा देने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। और सरबजीत, आज के दिन की विशेषता के बारे में जानते हैं।

0: श्रोताओं, जहां हुनर में हाथों में आकार लेता है और मेहनत किसी सपने को हकीकत में बदलती है, वहां सृजन की शक्ति को नमन किया जाता है। आज का दिन इसी भावना को समर्पित है, विश्वकर्मा पूजा का, जो निर्माण, शिल्प और तकनीकी कौशल के देवता भगवान विश्वकर्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान विश्वकर्मा को दिव्य भवनों, नगरों और अस्त्र शस्त्रों के निर्माण से जोड़ा गया है। इसी वजह से ये पर्व उन सभी कार्यों और कौशलों के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया है जिनसे निर्माण और सृजन संभव होता है। इस दिन कारखानों, कार्यशालाओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कई तरह के व्यावसायिक संस्थानों में मशीनें, औजारों और उपकरणों की पूजा की जाती है। आज का जो दिन है ये सिर्फ श्रम के सम्मान और सृजन की शक्ति को नमन करने का पर्व भी कहा जा सकता है।
1: Yes, of course. And after that piece of news, let's take our listeners to that news item which has been rocking the headlines. And yes, veteran actor of Kannada cinema Anant Nag will be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024 for his outstanding contribution to the Indian cinema. The Information and Broadcasting Ministry made the announcement yesterday.
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सुधिंद्रा की ये रिपोर्ट।
2: जाने माने अभिनेता अनंत नाग को फाल्के पुरस्कार घोषित होने पर कर्नाटका की जनता और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री सम्मानित महसूस कर रही है। प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, उनका नए सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशन मदवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। 78 साल आयु के अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। पुरस्कार की घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनंत नाग ने अपनी खुशी और कृतज्ञता व्यक्त की है।
3: The Prime Minister has tweeted, I'm very grateful and thankful to him. At the same time, all this is because of the people of Karnataka. They have blessed me, blessed my films, supported me for the last 50 years. I'm very grateful. Last year, I had dedicated Padma Bhushan to the people of Karnataka. This year, I have got an opportunity to again dedicate it to the people of Karnataka and now India.
0: श्रोताओं, कुछ व्यक्तित्व अपनी पहचान से आगे बढ़कर अपने समय की पहचान बन जाते हैं। आइए आज की तारीख से जुड़े ऐसे ही कुछ खास नामों को याद करते हैं।
1: लिसनर्स, एट द फॉरमोस्ट वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू वामन राव बलिराम लाखे। टुडे इज हिज बर्थ एनिवर्सरी। अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड कोऑपरेटिव लीडर हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। वामन राव बलिराम लाखे वॉज बॉर्न इन 1872 एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी एंड डिवोटेड हिज लाइफ टू द फ्रीडम मूवमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस लाखे एक्टिवली participated in various movements against the British rule. He believed that political freedom should go hand in hand with social and economic development. Lakhe worked particularly for farmers, workers and economically weaker sections of society.
0: माहे के इतिहास में आई के कुमारन का नाम उस संघर्ष से जुड़ा है जिसने फ्रांसीसी शासन से इस क्षेत्र की मुक्ति का रास्ता तैयार किया। 17 सितंबर 1903 को जन्मे कुमारन शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1954 में माहे को फ्रांसीसी शासन से मुक्त कराने के आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें कई स्रोत माहे गांधी के नाम से भी याद करते हैं। वे स्वतंत्रता के बाद माहे के पहले प्रशासक बने। उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि भारत की स्वतंत्रता की यात्रा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी, माहे जैसे छोटे क्षेत्रों में भी इसके लिए संघर्ष हुआ था।
1: We are also remembering today the great Erode Venkatapati Ramasamy, popularly known as Periyar E.V. Ramasamy.

0: Well, after that soulful country music, time now to pay tributes to the great M.F. Hussain. Today we remember Maqbool Fida Hussain, one of the most celebrated and internationally recognized figures of modern Indian art.
1: Gramin Jeevan, भारतीय महाकाव्य गांधी और मदर टेरेसा जैसे अनेक विषय एमएफ हुसैन की कला में दिखाई देते हैं। चित्रकला के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण में भी रुचि दिखाई और उनकी फिल्म थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर को 1967 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। मकबूल फिदा हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गगेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। टैगोर परिवार की कला परंपरा में गगेंद्रनाथ टैगोर की पहचान कुछ अलग थी। वे चित्रकार तो थे ही थे, लेकिन अपने व्यंग्यात्मक कार्टून और सामाजिक टिप्पणियों के लिए भी जाने गए। उन्होंने 1917 के आसपास सामाजिक और राजनीतिक बदलावों पर व्यंग्यात्मक चित्रों की श्रृंखला बनाई। आगे चलकर गगेंद्रनाथ टैगोर ने आधुनिक कला, विशेषकर क्यूबिज्म से भी प्रयोग किए। उनकी प्रमुख व्यंग्यात्मक कृतियों में अद्भुत लोक, नभ हुल्लड़ और विरूप ब्रज शामिल है।
0: And Vaishnavi, let me take you back to just a little few years back, you know, and remind you that you also have enjoyed the lovely comic book Amar Chitra Katha.
1: Bilkul.
0: And time now, of course, to talk about the great Anant Pai, affectionately known as Uncle Pai, the pioneering creator who introduced generations of Indian children to the stories of India's rich cultural heritage. Today is Anant Pai's birth anniversary. Are you telling us anything more about the great Anant Pai?
1: उनके बारे में उनके तो काफी हर बच्चों ने ही जरूर उनके देखे होंगे और जरूर उनकी जो उनका जो एक क्रिएटिविटी थी वो अलग ही थी। और श्रोता, आपको बता दें कि 1967 में शुरू हुई अमर चित्र कथा उनकी सबसे प्रसिद्ध पहल बनी। बाद में टिंकल ने भी बच्चों के बीच उनकी पहचान मजबूत की। अनंत पै ने मनोरंजन के साथ साथ बच्चों तक भारतीय कथाओं और सांस्कृतिक विरासत को सरल भाषा में पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: And yes, of course, we are now remembering and paying tributes to the great Lalgudi Gopal Jayaraman, an Indian Carnatic violinist, vocalist and composer. Jayaraman is commonly grouped with M.S. Gopalakrishnan and T.N. Krishnan as part of the violin trinity of Carnatic music. Jayaraman was awarded the Padma Bhushan by the government in 2001, and at the age of 12, he started his musical career.

0: career as an accompanying violinist to Carnatic musicians before rising as a prominent soloist.
1: और सरबजीत, आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने वायलिन की संगीत के साथ साथ उसे स्वतंत्र वाद्य के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कई वर्णम और तिलाना की रचना भी की थी। और श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्री जी कृष्णदास नायर के बारे में। आसमान में उड़ने वाले विमान के पीछे सिर्फ पायलट का होना नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक की लंबी मेहनत भी होती है। आज ही के दिन 1941 को जन्मे सी जी कृष्णदास नायर का योगदान इसी तकनीकी दुनिया से जुड़ा रहा। वे धातु कर्म वैज्ञानिक थे और विमानन क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं के विकास से जुड़े रहे। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और देश के एरोस्पेस क्षेत्र में काम किया था। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही कोई चेहरा, कोई मौसम और कोई पुरानी याद हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही गीतों के पीछे एक नाम है हसरत जयपुरी। 17 सितंबर 1999 को दुनिया से विदा हुए हसरत जयपुरी का असली नाम इकबाल हुसैन था। राज कपूर के साथ उनकी लंबी रचनात्मक साझेदारी ने हिंदी फिल्म संगीत को कई यादगार गीत दिए।
0: Hasrat Jaipuri developed interest in poetry at a very young age and began writing poetry in Urdu, and in the year 1940 he moved to Mumbai where he worked as a bus conductor while continuing to write and recite poetry.

0: बरसात से शुरू हुआ ये सिलसिला आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर और कई दूसरों फिल्मों तक पहुंचा। उनकी कलम ने प्रेम, इंतजार, खुशी और जिंदगी के अलग अलग रंगों को बेहद सरल और खूबसूरत शब्द दिए। जिया बेकरार है आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ये रात भीगी भीगी बहारों फूल बरसाओं और जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिसके उनके लिखे गीत आज भी श्रोताओं के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं।
1: जी

0: Listeners, what made Hasrat Jaipuri special was his ability to combine poetic beauty with simple, memorable language.
1: और श्रोताओं, इसी खूबसूरत गीत के साथ आज के आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
0: लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ फैंटास्टिक डे। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमी

0: ऑन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करनालोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
5: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
7: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
5: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजिनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम

0: छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्यूरेट सेमिकॉन इंडिया 2026 एट यशोभूमि इन न्यू दिल्ली दिस मॉर्निंग। BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. US Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. U.S. House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, 3rd and final T20 international between India and Afghanistan to be played in Delhi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions, and students from across the semiconductor and electronics

0: in India. On this day in 2022, Prime Minister Narendra Modi released 8 wild cheetahs from Namibia into special enclosures at Kuno National Park in Madhya Pradesh. Over the last 4 years, many important milestones have been achieved, ranging from the reintroduction of cheetahs to breeding, survival of cubs and expansion in open forest. The next phase of the cheetah restoration program involves expanding suitable habitat for cheetahs and establishing a comprehensive long-term cheetah meta population in India. Komadi Parekh, Akashvani News, Delhi.
1: On to sports. In men's cricket, India will play the final match of the three-match series, a T20 international series, against Afghanistan in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India has already secured the series with convincing wins in the first two matches, while Afghanistan has only managed brief moments of resistance. Abhishek Sharma set the pace in the opening win, and Sanju Samson's 22-ball 57 wrapped up the second. India's attack has been equally dominant, boosted by the return of Jasprit Bumrah and Ashdeep Singh, alongside strong overs from Nitish Kumar Reddy. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
2: Thank you, Anuja. A front page headline in The Statesman says, BJP to run month-long drive to mark Modi's 25-year public life as Prime Minister Modi turns 76 today. Former President Ramnath Kovind, in his article in Hindustan Times, says bringing the margins into mainstream has been the most enduring achievement of Narendra Modi government. The dailies have widely noticed India lodging strong protest with Pakistan over unprofessional conduct of its navy. The Times of India writes, Pak diplomat summoned after naval vessel collide. The Indian Express writes, EPFO wage ceiling raised to 25,000 rupees, widening the social security. The Economic Advisory Council recommends ending sterilization-linked incentives as national fertility rate is well below the replacement fertility rate, writes the Hindustan Times. And finally, in a historic milestone, Sanyukta Parashar becomes first woman IPS officer to lead CRPF's elite Cobra unit, states the Pioneer. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. U.S. Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. U.S. House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international to be played in Delhi this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज पूरे मुल्क में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। भारत ने नाम निहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने रूस के अहदेदारों और उसकी मईशत के अहम सतूनों को निशाना बनाते हुए पाबंदियों के पैकेज को मंजूरी दी है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। आज से शुरू होने वाली 3 रोजा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का मौजू है सिलिकॉन से सिस्टम तक इको निजाम की तामीर। इस मौके पर सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन से वाबस्ता आलमी और भारतीय कंपनियां, पॉलिसी साज, अहदेदार, सरमायाकार

0: तहकीक कार, स्टार्टअप इदारे, तालीमी इदारे और तलबा शरीक होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कॉन्फ्रेंस में भारत में शराकतदारी, सरमायाकारी, इख्तरा और सलाह साजी को फ़रोग देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुतवाजी सेशंस में डिस्प्ले इंडस्ट्री में पेशरफ्त, शराकतदारी और मुश्तरका इकदामात को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए 6 मुल्कों के गोलमेज इजलास और ख़वातीन की क़यादत पर एक फोरम शामिल होगा। सेमीकॉन इंडिया 2026 में एक जामे वैल्यू चेन का नुक्ता नज़र अपनाया जाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, आलात और चिप डिज़ाइन से लेकर फैब्रिकेशंस, एडवांस्ड पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम्स तक के सफर को पेश किया जाएगा। इसमें 600 से ज्यादा कंपनियां शिरकत करेंगी और 52 मुल्कों के नुमाइंदों, 400 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव और 150 से ज्यादा मुकर्रीन के साथ तकरीबन 50,000 अफराद की आमद मुतवक्के है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह और अवामी खिदमत के उनके 25 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान आज गुजरात में उनके आबाई कस्बे वार्डनगर से शुरू किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल तकरीबात के हिस्से के तौर पर वार्डनगर से वाराणसी तक एक बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज उनकी जाए पैदाइश वडनगर में बहबूद के कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आला भूपेंद्र पटेल तारीखी शर्मिष्ठा झील पर बड़ी महाआरती में शिरकत करेंगे, जहां पवित्र जल को एक कलश में इकट्ठा किया जाएगा और उसे वाराणसी जाने वाले बाइकर्स के सुपुर्द किया जाएगा। मुमताज अफराद झील से हटकेश्वर मंदिर तक पैदल मार्च करेंगे, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अवामी खिदमत के पैगाम की तशहीर के लिए 250 बाइकर्स की रैली को झंडा दिखाकर रवाना करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर उनके पार्लियामानी हलके वाराणसी में कई बड़ी तकरीबात का एहतमाम किया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जनाब मोदी की सालगिरह के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में खसूसी पूजा अर्चना और रुद्र अभिषेक का अहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा वाराणसी से वार्डनगर जाने वाले 500 नौजवान बाइकर्स की इज्जत अफजाई की जाएगी। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर मुमताज अफराद भी मौजूद रहेंगे। इधर रियासत के वजीर JPS राठौर ने बताया है कि बाइक रैली शुरू होने से पहले पवित्र दरियाओं का जल काशी में काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाएगा। खुसूसी यात्रा के लिए गंगा, यमुना, राप्ती, नर्मदा, गोमती, बेटवा, अलकनंदा, कुआनो और सरयू समेत बड़े दरियाओं और पवित्र संगम से पवित्र जल इकट्ठा किया गया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: दिल्ली सरकार आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर 4 बड़े प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है। इनमें खिदमत, लगन और अवामी शमूलियत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा अवामी जिंदगी में वजीर आजम मोदी के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर दिल्ली सरकार एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। इसके तहत ट्रांसपोर्ट, सड़कों, पानी की निकासी, पानी को साफ करने, तालीम, बिजली, अवामी सहूलियात और शहरी इलाकों की तज़ीन कारी से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया प्रोग्राम के तहत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए रोशन किए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा से तहरीक लेकर यह प्रोग्राम आवाम की शराकत और खिदमत के जज्बे का एक मजबूत पैगाम देगा। एक साथ 1,25,000 दियों का रोशन होना लोगों की ख्वाहिशात, आशीर्वाद, शराकत और कौम की खिदमत के तहत अहदबस्तगी की अलामत होगा। इस दौरान त्यागराज स्टेडियम में 11 बजे से शाम 5 बजे तक खून के अतिये का एक बड़ा कैंप लगाया जाएगा, जिसमें 2,500 यूनिट्स खून जमा करने का निशाना रखा गया है। दिल्ली की वजीर आला ने कहा है कि अलीपुर में GT करनाल रोड में वाक़े खाटू श्याम दिल्ली धाम में 108 कुंड योगा का एहतमाम भी किया जाएगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा का मंत्र और पुख्ता अहद उनके इस सफर की खासियत रही है और यह सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित

0: भारत के मकसद के हुसूल की संत लगातार काम कर रही है। आज खुसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत हम इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि किस तरह इस नज़रिए को मेक इन इंडिया के जरिए अमली शक्ल दी गई है, जो मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन और इख्तिरा का आलमी मरकज बनाने की एक बड़ी कौमी पहल है। मेक इन इंडिया पहल के तहत PLI स्कीमों के जरिए मुल्क में 20,41,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मालियत का सामान तैयार किया गया और 14,15,000 से ज्यादा मुलाजमत के मौके दस्तियाब कराए गए ताकि एक खुद कफील मुल्क की तामीर की जा सके। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सरकर्दा पहल मेक इन इंडिया 2014 में शुरू की गई थी। इसकी बदौलत मुल्क एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग ताकत बन गया है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की तैयारी बढ़कर 13,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 2014-15 में ये महज 1,90,000 करोड़ रुपए थी। मोबाइल फोन की बरामदात में 171 गुना इजाफा हो चुका है। भारत नेट दरामदकार से नेट बरामदकार बन गया है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड नजरिए को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे खुद कफील भारत के लिए एक मजबूत बुनियाद करार दिया है।
2: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
1: इधर राजकोट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर पार्थ गणंत्र ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा कि मेक इन इंडिया स्कीम के जरिए MSME शोबे, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बड़ा फायदा हुआ है।
3: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
1: इधर अहमदाबाद के एक स्टार्टअप मालिक ध्रुव पटेल ने कहा कि मेक इन इंडिया और PLI स्कीम से स्टार्टअप इदारों के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ है। आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के तरक्की के एक अहम वसीले के तौर पर खड़ा है, जिसके तहत कौमी पॉलिसी को जमीनी सतह पर मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात की कामयाबी में बदल दिया गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर CP राधा कृष्णन ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जनाब मोदी की मिसाली अवामी खिदमत और वजीर आला से लेकर वजीर आजम का ओहदा संभालने तक 25 साल के उनके सफर में मुल्क की तामीर में उनके अहम रोल को सराहा। अपने पैगाम में मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने अच्छी हुक्मरानी के कई पैमाने तय किए हैं और जामे तरक्की को नई रफ्तार दी है, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। स्वच्छता ही सेवा मुहिम आज से मुल्क में शुरू की गई है। इस मुहिम का मौजू है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत विकसित भारत इस साल स्वच्छता ही सेवा मुहिम के 5 अहम सुतून हैं, जो इस तरह हैं: सफाई सुथराई की अक्सर तब्दीली के निशानजद किए गए यूनिट्स और साफ सुथरे अवामी मकामात, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी, स्वच्छता से समृद्धि। भारत ने नाम नेहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजारत ने इस सिलसिले में रिपोर्ट्स का नोटिस लिया है और इस मामले पर भारत का मौकफ वाजे और ठोस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कोई सरहद नहीं है। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है, जिसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। तर्जुमान ने यह बात दोहराई कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी 1963 के नाम नेहाद चीन पाकिस्तान सरहदी समझौते को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उसका यह मौकफ रहा है कि यह गैर कानूनी और नाजायज है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आज हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जा रहा है।

0: 17 सितंबर 1948 को साबिका रजवाड़े हैदराबाद के भारतीय यूनियन के साथ तारीखी इंजमाम की याद में मनाया जाता है। मरकजी सरकार साल 2022 से बाजाब्ता तौर पर हैदराबाद लिबरेशन डे तकरीबात का एहतमाम करती रही है। इस साल की बड़ी तकरीब सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होगी, जहां नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इसका आगाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में किया था। इस स्कीम के तहत 30 लाख मुस्तफिदीन के इंदराज का संगे मील हासिल किया गया है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अफराते जर की शरह को बढ़ने से रोकने की कोशिश में ऐसा किया गया है, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। अमेरिका में ऐवान नुमाइंदगान ने रूसी हुक्काम और उसकी मईशत के अहम सतूनों के खिलाफ बंदिशों को मंजूरी दी है। इस इकदाम का मकसद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए जरूरी मालियाती वसाइल से महरूम करना है। मर्दों के क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 बैन अलाकवामी सीरीज का आखिरी मैच खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए सेमी कॉन इंडिया का इफ्तिताह किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, मोदी आज करेंगे सेमी कॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह, 600 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। अखबार इनकलाब की एक अहम सुर्खी है, हुकूमत का पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की हद 15,000 से 25,000 रुपए करने का ऐलान। बेशतर अखबार ने मक्का के नज़दीक ड्रोन हमले पर भारत की मजम्मत और सऊदी अरब के साथ इजहार यकजहती की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। वजारत दाखिला ने पाकिस्तान से मुंसलिक शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अखबार ने इस खबर को भी अहमियत दी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह करेंगे। बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर आज पूरे मुल्क में एक माह तवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज कर रही है। भारत ने नाम नेहाद पाकिस्तान चीन सरहदी मुश्तरका कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को उस भारतीय इलाके के ताल्लुक से मुआहदे करने का कोई इख्तियार नहीं है जिस पर उसने जबरन और गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार शरह सूद में इजाफा किया है। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान ने रूस के अहदेदारों और उसकी मईशत के अहम सतूनों को निशाना बनाते हुए पाबंदियों के पैकेज को मंजूरी दी है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज शाम दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। वक्त हो गया है आप सभी के अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है म्यूजिकल दिल लगी। और आज म्यूजिकल दिल लगी में आपके साथ हूं मैं सुरति। आज मशहूर शायर और हिंदी फिल्मों के दिग्गज गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि है। हसरत जयपुरी से जुड़ी अगर कुछ खास बातों की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि उनका असली नाम जो था वो इकबाल हुसैन था और उनका जन्म 15 अप्रैल 1922 में जयपुर में हुआ था। करियर की बात करें तो उन्होंने फिल्म बरसात से अपना पहला गाना जिया बेकरार है लिखकर बॉलीवुड में कदम रखा और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद राज कपूर, संगीतकार शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को अनगिनत सदाबहार गाने दिए। उनके लिखे

कुछ बेहद लोकप्रिय गीतों की बात करें तो उसमें शामिल है तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, बदन पे सितारे लपेटे हुए, अजीब दास्तां है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, सुन साहिबा सुन, और ऐसे न जाने कितने बेहतरीन गीत जो आज भी हमारे दिलों पर बसते हैं। और अगर हम बात करें पुरस्कारों की तो भाई फिल्म अंदाज के गाने जिंदगी एक सफर है सुहाना और साथ ही साथ फिल्म सूरज के गाने बहारों फूल बरसाओ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। आइए सुनते हैं फिल्म सूरज से एक बेहतरीन गीत जो उनके द्वारा लिखा गया, बहारों फूल बरसाओ उन्हीं की याद में।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
4: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: आपको बता दूं कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से 2 अक्टूबर तक देश भर में चलाया जा रहा है और इस साल की अगर हम थीम की बात करें या टॉपिक की बात करें तो भाई इस साल का टॉपिक है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। और इसका मकसद क्या है भाई, कोई ना कोई चीज़ जो होती है किसी ना किसी उद्देश्य से होती है, तो ये अभियान जो है जन भागीदारी, स्वच्छता के प्रति कर्तव्य और सामूहिक जिम्मेदारी पर केंद्रित है। और हाँ, कुछ खास डेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर सभी पर्यटन और धार्मिक स्थलों की सफाई होगी। 1 अक्टूबर की बात करें तो 1 दिन 1 घंटा और 1 साथ देशव्यापी सफाई अभियान चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर की बात करें तो स्वच्छ भारत दिवस और विशेष बैठकें की जाएंगी। और ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान में क्या रखा जाएगा, एक पेड़ माँ के नाम के तहत पौधारोपण और साथ ही साथ सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा शिविर, क्या बात है। तो आइए हम भी इसमें भाग लें, स्वच्छता में सहभागिता निभाएं, स्वच्छ भारत विकसित भारत का हिस्सा बने।

इसी के साथ वक्त हो गया है इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरति को दीजिए इजाजत। जाते जाते एक प्यारा सा गाना आप सभी के लिए, उसके बाद सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। और ठीक 9:10 पर म्यूजिकल दिल लगी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा नीतू के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर

0: कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि विगत 25 वर्षों में श्री मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति और नई दिशा प्रदान की है। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। PM विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना भी व्यक्त की है। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today, marking Prime Minister Narendra Modi's birthday and celebrate his completion of 25 years of public service. The program will be launched from his hometown Vadnagar in Gujarat. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Vadnagar to Varanasi bike rally. A report.
3: A series of welfare programs will be held at PM's birthplace in Vadnagar today on the occasion of his birthday and 25 years of his public service. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will participate in a grand Mahaarti at the historic Shamishta Lake, where sacred water will be collected in a kalash and handed over to bikers travelling to Varanasi. The dignitaries will lead a foot march from the lake to Hatkeshwar Temple to offer prayers, followed by flagging off a rally of 250 bikers heading to Varanasi Varanasi to spread the message of public service. Home Minister and Chief Minister will also lead a cleanliness drive at Vadnagar Railway Station today. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
2: In Varanasi, also the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi, a series of grand celebrations have been organized. Delhi government will also organize four major programs on the occasion. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have extended greetings to Prime Minister Narendra Modi on his birthday. In a social media post, President Murmu lauded Mr. Modi's exemplary public service and contribution to nation building over the past 25 years, spanning his tenure as Chief Minister and Prime Minister. In her message, the President noted that the Prime Minister has set multiple benchmarks of good governance and given unprecedented momentum to inclusive development. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, Ministry of External Affairs MEA spokesperson Randhir Jaiswal said the ministry has seen reports in this regard, and India's position on this matter is clear and consistent. He said there is no boundary between Pakistan and China. Mr. Jaiswal said New Delhi rejects the Pakistan-China Boundary Joint Commission, which is without any legal basis. Hyderabad Liberation Day is being observed today, commemorating the historic merger of the erstwhile Hyderabad princely state with the Indian Union on this day in 1948. Central government has been organizing Hyderabad Liberation Day celebrations since 2022. This year's main program will be held at the Secunderabad Parade Grounds with Vice President C.P. Radhakrishnan as the chief guest. The US Federal Reserve has raised its benchmark interest rate for the first time since 2023 in an effort to lower persistent higher inflation. The central bank also signaled that another rate hike could occur later this year. The quarter point increase lifts the Fed's key rate to about 3.9% and over time could result in higher borrowing costs for mortgages, auto loans, and credit cards. In the United States, the House of Representatives has passed a broad package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. The move comes as lawmakers look to deprive President Vladimir Putin of the financial resources needed to wage the war against Ukraine. In men's cricket, India will play the final match of the three-match T20 international series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

101.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू हाजिर है लेकर म्यूजिकल दिल लगी। और जब हम बहुत दिनों बाद किसी से मिलते हैं ना, या बहुत दिनों बाद किसी सिचुएशन से गुजरते हैं, तो फिर हमें अच्छा लगता है जो अच्छी सिचुएशंस होती हैं। तो ऐसा लगता है कि बस ऐसी सिचुएशंस बार बार आए, और थोड़ा सा अचंभा भी होता है ना, पर ऐसी हैरानी हम सबको पसंद है। म्यूजिकल दिल लगी में और भी बातें होंगी, लेकिन इस गाने के बाद।

आज है 17 सितंबर और आज हम मना रहे हैं विश्वकर्मा पूजा, जो कि भगवान विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। और आप जानते ही हैं कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है। और इस दिन कारखानों, कार्यस्थलों, औजारों और मशीनों की पूजा की जाती है। ये दिन कौशल और मेहनत को सम्मान देने का दिन है। देश की पारंपरिक कला और कौशल को संरक्षित करने के साथ साथ कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ही एक और महत्वपूर्ण कदम है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत कारीगरों को फ्री ट्रेनिंग, आधुनिक टूलकिट, सर्टिफिकेट्स और सस्ती दरों पर लोन की सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ उन्हें डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित और मार्केट से जोड़ने में भी मदद की जाती है, ताकि उनका काम बढ़े और आय में सुधार हो।

0: इन दिनों हम मना रहे हैं गणेश उत्सव और गणेश जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मोदक। तो अब हम एक ऐसी महिला से बात करते हैं जो कि बनाती है मोदक। उनका नाम है रसिका कांबरी। रसिका जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम,
0: कैसी हैं आप?
1: मस्त, फर्स्ट क्लास।
0: और मोदक कैसे बन रहे हैं?
1: बन रहे हैं, अभी काम चालू है।
0: काम चालू है
1: ऑर्डर का।
0: अच्छा, तो आपके बड़े स्पेशल मोदक हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कब से बना रही हैं आप मोदक और क्या स्पेशल है इन मोदकों में?
1: मैडम, हम 2025 में जब दिल्ली में आए थे ना, जो महाराष्ट्र सदन में,
0: अच्छा,
1: जो हमने उस दिन बनाया, दिल से, इतने दिल से बनाया ना, सब दिल्ली के लोगों को इतना अच्छा लगा कि हमारे ऑर्डर हमको पूरा करने के लिए टाइम नहीं था।
0: अच्छा रसिका जी, थोड़ा सा ऐसी जगह पे आ जाइए जहाँ पीछे का शोर जरा कम हो, पीछे की आवाज ज्यादा आ रही है। हाँ, आप सही।
1: हाँ जी, बोलिए मैम।
0: हाँ, अब बताइए, तो मोदक, लेकिन आप जब दिल्ली आई उससे पहले भी तो आप बनाई रही होंगी ना मोदक, तभी तो आपको दिल्ली आने का मौका मिला होगा।
1: मैम, मैं 2025 में महालक्ष्मी सरस जो रहता है बांद्रा में, वहाँ स्टॉल पे गई थी।
0: अच्छा,
1: तो तभी जो हमारी मैम है आर बिमला मैम, उधर सीओ, उम्मेद अभियान में सीओ थी।
0: अच्छा।
1: तो हमारा कॉन्टेक्ट रहा था मुझे उम्मेद में, तभी उम्मेद ऑफिस में हमारी मैम ने कॉन्टेक्ट किया कि ऐसे मोदक का स्टॉल लगाना है सदन में, आ जाएंगे क्या आप? तो हम बोले मैम, हमने कभी मोदक ज्यादा करके इतना क्वांटिटी में बनाया नहीं था,
0: घर में बनाते
1: हम लोग भगवान के भोग के लिए बनाते हैं।
0: अच्छा, ओके। हाँ,
1: तो मैम बोले आप आइए तो सही। तो मैम बोले सिर्फ मोदक ही बनाने का है,

0: बोले मोदक में इतना ये होएगा क्या, सेल होएगा? हमने मैम से पूछा, मैम बोले आप आइए, आप देखिए दिल्ली वालों की क्या टेस्ट है क्या नहीं। तो हम लोग आ गए, दो दिन में मैम ने हमारे टिकट कट कराया, हम लोग आ गए दिल्ली में। जब पहले दिन इतना ऑर्डर आया मैम, बाप रे, हमारी तो दो ही लेडीज आई थी, हम लोग दो ही, जो हमारे मेरी जो पार्टनर है सुजाता जादव करके, हाँ हम दो ही लेडीज आई थी, और इतना खलबली मचा, इतना ऑर्डर आया कि हम लोग तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं रही।
1: तो बप्पा की कृपा हो गई आप पर, है ना?
0: बहुत बप्पा की कृपा हो गई। चार बजे तक मैम ने देखा हमने खाना नहीं खाया, तो हमने हमारे मैम ने इतना मेरे को डांटा, आप लोग उठिए, पहले वो काउंटर बंद कीजिए और खाना खाइए। सुबह से 3 बजे से लगे थे हम लोग उस दिन।
1: अरे वाह। अच्छा, मोदक बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा, अगर हम थोड़ा सा 1 किलो के हिसाब से बताइए कितना टाइम?
0: 1 किलो, 1 किलो के हिसाब से मैडम हम लोग क्या करते हैं, अभी 4-5 किलो का एक पार में फिर आटा रहता है ना इतना चावल का, वो बना लेते हैं। अच्छा। उसके हिसाब से हम लोग एक घंटे में 100 तो बनाए थे होंगे हम।
1: अच्छा,
0: हाँ, 1 घंटे में 100 बनाते। अभी स्पीड बढ़ा है मैम हमारा।
1: अच्छा,
0: पहले जब आए थे स्टार्टिंग में तभी हमारा स्पीड कम था, अभी आदत हो गई है। अभी हर जगह स्टॉल पे जाते हैं ना, उधर मोदक ही बनाते हैं अभी।
1: अच्छा, तो आपके मोदक फेमस हुआ है, मोदक कितने फेमस हो चुके हैं।
0: दिल्ली में हम किधर भी आएंगे ना, फिर भी मोदक ही जाता है हमारा ज्यादा करके।
1: तो सिर्फ उत्सव के दौरान बनाती है, फेस्टिवल्स के दौरान ही बनाती है, वैसे भी बनाती है?
0: वैसे भी बनाते हैं मैम हम।
1: अच्छा,
0: वैसे भी बनाते हैं। जब भी इधर सरस रहता है, आजीविका मेला रहता है, उधर भी हम मोदक बनाते हैं।
1: चलिए, तो ठीक है। हाँ। बप्पा ने आप पर कृपा बरसाई है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसी तरह आप मोदक बनाती रहिए, और जब दिल्ली आए ना तो हम भी आपके मोदक दोबारा चखेंगे।
0: भाई आप अभी तो हम दिल्ली में है, दिल्ली का महाराजा जो गणेश सेवा मंडल में दिल्ली लक्ष्मी नगर में जो है पंडाल, उधर ही हम लोग है मैम। आप जरूर आइए, हमें
1: बिल्कुल
0: हमारा मोदक टेस्ट करके जाइए।
1: हाँ बिल्कुल टेस्ट करेंगे आपके मोदक।
0: और दिल्ली वालों को ये भी रिक्वेस्ट है कि हमारा लक्ष्मी नगर में जो स्टॉल लगा है उधर आके हमारा मोदक का स्वाद लीजिए।
1: बिल्कुल,
0: जो हम दिल से बनाते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपके दिल से बनाती है, इसीलिए तो स्पेशल है। तो इसी स्पेशल मोदक जिन्हें पसंद है उन्हीं को याद करते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच मैम, बाय।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्लगी। और आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर को बहुत ही कुछ होता है, लेकिन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये दिन बहुत ज़रूरी दिन है, क्योंकि हम सब ना किसी स्वास्थ्य की समस्या से परेशान रहते ही हैं, और ऐसे में हम मरीजों की सुरक्षा जो है वो बहुत बहुत मैटर करती है। इस दिन का जो उद्देश्य है वो यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान मरीजों की सुरक्षा का महत्व जो है वो बढ़े, उसके प्रति जागरूकता बढ़े, इलाज में होने वाली गलतियों और जोखिमों को कम करके सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए। ये दिन मरीजों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर देता है। और मैं क्या, हर किसी का मानना यही है कि बेटर तो यही है कि हम बीमार पड़े ही ना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है हंसना हंसाना, और ख़ास तौर पर अगर फेफड़ों के मरीज़ हैं आप, तो उनके लिए तो हंसना और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन बहुत तेज़ हंसी या कहकहा नहीं, बल्कि लाफ्टर थेरेपी। अगर आपने 2 महीने सही तरीके से लाफ्टर थेरेपी ले ली, तो ऐसा कहा जाता है कि सांस लेने में होने वाली तकलीफ से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। तो हंसिए, हंसाइए, खुश रहिए। सबसे बड़ी बात है खुश रहिए। खुश रहेंगे तो बहुत सारी परेशानियां ना यूं ही गायब हो जाएंगी।

आप नहीं भी सीखेंगे ना, जिंदगी आपको ऐसा सब कुछ सिखा देगी। तो टेंशन की बात नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी अच्छी खबरें सुनते हैं कुछ, जब हमारे आसपास इतनी नेगेटिव चीज़ें चल रही हों, इतनी नेगेटिव खबरें चल रही हों, ऐसे में कुछ अच्छी खबर अगर सुनने को मिले तो बड़ा अच्छा सा लगता है, दिल खुश हो जाता है। तो मैं भी आपका दिल खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्टील कारखाने से औद्योगिक कचरा निकलता है और उस कचरे का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनाई गई है। माना जाता है कि ऐसी सड़कें जो हैं वो पारंपरिक सड़कों की तुलना में कम लागत में बन जाती हैं और ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती हैं, और उससे भी बढ़कर जो कचरे का है वो निपटारा हो जाता है, जो आजकल बढ़ती हुई समस्या है। तो फिर ऐसी ही और भी सड़कें बननी चाहिए ना। चलिए, वो तो जब बनेंगी तब बनेंगी। फिलहाल तो गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा गाना है ये, और आज ऐसा लग रहा है कि बिना किसी प्लानिंग के किशोर दा जो हैं वो हमारी टॉप लिस्ट में आ गए हैं।

लीजिए, जेंजी के नाम एक और कारनामा हो गया है। एक रिपोर्ट कहती है कि ये पीढ़ी नहाने में बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करती है। हालांकि ये जरा बहस का विषय है कि नहाने के लिए कितना वक्त और कितने पानी की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ 5 मिनट में बाहर आ जाते हैं और कुछ होते हैं इनकी तरह जो कि बाथरूम में ही गाना बजाना शुरू कर देते हैं। ठंडे पानी

बिल्कुल ऐसे ही गाते रहिए, गाना आए या ना आए, बस दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिएगा और खुद गाने गाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। म्यूजिकल दिल लगी का सफर यहीं तक है, नीतू को दीजिए इजाजत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम।

0: स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का

पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए और समावेशी विकास को गति दी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं दिल्ली में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi in a short while. Prime Minister will also address the gathering.

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत

0: कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है और इसे अमान्य माना गया है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। फेडरल रिजर्व की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार इस साल ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे दर 4.1% तक पहुंच सकती है। इससे समय के साथ मकान, वाहन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर ब्याज बढ़ सकता है।
1: आगामी मध्यावधि चुनाव से 7 सप्ताह पहले महंगाई और खर्च वहन करने की क्षमता प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉर्श ने कहा है कि जुलाई के अंत में ब्याज दर को स्थिर रखने के फैसले के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई फेड के 2% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है और इसमें कमी के बहुत कम संकेत हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने के फैसले के बाद दरों में बड़ी कटौती की मांग की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा है कि अमेरिका में ब्याज दर 1% या उससे कम होनी चाहिए और देश को सस्ता कर्ज मिलना चाहिए। ट्रंप ने अपनी इस मांग को देश के व्यापार संतुलन से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है उसके साथ व्यापार रोककर अमेरिका हर साल कम से कम $1.5 trillion जमा कर सकता है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की

0: दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। इस विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने दान किया। पारित विधेयक अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। ये विधेयक रूस के ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली पर प्रतिबंध लगाता है। साथ ही श्री ट्रंप को रूस के तेल और प्राकृतिक गैस के शीर्ष 5 आयातकों पर 100% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। ये बड़े मांसाहारी वन्य जीवों के अंतर महाद्वीपीय पुनर्वास का दुनिया का पहला प्रयास था।
1: कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनू राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 तक की स्थिति समीक्षा के अनुसार इनमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जीवित चीते और उनकी संतानों के साथ बोत्सवाना से हाल में लाए गए चीते भी शामिल है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान के अनुसार प्रजनन करने वाली मादा चीतों की स्थापना और दूसरी पीढ़ी के शावकों का जीवित रहना भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कौमुदी पारेख, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता लेने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। नेपाल के वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय ने बताया कि श्री वागले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से उत्पन्न खतरों से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से सहयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुनिया AI सुरक्षा के मामले में मानकों को कमतर करने का जोखिम नहीं उठा सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि AI से जुड़े खतरों से नागरिकों की रक्षा करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समन्वय भी जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का यह बयान एंथ्रोपिक के मुख्य अधिकारी डारियो अमोडेई के उस प्रस्ताव के संदर्भ में आया जिसमें प्रमुख तकनीकी कंपनियों और सरकार के समन्वय से AI विकास की गति को धीमी करने की बात कही गई है। ओपन AI के सैम ऑल्टमैन, स्पेस एक्स के एलन मस्क

रुख से दूरी बनाते हुए कहा कि हर एआई कंपनी को अपनी तकनीक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अमेरिका ने दो दशक से अधिक समय के बाद पहली बार वेनेजुएला को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में विफल देशों की सूची से हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आज जारी बयान में इसकी घोषणा की गई। इस सिलसिले में पड़ोसी देश कोलंबिया की भी समीक्षा पर विचार किया जा रहा है।

ट्रंप के आज जारी बयान में इसकी घोषणा की गई। इस सिलसिले में पड़ोसी देश कोलंबिया की भी समीक्षा पर विचार किया जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3रा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भी करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से आप आयोजन का विवरण सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम आपको बताना चाहेंगे कि सेमिकॉन इंडिया 2026 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यशोभूमि में 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 600 से ज्यादा प्रदर्शक और 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं, जो अपनी मौजूदगी से भारत में सेमिकॉन जो परंपरा है, जो हमारा प्रयास है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूती प्रदान करेंगे। 150 से अधिक जाने माने वक्ता अपने अनुभव और ज्ञान साझा करेंगे। 6 देशों के पवेलियन और 12 राज्यों के पवेलियन भी इस दौरान होंगे। इनके साथ ही स्टार्टअप शोकेस होगा, छात्रों के लिए हैकाथॉन, कर्मचारियों और तकनीकी

0: mission, which is driven by the Indian government in collaboration with various industry associations, research organizations and educational institutions. It operates under the guidance of the Ministry of Electronics and Information Technology, MeITY, and other relevant government bodies. India Semiconductor Mission is crucial for strengthening India's position in the semiconductor market, which is expected to reach $63 billion by 2026 end. With these initiatives, India is seeking to build a self-reliant electronics ecosystem, lessen its reliance on imports, and establish itself as a significant contributor to the global semiconductor supply chain.
1: हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय आयोजन स्थल पर उपस्थित हैं. इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा प्रतिभागियों से संवाद भी किया है और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति को देखते हुए आयोजन में पूर्ण अनुशासन है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन उत्साह भी है. और क्योंकि इसमें कई देशों की प्रतिभागिता है तो जो विदेशी प्रतिनिधि इस समय आयोजन में है उनके अभिवादनों का दौर है, साथ ही परस्पर संवाद भी चल रहे हैं. आइए आपको सीधे अब आयोजन मिलिए चलते हैं.
2: I said this industry is growing so rapidly, will be 1 trillion by 2030. I was wrong. Actually, we already crossed 1 trillion end of last year, will be 2 trillion by 2030. And after all, we talked about the exponential law of growth, Modi ji's exponential law of growth. So why not everybody is listening

0: प्रकट कर रहे हैं और इस तरह अपना सम्मान और स्नेह प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। आज चूंकि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस भी है तो देश में भी सेवा संकल्प जो है वो लिया जा रहा है और देशवासी भी प्रेरित हो रहे हैं अपने अपने प्रयासों के माध्यम से मातृभूमि की सेवा के लिए।
1: For me to be here as part of Semicon India 2026. Firstly, Lam Research would like to thank the Government of India for their comprehensive 2 and 2.0 programs is critical for achieving the ambitions of the country. As an industry, we are at a very critical moment. AI is driving a new wave of innovation and it's creating tremendous opportunities for growth. And it's across all aspects of the value chain. This year's theme, Silicon to Systems, captures the scale of the opportunity and the importance of advancing engineering, manufacturing, supply chain and talent together and could not have come at a better time.

मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन यानी 6 देशों के प्रतिनिधि यहां पर हैं और भारत के विभिन्न राज्यों के बूथ, स्टार्टअप मंडप, नवाचार इस दौरान प्रदर्शनी के रूप में विभिन्न लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं कि क्या कार्य भारत में हो रहा है और किस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे।

की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, सेमिकॉन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश के कई कई दशकों तक विकास के लिए जरूरी है। फॉर मेनी डेकेड्स इंडिया वॉन्टेड टू हैव अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, बट ओनली अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी।

भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। और संयोग देखिए, आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स,

1.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है।

कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा

देगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां हैं वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है।

0: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, was

0: inclusive financial freedom of its citizens. This month also saw the completion of 3,000 kilometers of dedicated freight corridor. Japanese credit agency have upgraded India's sovereign credit rating, and now the world trusts India as a success story. He called upon the global giants of the semiconductor industry to partner with OCI companies, as they will be equal partners of the journey towards a Viksit Bharat. The Honorable Prime Minister also mentioned that India has consistently reiterated its position on resilient global supply chains. The Prime Minister said that there are huge opportunities available in India for chemical, gases and materials industry, as India also has a huge talent pool of science, technology, engineering and mathematics. The Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, called upon the youth of India to come forward in research and development in semiconductor and showcase their Yuva Shakti. The global semiconductor market grew by 20% in the last decade due to AI, and India is now ready to offer new and trusted locations for the industry. And India is also ready to take on the emerging responsibilities. The Prime Minister mentioned that more than 160 gigawatt of solar power has been achieved by India. India is also using nuclear energy, and it has been open to private players. India is consistently now working on small modular reactors. India is the mother of democracy, and we celebrated very recently the 75 years of our constitution. The Prime Minister said that weaponization of supply chains should not be allowed, and he called upon the semiconductor industry to play a constructive role in global growth and development towards world peace.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया, और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया, विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी, और साथ ही सितंबर के माह में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं भारत में, उनका उल्लेख किया, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख आपने किया, ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का उल्लेख किया, और ये कहा कि देश पर दुनिया के देशों का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ऐसे में भारत की बनाई हुई चिप जो है वो दुनिया तक पहुंच रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी देश को प्रेरित करते रहे हैं मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए, फिर मेड फॉर द वर्ल्ड का उल्लेख आपने किया, वोकल फॉर लोकल हमें कहा तो लोकल टू ग्लोबल भी कहा, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अपने लोकतंत्र के मूल्यों को हम बचाए रखें, लेकिन साथ ही आधुनिकता का हाथ भी थामें और इस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुनके पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते रहे हैं, और इसी तरह का प्रेरणा देने वाला आज का ये आयोजन यशोभूमि में जो शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन हुआ है और अगले 3 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आप आयोजन के उद्घाटन सत्र का विवरण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। लाइव प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी अनुपम हरियाणवी के साथ मैं नीलम मलकानिया, अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय।

और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के

0: अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में दो आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhumi in New Delhi. The three-day conference is focusing on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing and on the other side, the global trust in India is also growing. He said every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: On the occasion, Union Minister of Electronics and IT, Ashwini Vaishnav said, India had wanted to establish a semiconductor industry for several decades, but it was possible only under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Semicon India 2026 event has brought together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 50 countries. The BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan has begun from today to mark the completion of 25 years of Prime Minister Narendra Modi's public life and service. As part of the Seva Sankalp Abhiyan, which will continue till the 17th of next month, the first day of the campaign is being observed as Seva Divas, under which blood donation camps have been organized across the country. Later, talking to media on the occasion, BJP Chief Nitin Naveen said party workers across the country are participating in these blood donation camps. He noted that under the leadership of the Prime Minister Modi, lives of citizens have been transformed. Mr. Naveen said under the leadership of Prime Minister Modi, India is rapidly moving on the path of development to achieve the goal of Vikasit Bharat by 2047. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have extended greetings to Prime Minister Narendra Modi on his birthday today. In a social media post, President Murmu lauded Mr. Modi's exemplary public service and a contribution to nation building over the past 25 years, the Vice President said, under the visionary leadership of Mr. Modi, India is shining as a bright spot in the world,

घर आंगन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आज है 17 सितंबर यानी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। आज मनाया जाता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और इसका मुख्य उद्देश्य है मरीजों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, चिकित्सा के दौरान होने वाली गलतियों को कम करना। WHO हर साल इस विशेष दिन के लिए एक खास थीम यानी विषय तय करता है जिस पर पूरी दुनिया में काम किया जाता है। अब की बार यानी 2026 में थीम है गैर संचारी रोगों के लिए सुरक्षित देखभाल यानी सेफ केयर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नारा है जीवन भर सुरक्षित देखभाल, सेफ केयर फॉर लाइफ। इस थीम का महत्व भी हम आपको बता देते हैं। दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर और सांस से जुड़ी पुरानी बीमारियां जो होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल

सीज जी ने कहते हैं इससे पीड़ित मरीजों को लंबे समय तक इलाज और दवाओं की जरूरत होती है। इस दौरान बार बार डॉक्टर बदलने या गलत दवाओं के सेवन से नुकसान होने का जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। इस थीम से ये जो थीम है इसी जोखिम को कम करने में केंद्रित है, यानी स्वास्थ्य की देखभाल करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। अब घर कार्यक्रम है घर आंगन। घर का आंगन एक ऐसी जगह जहां सिर्फ दीवारें नहीं होती, वहां होती हैं यादें, माँ की आवाज, बच्चों की हंसी, त्योहारों की रौनक, दादा नानी की कहानियां, रसोई से आती मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू। और इसी आंगन को आज हम थोड़ा और खूबसूरत बनाएंगे, बातों से, यादों से और पुराने सदाबहार गीतों से। आज की हमारी चर्चा में बहुत खूबसूरत रंग है, फैशन है, घर परिवार है, पर्यावरण है, खाना खजाना है, और इन सब के बीच याद करेंगे उन गीतों को। याद क्या, सुनवाएंगे हम आपको वो गीत जो आज भी दिल को छू लेते हैं।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम था मैं चुप रहूंगी। बातें जब घर परिवार की फैशन की चली रही, फैशन देखिए, फैशन का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? नई साड़ी, नया सूट, नई ज्वेलरी, या फिर आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना आज कुछ अलग लगना ही चाहिए। लेकिन फैशन केवल कपड़ों का नाम नहीं है, फैशन है अपने व्यक्तित्व को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना। 60 और 70 के दशक की महिलाओं को याद कीजिए, साड़ी का अपना आकर्षण था, बालों का जूड़ा, उसमें लगा गजरा, छोटी सी बिंदी, चूड़ियां और सादगी। और आज फिर वही पुराने अंदाज नए रूप में लौट रहे हैं। तो क्यों ना इस बार अपनी अलमारी को थोड़ा समझदारी से देखा जाए कि क्या है इस अलमारी के अंदर और हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो क्यों ना इस बार हम देखें कि जो कपड़े लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं उन्हें निकाला जाए कि क्या है उन कपड़ों के अंदर, और पुरानी साड़ी से या पुराने कपड़ों से हम क्या कर सकते हैं, कुशन कवर, बैग या बच्चों के लिए कोई उपयोगी चीज बना सकते हैं या नहीं। इसे कहते हैं फैशन के साथ पर्यावरण की चिंता। और अगर आप एक बार फैशन के साथ पर्यावरण की चिंता करने लगेंगे ना, तो देखिए मैं सच कह रही हूँ, आपको हर बार लगेगा कि अरे हमें ऐसा करना चाहिए। तो आज हमारे श्रोताओं से सवाल भी यही है। अब हम चलिए पुरानी चीज़ों से क्या बनेगा, ये तो हम आपसे पहले भी पूछ चुके हैं, अब की बार हम पूछ रहे हैं कि साड़ी से जुड़ी आपकी यादगार कोई बात है तो हमें बताइए। आपके घर की सबसे पुरानी और सबसे पसंदीदा साड़ी कौन सी है ये भी बता सकते हैं। क्या आपकी माँ ने कोई आपको साड़ी दी थी, या दादी ने दी थी, या आपकी सासू माँ ने कोई साड़ी आपको दी थी जो आपको बेहद पसंद थी, और अगर आपने अपने फ्रेशर्स पार्टी में कोई साड़ी पहनी थी वो आपकी यादगार हो। और पुरुष साथी जो हमारे सुन रहे हैं प्रोग्राम, वो बताएं कि ऐसी कौन सी याद है उनकी साड़ी की कि उन्होंने किसी को साड़ी खरीद कर दी थी, या कोई साड़ी ऐसी, कोई भी याद कि किसी ने साड़ी पहनी वो आपको खूबसूरत लगी, साड़ी से एक जुड़ी कोई भी यादगार बात आप हमें आज के कार्यक्रम में भेज सकते हैं। हम आपकी ईमेल्स को शामिल करेंगे fmgoldga@gmail.com के जरिए, यानी आप हमें ईमेल भेजिए, साड़ी से जुड़ी कोई यादगार बात बताइए और भेज दीजिए ईमेल fmgoldga@gmail.com पर।

खामोशी फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और देखिए बात चली है फैशन की। अब कपड़े बदलने से फैशन बदलता है, लेकिन रिश्तों में थोड़ा प्यार बढ़ा देने से पूरा घर बदल जाता है। आज घर में सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, सब बिजी हैं, लेकिन क्या हमारे पास एक दूसरे के लिए समय है? कभी गौर कीजिए, बच्चा कुछ कहना चाहता है तो हम फोन में व्यस्त हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं तो बच्चा फोन में व्यस्त है, पति पत्नी के पास बात करने का समय नहीं है, और घर के बुजुर्ग अपनी पुरानी बातें लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जो उन्हें सुन सके। इसलिए आज के घर आंगन में छोटी सी अपील करना चाहते हैं कि दिन में कम से कम 20 मिनट परिवार के नाम कीजिए, मोबाइल को एक तरफ रखिए, साथ बैठिए, पूछिए आज आपका दिन कैसा रहा। यकीन मानिए, कभी कभी यही एक सवाल रिश्तों में बहुत गर्माहट ला देता है। घर बड़ा हो या छोटा, फर्क इससे नहीं पड़ता, जहां रिश्तों में अपनापन हो वही घर सुंदर लगता है, और परिवार की बात हो तो एक और खूबसूरत गीत तो बनता ही है।

नया दौर फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले मोहम्मद रफी को। और बात देखिए ना, हमने पूछा था कि साड़ी से जुड़ी यादगार बात बताएं, तो हमें ईमेल्स मिल गई हैं। राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशु लिखते हैं, चौधरी वास हिसार से लिखते हैं, वो लिखते हैं कि हमारी माँ माताजी 2017 में इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उनकी साड़ी हमने संभाल रखी है। कुछ साड़ियों से रजाई वगैरह के कवर भी बना लेते हैं और अपनी पत्नी को सिर्फ एक साड़ी खरीद कर दी थी। साड़ी भारतीय पहनावा है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जगह साड़ी इस्तेमाल की जाती है। बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए साड़ी आज भी उतनी ही फेमस है, सुंदर है, लुभावनी है जितनी पहले थी, उतनी ही लुभावनी अभी आजकल की लड़कियों में साड़ी का फिर से प्रचलन आ चुका है। और एक और मेल हमें मिली है अफरोज शेख की नेमुआ सुपौल बिहार से कि हमारे गांव में आज भी पुरानी साड़ी को से ही त्योहार मनाते हैं, गोधरा बनाते हैं, जौ की बिछाने का काम करते हैं। मुझे पिंक कलर की साड़ी बहुत पसंद है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी यादें लिख रहे हैं। और एक रोहिणी से हमें नीलम जी की मेल मिली है, वो भी लिखती हैं कि साड़ी वैसे तो मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन आजकल जो प्रचलन चला है उस वजह से मैंने कई साड़ियाँ खरीद ली हैं और अब तो रेडीमेड साड़ी भी आने लगी है। बिल्कुल सही कहा, अब तो ऐसी साड़ी आने लगी है कि बांधो और पहन लो। और पुराने फिल्मों में अगर आपको याद हो तो पुराने हीरोइनें साड़ी ही पहना करती थी। गाना हो, नृत्य हो, कहीं जाना हो, पिकनिक तक पे आप देखेंगे कि अगर पिकनिक का भी सीक्वेंस था ना, पुरानी फिल्मों में साड़ी का सीक्वेंस आता था। हीरो के साथ अगर गीत गा रही है तो भी साड़ी में। याद कीजिए उस दौर को।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन FM गोल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, बातें घर आंगन की। और देखिए आप, जो रसोई है ना हमारी, वो बहुत, उसमें बहुत सारी यादें होती हैं। चलिए रसोई से पहले आंगन की बात करते हैं। अपने घर की ही नहीं बल्कि उस बड़े घर की जिसे हम धरती माँ कहते हैं। पर्यावरण बचाने के लिए हम हमेशा जो बड़े बड़े अभियान खोजते हैं ना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी रसोई, हमारा घर ही इसकी शुरुआत बन सकता है। प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का थैला, पानी की बेवजह जो बहते हैं ना, पानी को नल चला के छोड़ देते हैं, उसे रोकिए। कमरे से निकलते समय लाइट बंद करना, बालकनी में 2 पौधे लगाना, और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को भी इन सारी आदतों में शामिल करना। अगर हर घर की महिला और पुरुष ये तय कर लेना कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है, अपने घर को और थोड़ा पर्यावरण अनुकूल बनाना है, तो बहुत बड़ा असर इसका हो सकता है। तो पानी बचाएंगे, पहला संकल्प लें। दूसरा संकल्प लें, प्लास्टिक को कम करेंगे। तीसरा संकल्प लें, कम से कम 1 पौधे की जिम्मेदारी लें। और पौधे की बात निकली है तो क्यों ना फूलों और खुशियों से भरा और धरती का मुस्कुराता हुआ एक गीत हो जाए। और हाँ, मैं जाने से पहले, गीत सुनाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने पूछा है आपसे एक प्रश्न कि साड़ी से जुड़ा आपका कोई यादगार किस्सा है, कोई यादगार बात है, तो हमें बताइए FM गोल GA @gmail.com पर।

जी हाँ, मौसम बीता जाए, देखिए ना कितना अच्छा मौसम है। इस मौसम में अगर आप पेड़ लगाएंगे ना तो वो बहुत ही आपको फल देगा। और ये गीत हम सुन रहे थे 2 बीघा जमीन से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की थी आवाजें। और जी हाँ, अब हम घर आंगन के उस स्वादिष्ट हिस्से पर आ गए हैं जहाँ पकवान की, खाने की जो खुशबू है ना, वो सिर्फ भूख नहीं जगाती, यादें भी जगाती है। दादी की दाल, नानी के हाथ के परांठे, माँ की हाथ की बनाई खीर और त्योहारों पर बनने वाले पकवान। आजकल रेसिपी के लिए मोबाइल पर हजारों वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की रेसिपी कहीं खो ना जाए? जी हाँ, आपकी सासू माँ, आपकी माता जी, आपकी दादी जी, आपकी फुफिया सास, आपकी बुआ सास, ऐसी पुरानी पुरानी रेसिपीज और खाने की चीज़ें जो आपको बताती हैं ना, वो रेसिपी अगर खो गई ना फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ें यूट्यूब या गूगल पर नहीं मिलेंगी। तो एक बहुत प्यारा काम कीजिए, किसी भी महिला से उनकी खास रेसिपी पूछिए, लिखिए, सामग्री लिखिए, बनाने की विधि लिखिए, साथ में ये भी लिखिए रेसिपी किसकी है, एक डायरी मेंटेन कीजिए। हो सकता है कुछ साल बाद वही डायरी आपके परिवार के लिए किसी खजाने से कम ना हो। और एक छोटी सी रसोई टिप आज के प्रोग्राम में हम आपको देंगे, सब्जियों के छिलकों या बची हुई सामग्री को तुरंत कूड़े में डालने की बजाय देखिए कि क्या उसका कोई उपयोग हो सकता है या नहीं, क्योंकि भोजन की बर्बादी को रोकना भी तो पर्यावरण की सेवा है। और जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका एक मेल और हमें मिला है, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांतिनगर सोनियापत, सोनीपत से। ये लिखते हैं कि बहुत अच्छी बातें इस कार्यक्रम में चल रही हैं, साड़ी हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और साड़ी ही नारी का श्रृंगार है। और आज के दिवस की इन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन मुखी जी। और हम उन सभी मेल्स को इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं जो आप भेज रहे हैं। ये लिख रहे हैं राम बालक दास जी कोलकाता।

आता सी लिखते हैं कि बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और इन्हें भी साड़ी पहना। देखिए कोलकाता में तो साड़ी का अलग ही रिवाज है, इन्हें भी साड़ी बहुत पसंद है और इन्हें भी वो साड़ियां याद हैं जो इन्होंने किसी को गिफ्ट करी हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है राम बालक दास जी। चलिए साड़ी ऐसा है ना कि साड़ी आजकल दोबारा से रिवाज में जब आ ही गई है तो अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए। और हमने तो आपसे पूछ ही लिया है कि आपकी कोई याद है तो हमें बताइए। और अब रसोई की दुनिया से और इस ईमेल्स की दुनिया से फिर से निकलते हैं संगीत की।

ब्लैक किट कैट फिल्में, जी ब्लैक कैट फिल्में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी को, और कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन FM 100.1 MHz पर। अब बात करेंगे बुजुर्गों की। घर में बुजुर्ग हैं तो समझिए कि घर में एक चलता फिरता इतिहास मौजूद है। उनके पास कहानियां हैं, अनुभव हैं, पुराने गीत हैं, पुराने किस्से हैं और जीवन को समझने का अपना नजरिया है। लेकिन आज कई बुजुर्ग अकेलापन महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें सुविधा नहीं साथ और सम्मान भी चाहिए। कभी उनके पास बैठकर पुराने गाने सुनिए, पुरानी तस्वीरें देखिए और तस्वीरों पर चर्चा भी कीजिए, उन्हें बहुत खुशी होती है। उनसे पूछिए आपके समय में त्योहार कैसे मनाए जाते थे, उनकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, कौन सा हीरो या हीरोइन उन्हें पसंद है जिसे, और उसकी क्या अदा उन्हें पसंद है, कौन सा गीत पसंद है और आपकी माँ क्या अच्छा खाना बनाती थी। ऐसी बातचीत से पूरा परिवार अपनी जड़ों से जुड़ सकता है, क्योंकि वक्त की धूप में जो छांव बनकर साथ रहे वो बुजुर्ग हैं जो घर को घर बनाते हैं।

0: के साथ साथ,
1: अरे रे रे।
0: घटा के संग संग,
1: संभालना।
0: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग।

सीता और गीता फिल्म में आशा भोसले और किशोर कुमार को आपने सुना। और अब बात हर उस महिला की जो घर संभालते संभालते अपने सपनों को भी संभालना चाहती है। आज महिलाएं घर से छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। कोई अचार बनाकर बेच रही है, कोई पापड़ बना रही है, कोई सिलाई कढ़ाई कर रही है, कोई ऑनलाइन पढ़ा रही है, कोई अपना छोटा सा बुटीक चला रही है। तो अगर आपके अंदर भी कोई हुनर है तो उसे छोटा मत समझिए। हुनर कभी छोटा नहीं होता, जरूरत है उसे पहचानने की और धीरे धीरे आगे बढ़ाने की। और हाँ, अपने लिए समय निकालना भी बहुत जरूरी है। हर महिला को हफ्ते में कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालना चाहिए। किताब पढ़ें, संगीत सुने, पौधों के साथ समय बिताएं और अपनी सहेली से दिल खोल कर बात करें। खुश महिला ही अपने आसपास खुशियां बांट सकती है। तो हमने आज घर आंगन में बात की फैशन की, परिवार की, पर्यावरण की, खाना खजाने की, बुजुर्गों की और सबसे बढ़कर आपकी। याद रखिए, घर को सुंदर बनाने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं, थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए, थोड़ी हरियाली चाहिए, आपकी मुस्कुरा

मुस्कुराहट चाहिए, खुशियां चाहिए और रसोई से आती अपनों की पसंदीदा खुशबू भी चाहिए। आंगन में पौधे हों, रसोई में खुशबू हो, रिश्तों में मिठास हो और चेहरे पर मुस्कान हो तो जिंदगी का हर दिन त्योहार बन जाता है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और हम ईमेल पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने जो प्रश्न पूछा है उसके जवाब आ रहे हैं। निर्मल देवी वास से लिखती हैं, हम हमेशा साड़ी पहनते हैं क्योंकि यही साड़ी हमारी संस्कृति की पहचान है। और रश्मि कपूरिया का मैसेज आया है, वैशाली से ही लिखती हैं, मैं तो बहुत साड़ी पहनती हूँ और मैं तो कई बार ऐसा होता है कई फंक्शंस में एक ही दिन में कई साड़ी चेंज कर लेती हूँ। मैं बहुत जल्दी साड़ी बदल कर नया रूप भी अर्पित कर लेती हूँ। और अभी गणपति उत्सव पर इन्होंने महाराष्ट्रीयन लुक की साड़ी पहनी थी और तीज उत्सव पे तीज लुक की साड़ी पहनी थी। बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह से साड़ियाँ पहन लेती हैं तो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं दो रास्ते फिल्म से, और कार्यक्रम घर आंगन से मुझे यानी राधा पाठक को दे इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।

0: आंगन।
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और 5वां स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधि

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और वक्त हुआ है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम बात करेंगे हसरत जयपुरी जी की, जो हिंदी सिनेमा के महान गीतकार और उर्दू हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने अपनी अनूठी शायरी से हिंदी फिल्मों को कई सदाबहार गीत दिए। आपको बता दें कि उन्हें शेर व शायरी का शौक अपने नाना फिदा हुसैन से विरासत में मिला था। हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और गीतकार और संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी ने राज कपूर की फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दिए। गीतकार हसरत जयपुरी जी की आज 27वीं पुण्यतिथि है। उनके गीतों के जरिए हम उन्हें याद करेंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं रुचिका आपके साथ।

जी हाँ, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना ये सुपरहिट गीत, और फिल्म थी अंदाज। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं गीतकार हसरत जयपुरी जी की। 15 अप्रैल 1922 को राजस्थान के जयपुर में जन्मे हसरत जयपुरी का मूल नाम इकबाल हुसैन था। हसरत जयपुरी बचपन से ही शायराना मिजाज वाले इंसान थे। उनके नाना फिदा हुसैन अपने जमाने के जाने माने शायर हुआ करते थे। वे 1940 के दशक में मुंबई आए और लगभग 8 साल तक बस कंडक्टर की नौकरी की, और आपको पता है इसके लिए उन्हें 11 रुपए महीने मिलते थे। कंडक्टर की नौकरी करने के दौरान वे मुशायरों में भी हिस्सा लेते थे, क्योंकि बचपन से ही उनका शौक था लिखना। एक दिन मुशायरे के दौरान पृथ्वीराज कपूर की नजर हसरत जयपुरी पर पड़ी, और उन दिनों पृथ्वीराज के बेटे और एक्टर राज कपूर फिल्म बरसात की तैयारी कर रहे थे और कुछ नए कलाकारों की तलाश में थे। पृथ्वीराज कपूर ने हसरत जयपुरी की मुलाकात राज कपूर से करवाई, और बरसात में पहला गाना जिया बेकरार है छाई बहार है लिखने का उन्हें मौका दिया। और इस फिल्म के बाद राज कपूर ने उन्हें अपने यहाँ 300 रुपए महीने पर रख लिया, और कुछ इस तरह से हसरत जयपुरी साहब का फिल्मों में गीत लिखने का सफर शुरू हुआ।

गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सहरा से। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं गीतकार और शायर हसरत जयपुरी साहब की। आज हम उनकी 27वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आपको बता दें 15 अप्रैल 1922 को राजस्थान के जयपुर में उनका जन्म हुआ था और उनका मूल नाम इकबाल हुसैन था। 1940 के दशक में वे मुंबई आए थे और लगभग कई सालों तक उन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी की थी और उसके बाद उन्हें ब्रेक दिया था राज कपूर साहब ने। तो चलिए

जी हाँ, शमी कपूर और वैजयंती माला पर पिक्चराइज ये गीत आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की और एक फिल्म थी प्रिंस। और जाहिर सी बात है, इस गीत को लिखा था गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने। और आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं गीतकार और शायर हसरत जयपुरी साहब की। हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी ने राज कपूर की फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए। बरसात के बाद हसरत जयपुरी ने राज कपूर की कई फिल्मों के गीत लिखे थे। पहली फिल्म के बाद हसरत की जोड़ी संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र के साथ बन गई थी। इनकी टीम ने कई फिल्मों के गीतों को यादगार बना दिया था। 1971 में जयकिशन के निधन के बाद तीनों की जोड़ी टूट गई थी। हसरत जयपुरी जयकिशन के बेहद करीब थे।

हसरत जयपुरी ने फिल्मों में कई रोमांटिक गीत लिखे। उन्हें प्रिंस ऑफ रोमांस भी कहा जाता है। हसरत जयपुरी ने लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए लगभग 2000 गीत लिखे। उन्होंने 2 बार फिल्म सूरज और अंदाज के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी अपने नाम किया।

जयपुरी का निधन हुआ था, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके गीतों के जरिए जिंदा हैं। उनके गीत और शायरी आज भी अमर हैं और हमेशा रहेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से वसत पा रहा है और इख्तिरा, सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहा है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत ने सेमीकंडक्टर की वसीतर जरूरियात के लिए मुल्क भर में चिप डिजाइन करने की खातिर कम अज कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों की मदद का हदफ रखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी के मुल्क की सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम को आज 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत ने अमरीका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की तनकीद की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का इफ्तिताह किया। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में इश्तराक, सरमायाकारी, इख्तिरा और भारत में हुनरमंदी के फरोग पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक तरफ भारत की मईशत तरक्की कर रही है और दूसरी तरफ भारत पर आलमी एतमाद में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चैलेंज भरे आलमी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की शरह तरक्की दर्ज की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस वक्त जापान की क्रेडिट दर्जाबंदी एजेंसी ने भी भारत की सॉवरेन दर्जाबंदी को बेहतर किया है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी एक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के अज़्म के साथ काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से वसत पा रहा है और ये इख्तिरा, सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहा है।
1: इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर सनत के लिए एक पसंदीदा मकाम बनने की खातिर हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल भरोसा मैन्युफैक्चरिंग मकामात तलाश कर रही है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि मोहाली और सूरत में हाल ही में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में कमर्शियल पैदावार का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए इस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में हाल ही में मुनक़िद हुई ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सरबराह मीटिंग की कामयाबी के साथ मेजबानी की, जिसमें हर मेंबर मुल्क के इत्तेफाक़ी राय के साथ नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई दहाइयों से भारत सेमीकंडक्टर सनत कायम करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जेर क़यादत ही मुमकिन हो पाया। उन्होंने कहा कि अब बुनियाद कायम कर ली गई है और अगला कदम सेमिकॉन 2.0 के जरिए सनत कायम करना है, जिसमें 6 अहम सुतूनों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 200 स्टार्टअप और कंपनियों को भारत में चिप डिजाइन करने के सिलसिले में मदद फराहम करने का निशाना रखा है। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक्वामी कंपनियां और 50 से ज्यादा मुल्कों के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर आज से बीजेपी के मुल्क की सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। सेवा संकल्प अभियान जो आइंदा माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा, इसका पहला दिन सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके तहत मुल्क भर में खून अत्या करने के कैंप लगाए जाते हैं। इस मौके पर बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि मुल्क भर से पार्टी वर्कर खून अत्या करने के इन कैंपों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जेर क़यादत

0: शहरियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी के आज 25 बरस मुकम्मल हुए हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है। आज हम खुसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत किस तरह दफा 370 की मनसूखी के जरिए एक मुल्क एक आईन के नजरिए को फरोग मिला, इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश कर रही हैं।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है, और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह बयान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आईनी तब्दीली की अक्कासी करता है। दफा 370 की मनसूखी से खित्ते में इंतजामी और सियासी तरीक़ेकार में एक अहम तब्दीली की भी अक्कासी होती है। शाहराहों से टनल्स तक और रेलवे पुलों से मुल्क के बाकी हिस्से से बेहतर कनेक्टिविटी तक जम्मू कश्मीर ने बुनियादी ढांचे में खातरख्वाह पेशरफ्त का मुशाहिदा किया है। 2019 के बाद से बुनियादी ढांचे, सियाहत, सरमायाकारी और हुक्मरानी के सिलसिले में नुमाया पेशरफ्त हुई है। मौजूदा हुकूमत इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम कर रही है। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वज़ीर-ए-आज़म को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने गुज़श्ता 25 बरस में जनाब मोदी की गैर मामूली अवामी खिदमात और मुल्क की तामीर में उनके गिरां कद्र तआवुन की सताइश की। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की बसीरत अफरोज क़यादत के तहत भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई अहम मईशतों में शामिल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन साल 2023 में इस स्कीम का आगाज किया था, जिसका मकसद 18 मुतालिका तिजारत से मुंसलिक रिवायती फनकारों और दस्तकारों को शुरू से आखिर तक मदद फराहम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पीएम विश्वकर्मा स्कीम ने एक अहम संग मेल हासिल किया है और इस पहल के तहत 30 लाख मुस्तफिदीन का इंदराज हो चुका है। इस स्कीम का मकसद विश्वकर्मा के रिवायती हुनर को मुस्तहकम करते हुए उन्हें इदारा जाती मदद, जाती साजो सामान, कर्ज तक रिसाई, हुनरमंदी के फरोग और बाजार राब्तों के सिलसिले में मदद फराहम करना है, ताकि उनके आमदनी में इजाफा हो सके। हुनरमंदी के फरोग और कारोबार की वजारत के जरिए अब तक तकरीबन 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी हुनर की तरबियत फराहम की जा चुकी है। कर्ज की सहूलत के तहत 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्माओं को 5% सालाना की रियायती शरह सूद के हिसाब से 1 लाख रुपए तक के कर्ज फराहम किए जा चुके हैं। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: डायरेक्टर जनरल न्यूज राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी के इहाते में अफसरान और अमले को स्वच्छता अहद दिलाया। इस मौके पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल न्यूज एस सुब्रमण्यम भी मौजूद थे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार पाकिस्तान में कायम दहशतगर्दों के कैंपों और अलकायदा क़यादत के दरमियान बराह रास्त राब्ते का हवाला देते हुए दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की सख्त नुक्ताचीनी की है। मर्दों के क्रिकेट में आज भारत दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 बैन अल-अक़वामी सीरीज का आखिरी मैच खेलेगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पहले 2 मैचों में शानदार जीत के साथ सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इको निज़ाम तेजी से वुसअत पा रहा है और ये इख्तिरा सरमायाकारी और तरक्की के लिए नए इम्कानात पैदा कर रहा है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत ने सेमीकंडक्टर की वसीतर जरूरियात के लिए मुल्क भर में चिप डिजाइन करने की खातिर कम अज कम 200 स्टार्टअप और कंपनियों की मदद का हदफ रखा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी के मुल्क पीर सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज हो गया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम को आज 3 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों को साजगार माहौल फराहम करने पर पाकिस्तान की तनकीद की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: कंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन

0: डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
0: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमीकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
0: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है।

0: इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
1: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खा वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हरतानों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
0: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
3: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
4: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी।

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमरीकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
1: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के
2: बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को ना खोए।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। वक्त हो गया है संगीत.com का। मैं हूँ आपके साथ रुचिका, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं और संगीत.com का सफर फिलहाल जारी है। आपको याद है 1981 में एक फिल्म आई थी नसीब, जी हाँ, एक ब्लॉकबस्टर और मसाला फिल्म थी। इस फिल्म से संबंधित कुछ रोचक तथ्य हैं वो मैं आप सभी के साथ बांटना चाहती हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि निर्देशक मनमोहन देसाई इस फिल्म में एक बार फिर से अपनी मशहूर तिकड़ी जो उन्होंने अमर अकबर एंथनी फिल्म में ली थी, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की जोड़ी, उसे दोहराना चाहते थे। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर तो तैयार हो गए थे, लेकिन विनोद खन्ना ने फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना लिया था और इस तरह से वो जो रोल था जो विनोद खन्ना को पहले मिलने वाला था वो मिला शत्रुघ्न सिन्हा जी को। और आपको एक और बात बता दें कि ये अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करने वाली आखिरी मुख्य फिल्म थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जो हैं वो समय के थोड़े पाबंद हैं और बस इसी बात को लेके थोड़ी सी उनमें थोड़ी नाराज़गी हो जाया करती थी। और एक और बात इस फिल्म से जुड़ी मैं आपको बता दूं कि नसीब भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फिल्म थी जिसका ट्रेलर सिनेमाघरों के अलावा पहली बार दूरदर्शन पर भी दिखाया गया था। तो चलिए, जब हमने इतनी सारी बातें की इस फिल्म के बारे में, तो क्यों ना इस फिल्म का एक गीत मैं आप तक पहुंचा दूं। और एक और ख़ास बात बता दूं कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिलने के बाद इस फिल्म को तमिल और तेलुगु में भी रीमेक किया गया था।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। चलिए एक जरूरी सूचना आपको हम दे दें। तत्काल रक्तदाता की आवश्यकता है और कहाँ आवश्यकता है? PSRI अस्पताल साकेत नई दिल्ली में। जो भी इच्छुक रक्तदाता हैं वो तत्काल संपर्क करें और ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव की आवश्यकता है। फोन नंबर है 9811353879 और दूसरा नंबर है 9810119294। नंबर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 9811353879 और 9810119294। PSRI अस्पताल साकेत नई दिल्ली, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव की तुरंत आवश्यकता है।

जी हाँ, 1982 में रिलीज हुई थी ये फिल्म सत्ता पे सत्ता। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आपको बता दें कि इस फिल्म की जो जान था वो था आर डी बर्मन साहब का संगीत, और अमिताभ बच्चन का डबल रोल जो था वो भी दर्शकों को बेहद पसंद आया था, और ये फिल्म उस वक्त की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। तो संगीत.com में बस इतना ही फिलहाल। वक्त हो चला है समाचारों का, आप सुनेंगे समाचार और सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 MHz।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। इसके पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद स्वयं भी रक्तदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को

0: याद करने का आह्वान किया।
1: Draining the swamp that provided an
2: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाए और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को ना खोए।
0: जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो रही है। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग
3: एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इज एक्सपैंडिंग रैपिडली एंड इट इज ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ।
4: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
3: Mr. Modi said on one side India's economy is growing and on the other side global trust in India is also growing. He said despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. The Prime Minister said at the same time Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said every citizen of the country is working with commitment to build a developed India. On the occasion, Union Minister of Electronics and IT Ashwini Vaishnav said the foundation has now been laid and the next step is to build the industry through Semicon 2.0, which focuses on 6 major pillars. These include semiconductor design, machines and materials, memory, silicon, compound and logic fabrication units and research and development. He said the government has set a target to support at least 200 startups and companies to design chips in India across the spectrum of semiconductor requirements. The BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan has begun from today to mark the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public life and service.

आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:57 rdelhi@gmail.com इस ईमेल आईडी पर आप अपनी पसंद हम तक पहुंचाइए। हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाने की कोशिश करेंगे। आपके साथ आज के कार्यक्रम में मैं रहूंगी नईम अख्तर, और आज के कार्यक्रम का जो पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसकी फरमाइश हमारे पास आई है लेवाई छत्तीसगढ़ से, बहुत दूर से लेवाई छत्तीसगढ़ से, गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी की। और ये गीत के लिए इन्होंने लिख करके भेजा, ये गीत हमें बहुत पसंद है, कृपया सुना दीजिए। जी कृपया की कोई बात नहीं, हम उसको सुनवा देते हैं आपको, लेकिन हम भी इसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहेंगे कि ये जो गीत है इसमें कई चीज़ें बिल्कुल अलग हैं जो और गीतों से इसको थोड़ा सा अलग करती हैं। तनुजा और अशोक कुमार तो आप सभी को पता होगा इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में थे। इसके जो इस गीत के जो बोल लिखे हैं वो केदार शर्मा ने लिखे, जो संगीत दिया है स्नेहल भाटकर ने दिया, और इसको जो आवाज़ दी है इस गीत को अपनी वो है बेहद टैलेंटेड मुबारक बेगम ने। मुबारक बेगम की आवाज़ का ये गीत, और संगीत और गीतकार तो हमने आपको बताया ही कि वो भी कम सुनाई देते हैं, मतलब उनके नाम कम सुनाई देते हैं लेकिन बहुत टैलेंटेड रहे। तो टैलेंट से भरपूर इस खूबसूरत नगमे को आप और हम मिलकर सुनते हैं आज के मन भावन कार्यक्रम का आगाज करते हैं।

कार्यक्रम मन भावन, जिसमें आपने अभी सुना गीत ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, फिल्म धनवान। ये 1981 की फिल्म थी और इस फिल्म के इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई थी सनावद से, शेख मूसा मोहसिन की। तो इनकी पसंद का गीत तो हमने आपको सुनवा दिया। आप भी अपनी पसंद का गीत हम तक पहुँचा सकते हैं ईमेल के माध्यम से, fmgold@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, स्पेल आउट कर रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, fmgold@gmail.com। और अब हम कुछ श्रोताओं के नाम ले रहे हैं। ये हैं खमहरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये हैं राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार खयाला से। और इनके अलावा हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और परिवार के सभी सदस्य। इन सभी श्रोताओं ने जो गीत सुनना चाहा यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप सभी की फरमाइश का गीत जो आप लोगों ने हम तक लिखकर भेजा सुनने के लिए, वो हम नहीं सुनवा पाएंगे क्योंकि आप सभी की पसंद के गीत हमारे पास नहीं है इत्तेफाक से। लेकिन हमें यकीन है कि हमारे बाकी वो सभी श्रोता जिनकी पसंद के गीत हम अभी बजाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं आपको, आप वो गीत भी उतने ही पसंद करेंगे और उतने ही शौक से सुनेंगे आप ही के अपने चैनल FM गोल्ड 100.1 MHz पर। तो चलिए अब बता देते हैं कि अब हम अपने किन श्रोता की पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी और इन्होंने हमें हमारे पास मैसेज भेजा है जालंधर पंजाब से। तो आप सभी की पसंद का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जो 1991 की फिल्म हीना से है।

0: एक जरूरी सूचना सुनिए, तत्काल रक्तदाता की आवश्यकता है। रक्त समूह है ओ नेगेटिव या फिर ओ पॉजिटिव। जिस अस्पताल में आप रक्तदान कर सकते हैं वो है PSRI हॉस्पिटल, साकेत, नई दिल्ली। कृपया इच्छुक रक्तदाता तत्काल संपर्क करें इन फोन नंबर्स पर 9811353879 और 9810119294।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 3:43:45 मन भवन कार्यक्रम में आपके साथ मैं नईम अख्तर लेकर आपके लिए एक ईमेल आईडी ताकि आप हम तक पहुंचा सकें अपनी पसंद के किसी गीत की फरमाइश fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, फिल्म आपकी परछाइयां का ये गीत हमें सुनने की फरमाइश भेजी थी चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमल अनेजा ने। इसके अलावा गौरीशंकर जी नागलोई से आपने हमें जो अपनी फरमाइश भेजी है वो गीत हमारे पास नहीं है, हम माफ़ी चाहेंगे। एक और गीत हमारे पास आया लेकिन गीत हमारे पास है लेकिन हम बजाना नहीं चाहते क्योंकि ये बादल यूं गरजता है, ये इस मौसम को बिल्कुल सूट नहीं करेगा जिसमें इतनी तेज़ धूप निकल रही है। तो ये गीत सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी थी महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर से। तो बादल यूं गरजता है भेजिएगा दोबारा फिर से जिस दिन बारिश हो रही हो ताकि गीत को सुनने का भी मज़ा आए। अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा, हमारे बाकी श्रोता भी उसको बहुत एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ज़रूर इस गीत को एंजॉय कर सकते हैं जो हम अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये गीत हमसे सुनने की फरमाइश भेजी है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया ने।
1: वो जब याद आए

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, जिसमें हमारी ईमेल आईडी हम आपको कई बार बता चुके हैं, एक बार और बता रहे हैं, fmgold@gmail.com दोबारा बता रहे हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com और इस ईमेल आईडी पर आपकी पसंद के गीत हम तक पहुंच रहे हैं लगातार आपकी पसंद के गीतों में। अब जो अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं वो गीत हम आपको बताएंगे किसने सुनना चाहा है। उससे पहले हम ये बता देते हैं कि फिल्म एक राज फिल्म का जो गीत अभी आपने सुना, उठेगी तुम्हारी नज़र धीरे धीरे, ये गीत गांव मुल्लाहेड़ा हरियाणा से इदरीस सैफी ने सुनने की फरमाइश भेजी थी। और अगला मैसेज हमारे हाथ में जो है वो है भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, इन्होंने सुनना चाहा है ये गीत।

एक जरूरी सूचना सुनिए, ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव ग्रुप के लिए तत्काल एक रक्तदाता की आवश्यकता है। जहां आप ये रक्तदान कर सकते हैं वो है PSRI हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली, और इच्छुक रक्तदाता तत्काल संपर्क कर सकते हैं 9811353879 पर, या फिर 9810119294 इन्फो नंबर्स पर। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं मन भावन, और मन भावन में आखिरी एक या दो गीत पहुंचाने का वक्त है हमारे पास। अभी जो गीत आपने सुना वो फिल्म सनम बेवफा से था। इस गीत को सुनने की फरमाइश पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, हम्माद जमील और अरीबा हबीबा ने भेजी थी। अब गीत हम सुनाने जा रहे हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और ढींगिया की फरमाइश पर बागपत उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपना ईमेल हमें पहुंचाया है। फिल्म जंगली का ये गीत सुनना चाहते हैं, और इसी गीत को एक और श्रोता ने एक और जगह से सुनने की फरमाइश भेजी है। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू ने।

आपका एहसान तो हमारे ऊपर है ही, क्योंकि आप अपनी पसंद लगातार हम तक भेज रहे हैं। कार्यक्रम का आखिरी गीत आज जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसकी फरमाइश हमें तीन अलग अलग जगह से आई है। अफरोज शेख ने हमें नेमुआ सुपौल बिहार से भेजा है अपनी फरमाइश का गीत, और ये हैं छत्तीसगढ़ मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खदीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, और छत्तीसगढ़ रायपुर से ही मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा के साथ उनके परिवार के सभी सदस्य।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इसमें नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। इसके पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद स्वयं भी रक्तदान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिखित एक लेख साझा किया है। इस लेख में भारत के समावेशी विकास पथ का उल्लेख किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने सरकार की मूल नीति सबका साथ सबका विकास पर बल दिया है। लेख में श्री कोविंद ने बताया कि कैसे भारत की विकास गाथा उन लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में ला रही है जो पहले अनसुने, अनदेखे या उपेक्षित थे। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया।
2: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर न थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: लॉट ऑफ अप्लाइड R&D विल बी डन वेयर द इंडस्ट्री विल बी इन्वाइटेड टू गिव प्रोजेक्ट्स फॉर R&D वेयर गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री विल फंड देम। एकेडेमिया विल ज्वाइन इट एंड इट विल बी अ journey which can really produce some good tangible results.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की नीलामी आज से शुरू हो गई है। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निहित जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। वे आज NABFID वार्षिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैच की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। शाम के 4:11 हुए हैं। आपके साथ मैं हूं नईम अख्तर, लेकर कुछ फिल्मी नगमे।

साकेत नई दिल्ली के PSRI हॉस्पिटल में तत्काल ओ नेगेटिव अथवा ओ पॉजिटिव रक्त समूह की आवश्यकता है। इच्छुक रक्तदाता कृपया तत्काल 9811353879 पर या 9810119294 पर संपर्क करें। आकाशवाणी FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: or courier to the JCIT headquarters, personnel and establishment, Ayakar Bhavan, Kolkata, and must reach by 30th September 2026. Candidates are also required to submit the application through the Google form specified in the detailed advertisement. Details and the application format is available at the Income Tax Department Kolkata website. Kindly refer to www.incometaxindia.gov.in/Kolkata News. Ministry of Health and Family Welfare invites applications for one post of a director at the Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, on deputation basis. The post carries pay level 13 as per the 7 CPC. Eligible candidates may refer to the detailed eligibility conditions and application procedures on the Ministry of Health and Family Welfare and CDSCO. Applications must reach the concerned authority within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website at www.mohfw.gov.in. The Ministry of Textiles invites applications for one post of Investigator Group C ex-cadre on deputation or transfer basis in pay level 6. The post is open primarily to senior secretariat assistants of the Central Secretariat Clerical Service and Stenographers, Grade D of the Central Secretariat Stenographers Service with 5 years regular service, or in their non-availability, junior secretariat assistants, computist or equivalent with 10 years regular service. The initial period of deputation is 3 years. Detailed eligibility and the prescribed application format is available at the Ministry of Textiles vacancies. The last date for submission is 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. For details, do refer to the website at www.texmin.gov.in. The New Delhi Municipal Council, NDMC, invites applications for 3 posts of a director on deputation basis for a period of 3 years in pay level 12 as per the 7 CPC. Eligible officers of central, state governments and UT administrations should either be holding an analogous post on a regular basis or have 5 years regular service in pay level 11 or equivalent. Candidates should also possess a degree from a recognized university and 10 years experience in administration, establishment or accounts matters. The maximum age limit is 56 years as on the closing date. Applications along with CV, qualifications and experience certificates, APARs for the last 5 years and vigilance and integrity certificate should be forwarded through proper channel and reach the director personnel, NDMC, Palika Kendra, New Delhi by 5th October 2026. Details and the prescribed performer is available on the website. Do refer to www.ndmc.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के तहत लेवल 12 में एनडीएमसी में निदेशक के 3 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। परिपत्र और प्रोफॉर्मा उपलब्ध है इस वेबसाइट पर www.ndmc.gov.in। शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं यही वेबसाइट यानी www.ndmc.gov.in। इसके अतिरिक्त 12 से 18 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र भी देखा जा सकता है। गोवा शिपयार्ड में उपलब्ध हैं ये रिक्तियां। शिक्षु परियोजना कार्यकारी मैकेनिकल, रिक्तियों की संख्या 9। शिक्षु परियोजना कार्यकारी इलेक्ट्रिकल, रिक्तियों की संख्या 12। शिक्षु परियोजना कार्यकारी इलेक्ट्रॉनिक्स, रिक्तियों की संख्या 5। शिक्षु परियोजना कार्यकारी वित्त, रिक्तियों की संख्या 1। और शिक्षु परियोजना कार्यकारी नेवल आर्किटेक्चर रिक्तियों की संख्या 4। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन के लिए देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की वेबसाइट www.goashipyard.in। वेबसाइट पर जाकर नोटिस बोर्ड करियर्स एडवर्टीजमेंट के अधीन देखिए और किसी भी समस्या का यदि आप सामना करते हैं तो ईमेल पर भी आप स्पष्टीकरण ले सकते हैं। ईमेल का पता है recruitment@goashipyard.com। रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संविदा के आधार पर कानूनी सलाहकार की नियुक्ति के लिए पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट chemicals.gov.in/recruitments। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो आमंत्रित कर रहा है इन विभागों के लिए आवेदन। ऑटोमोबाइल तकनीकी सहायक 1, यांत्रिक तकनीकी सहायक 3, इलेक्ट्रॉनिकी व संचार विभाग 1, तकनीशियन बी के पद उपलब्ध हैं इन विभागों के लिए। टर्नर, फिटर, वेल्डर, मशीन मिस्त्री, प्रशीतन और वातानुकूलन, इलेक्ट्रीशियन तथा लघु वाहन चालक ए के ग्रेड में रसोईया और फायरमैन के पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। शैक्षिक योग्यता, आरक्षण, वेतनमान, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.iprc.gov.in। NSIC तकनीकी सेवा केंद्र इन पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। CNC प्रौद्योगिकी में मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स अवधि 6 माह, वेल्डिंग प्रौद्योगिकी में एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स अवधि 6 माह, गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण अवधि 1 वर्ष, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग 1 वर्ष, CNC मशीनिंग में एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स 1 वर्ष, ऑटोकैड CNC मिलिंग अवधि 2 माह और मास्टर कैंप पाठ्यक्रम के लिए अवधि रहेगी 4 सप्ताह। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को प्लेसमेंट संबंधी सहायता भी प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nsic.co.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी बराबर नजर और इसके बाद याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं हरदिल अजीज, अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
2: हेलो हेलो मुनीश, हेलो एंड वेरी एंड थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई डोंट नो व्हेदर आई डिजर्व दैट, बट हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज ऑफ कोर्स माय को-होस्ट मुनीश शर्मा। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया, कहा भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है।
2: यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेज गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू सपोर्ट 200 स्टार्टअप्स एंड कंपनीज टू डिजाइन चिप्स इन इंडिया अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट्स।
1: प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू।
2: पीएम विश्वकर्मा स्कीम कंप्लीट्स 3 years टुडे।
1: भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकियों को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की।
2: एंड इन मेंस क्रिकेट, इंडिया टू टेक ऑन अफगानिस्तान इन द लास्ट मैच ऑफ द T20 इंटरनेशनल सीरीज इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग। And now it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Patient Safety Day and PM Vishwakarma Scheme. Well, to start off with the first topic of the day, that is the World Patient Safety Day, Munish. Today, September 17, marks World Patient Safety Day, a global day that reminds us of one simple but powerful truth. Safe healthcare is a fundamental part of every patient's right to quality care.
1: जी हाँ, और इस साल इस बात पर खास ध्यान दिया जा रहा है। 2026 का थीम है गैर संचारी रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए सुरक्षित देखभाल, और इसका दमदार स्लोगन है जीवन के लिए सुरक्षित देखभाल।
2: Non communicable diseases or NCDs include conditions such as heart disease, cancer, diabetes, chronic respiratory diseases, and unlike many short-term illnesses, these conditions often require care for years, sometimes for a lifetime.
1: इसका मतलब यह है अभिषेक कि मरीजों को बार-बार डॉक्टर से सलाह लेने, जांच कराने, दवाएं लेने, इलाज कराने और फॉलोअप के दौर से गुजरना पड़ सकता है, और हर चरण में सुरक्षित तालमेल वाली और लगातार देखभाल की जरूरत होती है।
2: Yes, Munish, and from getting the right diagnosis to taking the right medicine, from monitoring a patient's condition to communicating clearly between healthcare teams, every detail matters.
1: और मरीजों के बीच में अहम भूमिका होती है, सवाल पूछना, दवाइयों को समझना, सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारियों को साझा करना और इलाज से जुड़े फैसलों में शामिल होने से देखभाल को ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है।
2: Yes, and but patient safety isn't only about medicines and medical procedures. Behind every safe healthcare experience are doctors, nurses, technicians, caregivers and of course countless other healthcare workers.
1: और वो सिर्फ दवाइयां लिखने या इलाज की प्रक्रियाएं करने से कहीं ज्यादा काम करते हैं। दरअसल उनकी लगातार निगरानी से मरीज की हालत में होने वाले अचानक बदलावों का जल्दी पता लगाने में मदद मिल सकती है। कभी कभी तो गंभीर समस्याओं को जानलेवा बनने से पहले ही पकड़ा जा सकता है।
2: एंड ड्यूरिंग डिफिकल्ट हेल्थ क्राइसिस, मुनीश, द प्रेजेंस कैन प्रोवाइड समथिंग इक्वली इम्पोर्टेंट, रीअश्योरेंस, ट्रस्ट एंड इमोशनल सपोर्ट फॉर पेशेंट्स एंड द फैमिलीज।
1: इसीलिए अभिषेक, हेल्थ केयर वर्कर्स का सहयोग करना भी मरीजों की सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा है। सही संख्या में स्टाफ, लगातार ट्रेनिंग, भरोसेमंद उपकरण, अस्पताल के आधुनिक संसाधन और मानसिक स्वास्थ्य में मदद से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहीं ज्यादा सुरक्षित और सम्मानजनक देखभाल दे सकते हैं, है ना?
2: Absolutely. And the World Health Organization estimates that around 1 in 10 patients experiences harm during healthcare, and about half of this harm is considered preventable. I think like prevention is much better than cure. If we take necessary precautions, Munish, we can prevent these problems from occurring, isn't it?
1: Indeed, yes. और इसीलिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस सिर्फ किसी समस्या को पहचानने का दिन नहीं है. ये सरकारों, अस्पतालों, स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों, परिवारों और समुदायों से मिलकर काम करने और ऐसी नुकसानदायक स्थितियों को कम करने का आह्वान है जिन्हें रोका जा सकता है.
2: एंड बिकॉज फॉर समवन लिविंग विद अ क्रॉनिक डिजीज, हेल्थ केयर इजंट अ सिंगल अपॉइंटमेंट. इट इज अ जर्नी फ्रॉम प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, रिहैबिलिटेशन, पैलिएटिव केयर एंड सेल्फ केयर.
1: और उस सफर का हर चरण सुरक्षित, सम्मानजनक, समन्वित और मरीज केंद्रित होना चाहिए.
2: सो ऑन दिस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, लेट्स रिकॉग्नाइज द डेडिकेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु वर्क टायरलेसली, ऑफन अराउंड द क्लॉक टू प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर पेशेंट्स. सो दिस सितंबर 17th, लेट्स स्टैंड टुगेदर फॉर सेफर हेल्थ केयर.
1: और दुनिया भर में एकजुटता के प्रतीक के तौर पर आज गैर संचारी रोगों से पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षित देखभाल के समर्थन में दुनिया भर की मशहूर जगहों और सार्वजनिक स्थानों को नारंगी रोशनी से रोशन किया जा रहा है.
2: सो wherever यू आर, टेक अ moment टू appreciate द हेल्थ केयर workers who care फॉर us, एंड remember दैट एवरी सेफ decision

0: Infrastructure and connectivity to tourism, investment and governance, Jammu and Kashmir has witnessed significant change since 2019. The present government is continuously working to maintain this momentum. With sustained focus on development, economic growth, employment generation and improved public services, while building on the gains made over the past 7 years. Ishfaq Shah, Akashvani News, Srinagar.
1: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का क्या कुछ है विशेष आज उनके पास। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 और 14 सितंबर को गुजरात के कच्छ जिले का 2 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मैंग्रोव संरक्षण, घास के मैदानों के पुनरुद्धार और ग्रेट इंडियन बास्टर्ड्स के संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता परेश मारू की ये रिपोर्ट।
2: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले का 2 दिवसीय दौरा किया। यात्रा के पहले दिन भुज में आयोजित कार्यशाला में मंत्री श्री ने मिष्टी कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि गुजरात ने 2023 से 27 के 29,250 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 27,652 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर कर लिया है। इस अवसर पर मैंग्रोव एटलस ऑफ गुजरात और MGIS पोर्टल का लोकार्पण किया गया तथा गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव को राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यात्रा के दूसरे दिन नलिया में GIB संरक्षण के लिए गुजरात एक्शन प्लान जारी किया गया और एक नए सॉफ्ट रिलीज सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय कदम उठाते हुए वन विभाग द्वारा आक्रामक विदेशी पौधों को हटाकर लगभग 11 वर्ग किलोमीटर घास के मैदान का पुनरोद्धार किया गया है और 30 किलोमीटर लंबी प्रीडेटर प्रूफ फेंसिंग बनाई गई है। इसके अलावा जंगली GIB मादा द्वारा दिए गए बंजर अंडों को संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के उपजाऊ अंडों से बदलने के जंप स्टार्ट हस्तक्षेप के तहत जन्मा चूजा जंगल में 3 महीने से अधिक समय तक जीवित रहने में सफल रहा है, जो इस गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति की पुनर्प्राप्ति के लिए एक ऐतिहासिक सफलता है। इसके साथ ही सायरा में मियावाकी पद्धति से विकसित सायरा वन कवच का लोकार्पण किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया है और वन्य जीव सुरक्षा के लिए 13 नई गश्ती और बचाव वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। यात्रा के अंत में जखाऊ में मंत्री ने BSF के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मैंग्रोव पौधे रोपे तथा सीवीड उत्पादकों और योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस यात्रा के दौरान गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाड़िया भी उपस्थित रहे। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
3: Farmers and villagers of Saichal and Mizoram's Saitwal district unite to celebrate the traditional Lo Zao Pui farming festival, an occasion marked by joy, gratitude and cultural pride. The event, which coincides with the weeding of fields in preparation for harvest, honored the tireless efforts of farmers while offering thanks for nature's blessings.
4: In Mizoram, a traditional subsistence farming technique known as slash and burn or jhum agriculture is widely practiced across the state. It involves cutting down trees and other plants, burning it and then using the ash to temporarily fertilize the soil. Speaking at an event at Saichal in Saitwal district, PNE Minister Roding Liana said Lo Zao Pui has gained popularity in different parts of the state and called for efforts to make it more attractive to visitors. He said that the government gives priority and respect to the farmers and thanked them for their products. He said the initiative would help people appreciating farming and manual work while urging rural communities to improve visitors. The event, jointly organized by the Tourism Department and Agricultural and Farmers Welfare Department, included a community farming activity at Saichal Zao Pui, a feast and an evening concert. With its blend of tradition, unity and sustainability, the Lo Zao Pui celebration stood as a vibrant example of Mizoram's commitment to preserving culture while embracing eco-friendly practice. For Parikrama, this is Isaac from Akashvani News, Aizawl.
1: दोस्तों, प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में ड्रोन एक ऐसी चीज है जो कई क्षेत्रों में काम में लाई जा रही है। एक तरफ खेती में दवाइयों का छिड़काव करने वाले ड्रोन एरियल फोटोग्राफी में भी काम आते हैं। ड्रोन की इसी उपयोगिता को भांपकर महाराष्ट्र के जालना निवासी भाई बहन ने अपनी ड्रोन बनाने की एक कंपनी खोली है और उनके बनाए ड्रोन सुरक्षा बलों के भी काम आ रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत और लोकल टू ग्लोबल संकल्पना का एक अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र के जालना में देखने को मिल रहा है। यहाँ के प्रद्युम्न मानधनी और उनकी बहन धनश्री मानधनी

0: इनकी जोड़ी इन दिनों काफी चर्चा में है। इनकी कंपनी ने बनाए ड्रोन न सिर्फ खेतों में बल्कि सीमा पर भी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। केवल 3 साल में इनके कंपनी प्राइम एयरोस्पेस ने अपना टर्नओवर करीब 150 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है। अपनी इस उपलब्धि और कंपनी के बारे में प्रद्युम्न ने और अधिक जानकारी दी।
1: प्राइम एयरोस्पेस का स्टार्ट हमने एग्रीकल्चर ड्रोन की असेंबली से किया था। धीरे धीरे हम एग्रीकल्चर ड्रोन के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किए। हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिफेंस और सिविल में भी एंट्री ली है। आज हम लोग इंडियन आर्मी को भी सप्लाई करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको भी सप्लाई करते हैं। हम लोग आज सर्विलियंस ड्रोन बनाते हैं, पेलोड कैरिंग ड्रोन बनाते हैं, एग्रीकल्चर के हमारे DGCA सर्टिफाइड ड्रोन है। आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ऑलमोस्ट हर स्टेट के लोग से और अलग अलग हमने कॉलेजेस से टाई अप्स किए हुए है। मैं आज की यूथ को यही कहना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी एक दिन में बड़ी नहीं होती है। आपको टाइम देना पड़ेगा, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, आपको पेशेंस रहना पड़ेगा और आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा।
0: प्रद्युम्न और धनश्री की तरह दूसरे युवा भी अपने स्टार्टअप को धैर्य के साथ, सही सोच के साथ चलाए तो वे भी निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
2: ISRO is trying to achieve a space debris-free space mission by 2030. Hence, it has started Project NETRA, which is Indigenous Space Situational Awareness Initiative, to independently track, catalog, and predict the movement of space debris that threaten Indian satellites. We have more from a correspondent.
3: Project NETRA of ISRO will help achieve the debris-free space mission by 2030. ISRO has established Space Situational Awareness, or SSA, control center at its track campus in Bengaluru for tracking space debris, analyzing collision possibilities. It has deployed phased array tracking radars in Assam to complement existing multi-object tracking radar at Sriharikota Spaceport. It is establishing an advanced optical telescope facility in Handle in Ladakh to monitor space bodies. The telescope at Nainital is also expected to enhance space object tracking capability in future. These facilities will help ISRO to track space objects that may come in the way of our satellites in orbit and those to be launched in the days to come. It will provide early warning to the space agency that can take up timely collision avoidance maneuvers. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
2: The Ministry of Culture officially commemorated Hyderabad Liberation Day at the parade grounds in Secunderabad today, marking the 79th anniversary of the erstwhile princely state's integration into the Indian Union following Operation Polo on September 17, 1948. The event commenced with Vice President C.P. Radhakrishnan, accompanied by Union Minister G. Kishan Reddy, paying homage to the fallen soldiers at the War Memorial.
4: सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि 17 सितंबर 1948 का दिन आजाद भारत के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय के समापन का प्रतीक था। उन्होंने एकजुट राष्ट्र की नींव रखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और साथ ही रामजी गोंड, तुर्रेबाज खान और कोमाराम भीम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी याद किया। और अब चलते हैं दोस्तों खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच शुरू हो जाएगा शाम 7:30 बजे।
2: And on to some business news. Benchmark domestic equity indices ended on a mixed note today. The Sensex dipped 22 points to close at 74,315. The Nifty added 53 points to settle at 23,271. And for more updates about the market activities, tune into Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
4: और दोस्तों अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेरियार के नाम से मशहूर महान स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता ईवी रामासामी की जिंदगी और उनके संघर्ष की कहानी। उनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था। पेरियार तर्कवादी विचारक, लेखक और प्रभावशाली वक्ता थे। वो ऐसे प्रभावशाली कम्युनिकेटर थे जो सहजता से समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ संवाद कर सकता था। और अपनी इसी

0: खासियत की वजह से अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संघर्ष में वो समाज के हर वर्ग के लोगों को लामबंद करने में सफल रहे।
1: अपने बेहद करीबी दोस्त सी राजगोपालाचारी की वजह से पेरियार 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें कैद कर लिया गया। स्वाधीनता आंदोलन को लेकर पेरियार की प्रतिबद्धता ही थी कि उन्होंने उसमें शामिल होने के लिए उन सभी 29 पदों से इस्तीफा दे दिया था जिन पर वे आसीन थे। इतना ही नहीं, पेरियार ने पारिवारिक व्यापार भी बंद कर दिया था उस वक्त, जबकि कारोबार से उन्हें 20,000 रुपए सालाना की कमाई होती थी। उन दिनों 1 औंस सोने का मूल्य 10 रुपए भी नहीं था।
0: पेरियार ने खादी के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया। वो खुद भी खादी के कपड़े पहनते थे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रोत्साहित करते थे। खादी के प्रचार और ब्रिटिश सामान के बहिष्कार के लिए उन्हें सजा भी हुई। पेरियार ने भगत सिंह के राजनैतिक विचारों की प्रशंसा की और 29 मार्च 1931 को अपनी पत्रिका कड़ी अरसू में संपादकीय के माध्यम से उन्होंने भगत सिंह के बलिदान की सराहना की।
1: पेरियार ने महिलाओं की तरक्की के लिए लड़ाई लड़ी और समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष असमानता पर सवाल उठाया। उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी और विधवा विवाह का समर्थन किया। पेरियार ने महिलाओं को सामाजिक आंदोलनों और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अथक परिश्रम किया और सभी क्षेत्रों में उनके लिए 50% आरक्षण का मुद्दा उठाया। स्त्री पुरुष समानता के कट्टर समर्थक पेरियार को द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
0: आज ही के दिन 1940 में एक महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक विनोबा भावे ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही बनने की पेशकश की थी। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत चुनिंदा व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से ये घोषित करना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करना गलत है। वास्तव में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने भारत की निर्वाचित प्रांतीय सरकारों से परामर्श किए बगैर 3 सितंबर 1939 को भारत के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया।
1: गांधी जी का मत था कि एकमात्र उपयुक्त चेष्टा अहिंसक रूप से युद्ध का विरोध है। सत्याग्रहियों को चुनने का काम गांधी जी पर छोड़ दिया गया था। विनोबा भावे 17 सितंबर 1940 को वर्धा में सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तिगत सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप उन्हें 1940 से 41 के दौरान 3 बार जेल जाना पड़ा। 1958 में विनोबा भावे को नई तरह की सामाजिक क्रांति के प्रति समर्पण और सामुदायिक नेतृत्व के लिए पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया।
0: 1982 में विनोबा भावे काफी बीमार पड़ गए। उन्होंने खाना पीना और दवाएं लेना बंद कर दिया। 15 नवंबर को उनका निधन हो गया। एक साल बाद सन 1983 में विनोबा भावे को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
2: Yes, and we are also remembering Hiram Hank Williams, who was born on this day in 1923. He was an American singer, songwriter and musician. An early pioneer of country music, he is regarded as one of the most significant and influential musicians of the 20th century. Williams recorded 55 singles that reached the top 10 of the Billboard Country and Western Bestsellers chart, 5 of which were released posthumously and 12 of which reached the number 1. Let's listen in to his hit track, I Saw the Light.

आज पुण्यतिथि है गीतकार और शायर हसरत जयपुरी साहब की। 17 सितंबर 1999 को दुनिया से विदा हुए हसरत जयपुरी का असल नाम था इकबाल हुसैन। राज कपूर के साथ उनकी लंबी रचनात्मक साझेदारी ने हिंदी फिल्म संगीत को कई यादगार गीत दिए। बरसात से शुरू हुआ ये सिलसिला, आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर और कई दूसरी फिल्मों तक पहुंचा। उनकी कलम ने प्यार, इंतजार, खुशी और जिंदगी के अलग अलग रंगों को बेहद सरल और बड़े ही खूबसूरत अल्फाज दिए। बहारों फूल बरसा

आओ के लिए उन्हें 1967 में और जिंदगी एक सफर है सुहाना गीत के लिए 1972 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। उन्होंने हिंदी और उर्दू में कविता और शायरी की किताबें भी लिखी। उनके शब्दों ने कई पीढ़ियों के प्रेम को आवाज दी और शायद यही वजह है कि उनके गीत आज भी पुराने नहीं पड़े हैं। आइए आपको सुनाते हैं हजरत जयपुरी की कलम से निकले कुछ निहायत खूबसूरत गीत।

0: Yes, Hasrat Jaipuri was, of course, the Indian poet who wrote in the Hindi and Urdu languages, and he was also a renowned film lyricist in Hindi films, where he won the Filmfare Awards for Best Lyricist twice, in 1966 and in 1972.
1: दोस्तों, अगर आपके बचपन में कभी कॉमिक्स के पन्नों ने आपको भारत की कहानियों, राजाओं और देवताओं से दोस्ती कराई हो, तो बहुत मुमकिन है कि अंकल पई का उसमें योगदान रहा हो। 17 सितंबर 1929 को जन्मे अनंत पाई ने भारतीय बच्चों के लिए इतिहास, संस्कृति और पौराणिक कथाओं को रोचक चित्र कथाओं के रूप में प्रस्तुत करने का एक नया रास्ता बनाया। 1967 में शुरू हुई अमर चित्र कथा उनकी सबसे प्रसिद्ध पहल बन गई और बाद में ट्विंकल ने भी बच्चों के बीच उनकी पहचान को मजबूत किया। अनंत पाई ने मनोरंजन के साथ साथ बच्चों तक भारतीय कथाओं और सांस्कृतिक विरासत को सरल भाषा में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी मुनीश और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने के लिए। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और साथ ही आप हमें हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी लगातार 24 घंटे सुन सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा हमें इंतजार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने कहा कि एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत पर वैश्विक भरोसा भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें

अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री क्षेरिंग तोबगे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लीजिए एक बार फिर से, आज भी शाम के 5:11 हो चुके हैं और फिर से अगर एक बार हम ये कहें कि आज फिर से आपके साथ कार्यक्रम गाते गुनगुनाते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि सच में बात यही है कि हर रोज 5:10 से 5:30 तक आपके लिए कार्यक्रम गाते गुनगुनाते होता है आप ही के अपने चैनल आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर। आज के गाते गुनगुनाते में आपके साथ मैं रहूंगी नईम अख्तर, और जानते ही हैं आप कि गाते गुनगुनाते में हम लेकर आते हैं आपके लिए 80 और 90 के दशक के कुछ ऐसे सुरीले नगमे जो कहीं ना कहीं हमारे दिल के, हमारे दिमाग के तारों को झनझना जाते हैं। बहुत मशहूर हुआ था ये गीत एक वक्त में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, अजय देवगन और मधु रघुनाथ की।

0: 2994 पर।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते। शाम के 5:18:42 हुए हैं और हम सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते में 80 और 90 के दशक के कुछ सुरीले गीत, जिनमें अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं 1982 की फिल्म बेमिसाल का एक गीत। एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म में कई अलग अलग रंग थे, कई अलग अलग पहलू थे और सारे ही जिंदगी को छू जाने वाले थे, जिनमें से एक पहलू ये था कि अमिताभ बच्चन, जिन पर ये गीत पिक्चराइज्ड है, वो अपने दोस्तों यानी विनोद मेहरा और राखी गुलजार के लिए बहुत बड़ा त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। और दूसरा पहलू ये था कि इसी फिल्म में अमिताभ बच्चन के ही बड़े भाई के रूप में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था और उनके साथ दगा करने वाली जो एक लड़की थी उसको सजा देने के लिए या उससे बदला लेने के लिए अपने भाई का अमिताभ बच्चन उसके साथ कांटेक्ट करते हैं और ये गीत उसी रेफरेंस में है। हर पहलू फिल्म का बहुत अच्छा था, उन्हीं में से ये एक गीत है। सुनिए इस गीत का, मज़ा लीजिए। और अगर आपने बेमिसाल फिल्म अभी तक नहीं देख रखी है तो लगता है कि आप इस गीत को सुनने के बाद शायद उसको देखना पसंद करेंगे। और जिन्होंने देख रखी है वो तो जानते ही हैं, सारी यादें ताज़ा हो गई होंगी। कितना खूबसूरत मौका था जिस मौके पर इस गीत को फिल्माया गया था।

0: ओ नेगेटिव अथवा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के व्यक्ति पीएसआरआई हॉस्पिटल साकेत नई दिल्ली में रक्तदान कर सकते हैं। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9811353879 या 9810119294।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर बस आखिरी गीत गाते गुनगुनाते का आपको सुनाते हुए नई अख्तर आपसे इजाजत चाहती है। आप सुनते रहिए और इस कार्यक्रम के फौरन बाद आपके लिए होगा कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट डायरी।

0: Government is also expanding the paperless e-office system across its administrative structure. However, with next-gen HRMS, Tripura is moving towards an administrative system where employee records, leave, GPF, payroll, pension, and other human resource services can be managed through a single digital ecosystem. For Northeast Diary, Suman Bhattacharjee, Akashbani, Agartala.
1: A grassroots innovator from Temi in South Sikkim has achieved a significant milestone in the field of intellectual property. Prashant Lamchane, founder of the Temi Innovation Festival, has secured design registration from the Patent Office, Government of India, for his innovation Spoon. The achievement marks an important milestone for grassroots innovation and entrepreneurship in Sikkim. Our Gangtok correspondent, Dili Ramdulal, brings us this report.
2: The official certificate record design registration number 465242001 in Prashant Lamichani name under class 0703 in accordance with the Design Act 2000 and Design Rule 2001. The design was registered on 10th July 2025 while the certificate was issued on August 2026. The achievement highlighted the importance of proper documentation, precise drafting, and a clear intellectual property protection strategy. Lamichani's journey begins during his school day, driven by curiosity and a passion for solving everyday problems. His understanding of intellectual property protection deepened through his interaction with Dr. Mukul Rani Parajuli, a researcher in intellectual property right and law, who encouraged him to look behind creation and explore the protection, development, and commercialization of his idea. Speaking about what the design registration of Spoon means to him, Prashant Lamichani said,
3: I, Prashant Lamichani, a grassroots innovator from Temi, Namchi district, South Sikkim. First of all, thank you so much, All India Radio team, for having me here. जो innovation का मेरा जो field है, उसमें मैं लगभग 16 से 17 years मेरा बीत चुका है ये field में आया हुआ. तो आज मैं ये platform के through मेरा जो Eco Spoon है, जो मेरा जिसमें मुझे patent भी grant हुआ है, वो project के सिलसिले में इस platform के through मैं deliver करना चाहूंगा. और अभी तक मैंने बहुत सारा इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में काम किया, जैसे एंटी थेफ्ट चार्जर, वायरलेस स्विच कंट्रोल सिस्टम, परंपरा डोको, जीवन रक्षक खुकुरी, और बहुत सारा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है. मैं मशीन्स वगैरह भी डिजाइन कर रहा हूँ और उसमें मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह को भी लेकर मैं उस इनोवेशन को थोड़ा मार्केट में भी लाने के लिए प्लान में चल रहा हूँ मैं. और जो इको स्पून है, जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट का जर्नी मेरा कैसे स्टार्ट हुआ कि जैसे मैं लास्ट ईयर मैं उत्तराखंड घूमने के लिए जा रहा था, तो मैं दिल्ली का ट्रेन था मेरा, उसमें मुझे जो फूड लंच टाइम में मुझे फूड दिया गया था, उसमें मेरा उस पैकेट के अंदर में स्पून वगैरह नैपकिन वगैरह था. तो क्या हुआ कि मेरा उसमें शायद 2-3 नैपकिन थे, तो दो तो मेरा ऑलरेडी बिगड़ गया वहाँ वो फूड का स्टीम वगैरह से होकर दाल वगैरह के साथ लगकर, और एक गिर गया. तो मैं नैपकिन लेस हो गया उस टाइम पे. तो क्या हुआ कि मैं दूसरा नैपकिन भी नहीं मंगवा सकता किसी के से. तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम जो मैं फेस किया अभी, वो प्रॉब्लम ये ट्रेन में कितने लोग फेस कर रहे हैं. तो इसी ख्यालत के साथ मैं मेरा जर्नी कंप्लीट किया, तो मैं घर आया. मैं इसमें काम करने के लिए सोच ही रहा था, फिर मेरा दूसरा प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी मैं बिजी था. तो मुझे एक वेडिंग में इनविटेशन आया था, मैं वहां गया था. वेडिंग फंक्शंस वगैरह में क्या होता है कि जो प्लेट हम लोगों को फूड लेते वक्त वो हम लोग को प्लेट दिया जाता है, वो स्टार्टिंग में, और एक चम्मच और एक नैपकिन दिया जाता है. तो नैपकिन नीचे में रहता है और नैप स्पून था. तो मेरा नैपकिन क्या हुआ कि वो प्लेट में भी थोड़ा पानी वगैरह था, तो वो लग गया. तो उस कारण से मेरा वो नैपकिन बिगड़ गया, तो मैंने फिर एक्स्ट्रा नैपकिन मंगवाया. तो मुझे उस टाइम पे में मुझे ख्याल आया कि ये नैपकिन और जो स्पून का जो रिलेशन है, ये हर टाइम जोड़ी में रहता है. क्योंकि स्पून हम फूड वगैरह लेते वक्त मुझे स्पून भी चाहिए होता है, नैपकिन भी चाहिए होता है. तो मैंने क्या सोचा कि व्हाई नॉट टू कंबाइन दिस टू प्रोडक्ट इन अ वन प्रोडक्ट. सो मैंने घर आया, मैंने 2-3 डिजाइन ट्राई किया, दे फेल्ड. तो मैंने दूसरा तरीका देखा कि मुझे एक टैबलेट जैसा बनाकर उसको डालना, मुझे नैपकिन में एक होल करके उसमें डालना है, जैसे हम लोग मेडिसिन वगैरह निकालते हैं, उस टाइप का आइडिया पे मैंने काम किया। मैंने पहले स्क्रोल टाइप में ट्राई किया था हैंडल में, वो आइडिया फेल हो गया, वो कॉस्ट भी ज्यादा लग रहा था, लेकिन मैंने वो जो दवाई वगैरह निकालते हैं हम लोग, उस आइडिया को मैंने एडोप्ट करके मैंने इको स्पून बनाया, और उस इको स्पून को मैंने

0: क्या किया कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन में सबमिट किया था और वो प्रोजेक्ट वहां से भी एक्सेप्ट हो गया है। और मैं क्या हुआ कि आफ्टर सम मंथ मैं डॉक्टर मुकुल से भी मिला और लाइक उनको आईपीआर के रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज है, तो सी इंस्पायर्ड मी टू हैव पेटेंट वो मेरा प्रोजेक्ट में। और उन्होंने कहा कि प्रशांत यू हैव मेड लॉट्स ऑफ इनोवेशंस और तुमने अभी तक पेटेंट क्यों नहीं किया। तो फॉर मी पेटेंट वॉज लाइक ये क्या होता है। तो शी एजुकेटेड मी, सी एनलाइटेंड मी अबाउट पेटेंट, और मैंने मैम ने ही मुझे सारे स्पॉन्सर कर दिए थे और मेरा इको स्पून का पेटेंट कर दिया था और मेरा पेटेंट भी आ चुका है, सक्सेसफुली ग्रांट हो गया है और एक डिजाइन रजिस्ट्रेशन में भी मेरा कम्प्लीटली हो गया है। अब यूटिलिटी पेटेंट भी आ रहा है मुझे, वो शायद वो भी मिलने वाला है रिसेंटली। तो इसी प्रकार से मेरा ये इको स्पून का जर्नी ऐसे ही हुआ था।
1: He was subsequently introduced to Patentsala, a partnership firm founded by Sarab Agrawal and Dr. Umesh Kumar, KU co-founder and patent agent. The firm provided professional support for filling design and utility patent application relating to the spoon innovation without charging professional fee. As founder of the Timi Innovation Festival, Lamichane has also been contributing to the promotion of innovation at the grassroots level. His journey demonstrates that innovation need not begin in a laboratory or large institution. It can begin with an individual identifying a problem, developing a solution and taking a step to protect the idea as intellectual property. On how Sikkim can build a stronger culture of innovation among young people, Prashant Lamichane said.
0: And yes, regarding Timi Innovation Festival. So it was my dream since from my childhood to organize one science fair. Okay? और मैं जब छोटा था तब से, लेकिन मैं जो innovation field में मैं खुद तो project बनाता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को भी mentorship देता हूँ। बहुत सारा बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, वो भी innovations पे काम कर रहे हैं, उनको भी मैं motivate करता हूँ। और बहुत सारे student तो already national level भी पहुँच चुके हैं, national level, regional level, state level, ये सारा चीज में बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मेंटरशिप देकर उन लोगों को भी भेजा है। और अभी भी मेरे साथ 10-12 बच्चे मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब करते करते मुझे आइडिया है कि वाई नॉट टू हैव अ वन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस। और इसमें मुझे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, आवर ऑनरेबल एरिया एमएलए श्री बेदू सिंह पंसर, चेयरमैन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर एंटी भुटिया सर, उन सभी से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन सब ने मुझे बहुत सारा हेल्प किया। और मुकुल मैम तो ऑलरेडी मेरे ये इनोवेशन में जुड़े हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारा इंकरेजमेंट दिया और हम लोगों ने सक्सेसफुली Timi इनोवेशन फेस्टिवल फेज वन हम लोगों ने कंप्लीट किया। और अभी हम लोग Timi इनोवेशन फेस्टिवल टू, Timi इनोवेशन फेस्टिवल फेज टू हम लोग नेक्स्ट ईयर करने के लिए प्लान में चल रहे हैं। और उसको हम लोगों ने इस बार थोड़ा मॉडल चेंज किया है। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोग का लोकल एरियाज वगैरह के स्कूल्स वगैरह होंगे, तो हम लोग वहाँ से आइडिया थॉन करेंगे पहले वन मंथ, और पहले बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडिया को वो करके हम लोग उसको मेंटरशिप देंगे, हम लोग प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करेंगे, और उसके बाद Timi इनोवेशन फेस्टिवल में हम लोग डिस्प्ले करके उन सभी को हम लोग नेशनल और प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए भी हम लोग NIF, जैसे हम लोग का सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है NIF वगैरह, ये सब में हम लोग हमारा प्रोजेक्ट्स वगैरह को वहाँ पर भी सबमिट करवा देंगे। और ज्ञान वगैरह भी है NGO, तो हम लोग वहां पर भी हेल्प करेंगे। और दूसरा भी बहुत सारे हैं, हम लोग वहां पर भी नॉमिनेट करेंगे बच्चों को। और इस तरीके से क्या होगा कि एक बच्चे में जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है तो वो आगे जाके और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग मेंटरशिप भी करेंगे और साइंस फेयर भी करेंगे, और हम लोग बच्चों को और सिक्किम को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम लोग प्राउड मूवमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग लगे पड़े हुए हैं। सो Timi इनोवेशन इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग माइंड्स।
1: Prashant Lamichane's achievement sends a strong message to aspiring innovators. Every idea has potential, and protecting that idea can be the first step towards opportunity. With Mainak Chatterjee, Diliram Dulal, Akashwani News, Gangtok for Northeast Diary.
2: Friends, now get ready to be enchanted as we bring you the melodious rendition of Dil Diya Galla by the talented Tessio Sisters from Nagaland. Stay tuned to experience the magical harmonies and rich cultural essence infused in their music.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी

0: ग्राम जी योजना विकसित गांव के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इससे शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों को और उपहारों की नई नीलामी क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said India is emerging as a reliable destination for global manufacturing and is preparing to meet new challenges. Mr. Modi stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi, New Delhi today. The Prime Minister highlighted the growing demand for artificial intelligence, saying the focus is now shifting beyond transistor size to overall system integration, including memory placement and heat management.
2: अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: Later, addressing a press conference on the sidelines of the event, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said India's semiconductor design capabilities are recognized globally and Semicon 2.0 will focus on promoting semiconductor design companies in the country. The three-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment and develop future-ready talent. Prime Minister Modi today said the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards the goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal on the occasion of the release of the 4th installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
3: आज विश्वकर्मा पूजा का पावन अवसर भी है। मैं आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इसी पावन समय में आज बंगाल में एक नई परंपरा सशक्त हो रही है। आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, आज देश भर में विश्वकर्मा दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष कन्या संक्रांति के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा के प्राकट्य पर्व के रूप में ये दिन मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प और तकनीकी कौशल का देवता माना जाता है। यही कारण है कि विश्वकर्मा दिवस उन कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल और योगदान को सम्मान देने का भी अवसर है, जो अपने हाथों और औजारों से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को आकार देते हैं। इसी अवसर पर आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को एक ही व्यवस्था के तहत पहचान, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार, ऋण और बाजार तक पहुंच जैसी सहायता देना है। योजना के 3 वर्ष पूरे होने के साथ इसका 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में समझेंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की रूपरेखा क्या है, इसमें किन कारीगरों को शामिल किया गया है और पंजीकरण से लेकर औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने तक की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद जानेंगे कि 3 वर्षों में योजना के तहत कितनी प्रगति हुई है और लाभार्थियों के अनुभव क्या बताते हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना परंपरागत कारीगरों के कौशल और आज की आर्थिक जरूरतों के बीच एक कड़ी बनाने की कोशिश है। देश के अनेक कारीगर पीढ़ियों से चले आ रहे ज्ञान और हाथ के हुनर के आधार पर काम करते हैं, लेकिन उनका काम अक्सर छोटे स्तर और असंगठित क्षेत्र तक सीमित रहता है। ऐसे में जरूरत केवल आर्थिक सहायता की नहीं, बल्कि कौशल की पहचान, बेहतर औजार, प्रशिक्षण, सस्ता ऋण और बाजार तक पहुंच की भी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इन जरूरतों को एक ही ढांचे में जोड़ती है। आइए अब समझ

0: समझते हैं कि योजना के तहत कारीगरों को क्या क्या सहायता मिलती है और इसमें शामिल होने की प्रक्रिया क्या है।
1: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इन तीन आधारों पर काम करती है। इसकी शुरुआत होती है पहचान से। पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाता है। यानी पारंपरिक काम से जुड़े कारीगर को योजना के तहत एक औपचारिक पहचान मिलती है। इसके साथ ही योजना का जोर कौशल उन्नयन पर है। लाभार्थियों को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जाता है। बुनियादी प्रशिक्षण 5 से 7 दिन का होता है, जबकि उन्नत प्रशिक्षण 15 दिन या उससे अधिक का हो सकता है। प्रशिक्षण के दौरान हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में कारीगरों को आधुनिक औजारों, काम करने के बेहतर तरीकों और नए डिजाइन की जानकारी दी जाती है। साथ ही डिजिटल लेन देन, बाजार और छोटे व्यवसाय को बेहतर तरीके से चलाने से जुड़ी जानकारी भी दी जाती है। पहचान और कौशल के साथ कारीगरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया गया है। पात्र लाभार्थियों को आधुनिक टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक की सहायता ई वाउचर के रूप में दी जाती है। कारीगरों के काम को आगे बढ़ाने के लिए ऋण सुविधा भी योजना का अहम हिस्सा है। इसके तहत बिना किसी गारंटी के कुल 3,00,000 रुपए तक का एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन 2 चरणों में मिल सकता है। पहले चरण में 1,00,000 रुपए तक का ऋण 18 महीने की अवधि के लिए और दूसरे चरण में 2,00,000 रुपए तक का ऋण 30 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है। इस ऋण पर ब्याज की दर 5% तय की गई है, जबकि सरकार की ओर से 8% तक की ब्याज सहायता दी जाती है। पहले चरण का ऋण लेने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करना जरूरी है। दूसरे चरण का ऋण पहले ऋण के पुनर्भुगतान और डिजिटल लेन देन अपनाने या उन्नत प्रशिक्षण पूरा करने से जुड़ा है। अब जानते हैं कि इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या है। योजना के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं जो अपने हाथों या औजारों से 18 चिन्हित पारंपरिक कामों में से किसी एक में लगे हैं। इन 18 कामों में बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर का काम करने वाले, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी और चटाई बनाने वाले, पारंपरिक खिलौना बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले कारीगर शामिल हैं। एक परिवार से केवल एक सदस्य को पंजीकरण और लाभ की अनुमति है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं है। साथ ही पिछले 5 वर्षों में इसी तरह की सरकारी ऋण आधारित योजनाओं का लाभ लेने वाले आवेदक सामान्यतः इस योजना के लिए पात्र नहीं है। पंजीकरण केवल कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC के माध्यम से किया जाता है। आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के बाद 3 स्तरों पर सत्यापन होता है।
0: श्रोताओं, किसी भी योजना की वास्तविक तस्वीर केवल उसके प्रावधानों से नहीं बनती, ये देखना भी जरूरी है कि इन सुविधाओं का लाभ जमीन पर कितने लोगों तक पहुंचा और उससे उनके काम में क्या बदलाव आया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर इसके तहत प्रशिक्षण, टूल किट, ऋण और डिजिटल सहायता से जुड़े आंकड़े सामने हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों के कारीगरों के अनुभव ये बताते हैं कि योजना का इस्तेमाल किस तरह अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 15 सितंबर 2026 तक 24,37,000 से अधिक कारीगरों को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं 18,16,000 से अधिक कारीगरों को टूल किट मिल चुकी थी। संस्थागत ऋण तक पहुंच की बात करें तो योजना के तहत 6,19,000 से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं। इनकी कुल राशि करीब 5,316 करोड़ रुपए है। ये ऋण सहायता कारीगरों को कच्चा माल खरीदने, औजारों को बेहतर बनाने और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। डिजिटल लेन देन की दिशा में भी योजना के तहत काम किया गया है। 8,11,000 से अधिक लाभार्थियों को डिजिटल प्रोत्साहन मिला है और इसके लिए 42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। इसके अलावा 12,000 से अधिक कारीगरों को ब्रांडिंग, उत्पाद डिजाइन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल्स के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया गया है। बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए देश भर में 1500 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम और कैंप, 50 से अधिक कार्यशालाएं, 82 व्यापार मेले, 37 राज्य स्तरीय प्रदर्शनियां और 50 से अधिक फ्लैश मोब आयोजित किए गए हैं।

0: बनाने के लिए 6 शहरों में कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें 1500 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया। अब बात करते हैं उन लोगों के अनुभवों की जिनके लिए ये योजना बनाई गई है। नागालैंड के जुन्हे बोटो की टोकरी बनाने वाली श्रीमती विली ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण पूरा किया और 1,00,000 रुपए का बिना गारंटी वाला ऋण लिया। उन्होंने इस राशि का इस्तेमाल कच्चा माल खरीदने और अपने काम को बढ़ाने में किया। उनके अनुसार इससे उनकी मासिक आय करीब 40% बढ़कर लगभग 15,000 रुपए हो गई। उत्तराखंड के चमोली के लकड़ी पर नक्काशी करने वाले दर्शन लाल 3 दशक से अधिक समय से इस काम से जुड़े हैं। उनके परिवार की परंपरा बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े कारीगरों से जुड़ी रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत उन्हें कौशल प्रशिक्षण, टूल किट और सस्ते ऋण सुविधा मिली। वर्ष 2026 में उन्होंने दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट में भी हिस्सा लिया। ये राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पहली प्रदर्शनी थी और इससे उन्हें अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुँचाने का अवसर मिला। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: श्रोताओं, पारंपरिक कारीगरी केवल एक पेशा नहीं बल्कि पीढ़ियों से आगे बढ़ता आया कौशल और ज्ञान है। बदलती तकनीक और बाजार की जरूरतों के बीच इस हुनर को जीवित रखने के लिए कारीगरों की आजीविका को मजबूत करना जरूरी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 3 वर्षों का सफर इस प्रयास को आगे बढ़ाता है। कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक थे अरुणदीप सिंह।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना नवदिल्ल्यां सेमिकॉन इंडिया 2026 इति कार्यक्रमस्य उद्घाटनम् अकारि। सेमीकंडक्टर क्षेत्रे च प्रारूपणाय 200 नवोद्यमानां पोषणं विधीयते इति केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। मोदिनः 25 लोकसेवा व्रत पूर्ति अवसरे भाजपेति दलस्य मासात्मकं राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्पाभियानं अद्य प्रभृति समालब्धम्। पीएम विश्वकर्मा योजनायाः अद्य वर्षत्रयात्मकम् आनुपूर्विक कार्यकालं पूर्णतां गतम्। भारतेन पाकिस्ताने आतंकी संरक्षणं विगोपितम्। अपि च क्रीडा वार्तासु क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायं भारतम् अफगानिस्तान दलेन सह योत्स्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः यशोभूमि परिसरे 2026 सेमिकॉन इंडिया इत्याख्यस्य त्रिदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। त्रिदिवसीयं सम्मेलनमिदं भारते सहकारस्य, निवेशस्य, नवाचारस्य, प्रतिभाविकासस्य च संवर्धनाय केन्द्रितम् अस्ति। अत्रावसरे भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् भारतस्य अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्रं तीव्रगत्या प्रसरति, यच्च नवाचाराय, निवेशाय, विकासाय च नूतनान् अवसरान् उद्घाटयति।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी न्यरूपयत् यत् एकत्र भारतस्य अर्थव्यवस्था संवर्धते, अपरत्र च भारतमालक्ष्य वैश्विक विश्वासो अपि दृढ़ी भवति। तेन प्रतिपादितं यत् समाह्वान पूर्णायां वैश्विक परिस्थितौ अपि भारतेन 7.8% वृद्धिमानांकः पंजीकृतः। अस्मिन्नेव काले जापान देशस्य ऋण मूल्यांकन संस्थया भारतस्य सार्वभौम ऋण श्रेणी समुन्नयिता। प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् देशस्य प्रत्येकम् अपि नागरिकः

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा.
0: थैंक यू अमित. यस, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन फ्लैट नोट. निफ्टी सेटल्स अबव 23,250. U.S. lawmakers pass package of sanctions targeting Russia and Iran's key economic pillars. New Delhi says India remains firmly committed to ensuring energy security and will continue to do so through diversified sourcing. And country's semiconductor ecosystem is expanding rapidly, opening new opportunities for innovation, investment and growth, says Prime Minister Narendra Modi.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा. निफ्टी 23,250 के स्तर से ऊपर दर्ज. अमरीकी कानून निर्माताओं ने रूस और ईरान के मुख्य आर्थिक आधार पर प्रहार करने के लिए प्रस्ताव पास किया. भारत ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति करना जारी रखेगा. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का सेमीकंडक्टर वातावरण तेजी से मजबूती की ओर नवाचार, निवेश और विकास की नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.

0: Well, before we move any further, here's a disclaimer for our listener friends. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर बाजार में आज आम तौर पर खास बदलाव नहीं नजर आया। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग पूरे स्तर पर बना रहा, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मामूली बढ़त से बंद हुआ। सेंसेक्स 22 अंक की मामूली

0: गिरावट से 74,315 के स्तर पर दर्ज हुआ, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। एनएसई मिडकैप सूचकांक में 0.9% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। हालांकि कारोबार की शुरुआत में अमरीकी फेडरल रिजर्व के रुख और वैश्विक परिस्थितियों पर चिंता के कारण बाजार दबाव में नजर आए, बाद में दोनों सूचकांक संभल गए और बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए।
1: इन द इंडियन स्टॉक मार्केट टुडे सेंसेक्स एंडेड लार्जली अनचेंज्ड व्हाइल निफ्टी क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट। सेंसेक्स डिप्ड 22 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,315। निफ्टी एडेड 53 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,271. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.9%, while the small-cap 100 index added 0.8%. Earlier, the markets opened mildly lower after a hawkish stance from the U.S. Fed Reserve and concerns over geopolitical developments. However, both the indices soon recovered and traded with gains for most of the volatile session, supported by value buying.
0: सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई। मजबूती वाले प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील 2.8%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2.4% और इंडिगो 2.3% की बढ़त से बंद हुए। हालांकि HDFC बैंक 1.3%, टाइटन 1.1% और ICICI बैंक 1% की गिरावट से बंद हुए।
1: Let's take a look at the sectors now. Well, in the sectoral indices on the BSE, 18 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, insurance advanced 3.2%, capital goods jumped nearly 2%, and industrials gained 1.5%. In contrast, top 10 banks declined 0.7%, private banks index shed 0.6%, and BankEx dropped 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,686 companies advanced and 1,642 declined and 207 remained unchanged.
0: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। प्रकाश, किस तरह से आंकते हैं बाजार में? एक तरफ तो ये भी नजर आता है कि अगर तकरीबन 2,700 कंपनियां आज अगर BSE की हम बात करते हैं तो वो मजबूती की तरफ थी, जबकि तकरीबन 1,650 कंपनियों में आज दबाव नज़र आया या गिरावट नज़र आई, लेकिन फिर भी सेंसेक्स अपने स्तर के आसपास ही दर्ज हुआ। वैश्विक परिस्थितियों का कारण था, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो अनाउंसमेंट की है उसका असर था, या अभी भी जो अमेरिका ने नए जो टैरिफ लगाने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं ये उसका असर है?
2: नहीं, खास तौर पे आम तौर पे जो ज़्यादा संभावना है कि क्या रहा होगे, किस तरह के कारण रहे होंगे कि आज की मार्केट की जो परिस्थिति है उसमें वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वही हावी रही इस पर। चूँकि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसने जो इंटरेस्ट रेट, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है 25 बेसिस पॉइंट से, वो अपने आप में एक एक्सपेक्टेड था, वो एक तरह का डिस्काउंटेड था। 90% लोग वैसे ही उम्मीद कर रहे थे कि उसकी मीटिंग से बढ़ेंगी और तो डिस्काउंटेड था, इसलिए कोई मार्केट में बहुत बड़ा ना उछाल को अदला बदली नहीं हुई, एक तरह का एक्सपेक्टेड ही था। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम थी वो तो पिछले कई दिनों में हालात तो खराब ही हुए थे, तो अब उस चलते क्योंकि मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो चुकी थी थोड़ी बहुत। ये जो फेडरल रिजर्व का डिसीजन था एक तरह का क्या होता है, मार्केट को ना अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पसंद नहीं है, तो अंग्रेजी बोलते हैं इट्स आउट ऑफ द वे नाउ कि कम से कम मालूम पड़ गया 25 बेसिस पॉइंट है। हालांकि जैसे लालिमा जी ने वो कहा कि फेडरल रिजर्व का टोन अभी भी हॉकिश है, हॉकिश के मायने ये हैं कि अभी भी हम इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन में, अभी भी जो महंगाई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, और महंगाई अमेरिका क्या पूरे संसार में दिक्कत हो रही है, तभी इंटरेस्ट रेट जिसको हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसके माने यही है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट। पिछली कार्यक्रम में मैंने कहा था कि वो जो पार्टी टाइम था ना, लोअर इंटरेस्ट रेट वाला, इजी मनी वाला, द पार्टी टाइम इज ओवर, तो उसके चलते ये सब वैश्विक परिस्थितियां जा रहे हैं जो आज के मार्केट को एक तरह का ब्रीफली बताएं तो ये है।
1: Why do we see a bit of a dichotomy? Sensex is largely unchanged, but Nifty ends on a positive note.
2: It's a funny thing. I think it should not have happened because what has happened is a new system, what's called CAS, has been introduced for over a month now in the Indian market. It's still in the trial stage, and it throws this kind of surprises now and then. And then finally, when the fine-tuning is done, you find a different thing. But it is quite confusing, and the traders are concerned about it. They have conveyed their concerns to the market regulator SEBI, and let's hope this is sorted out.
1: For people who want to invest in the stock markets, is this the right time? Because for a change, we see, as they say, no news is good news, or should we wait and watch? Because as you said, markets don't like uncertainty. Now, it's the certainty is that there is, you know, uncertainty in a way.
2: I'll tell you what, when it comes to Indian investors, there is one channel which always remains open now, what is called systematic investment plan, what is SIP2, so to speak,
1: right,
2: which is done through mutual fund. Something like 30,000 crores of rupees is mopped up every month through SIP. And a lot of these professionals, young professionals, are committed to that. It is only because of that commitment that mutual funds or DIIs are able to mobilize that kind of amount. And this is the amount which is providing stability to our market.
0: Right. तो प्रकाश, क्या इसके क्या ये मायने माना जाए कि भारतीय जनमानस या भारत का जो घरेलू निवेशक है उसको अपने बाजार की क्षमताओं पर, उसको अपने बाजार की स्थिरता पर पूरा भरोसा है? बाजार अगर गिरता है या उठता है, लेकिन वो जो निवेशक है जो सतत निवेश कर रहा है, निरंतर निवेश कर रहा है, वो छोटी छोटी मात्रा में ही सही, वो निरंतर निवेश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका निवेश सुरक्षित है और उसको उस निवेश पर एक निश्चित आय जरूर होगी।
2: देखिए क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो हमारे मुल्क में है वो बड़ी मैच्योर हो गई। अब हमारे यहाँ इतनी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की, और इनकी एक संस्था है एमफी बोलते हैं जिसको, उन्होंने एक नैरेटिव चलाया हुआ है एड कैंपेन बड़े सालों से जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है उसमें जैसी जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं उस हिसाब से वो लोग अपना टोन एंड टेनर चेंज करते हैं। तो वो दे हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू सेंड दिस मैसेज कि भाई मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म टिकना पड़ेगा।
0: वहां पे मतलब पेशेवर लोग हैं जो प्रोफेशनल,
2: जो आपको प्रोफेशनल हैं, जो 30,000 करोड़ रुपए आता है वही इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पे
0: जी।
2: तो यहाँ का जो रिटेल इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करता है, तो उसको भी ये चीज उसने विश्वास कर लिया है कि भाई,
0: और म्यूचुअल फंड कंपनियां इस विश्वास पे खरा भी उतर रही हैं।
2: नहीं, वो कहना अभी जल्दबाजी।
0: चलिए, अगर हम
2: वो अभी कहना जल्दबाजी,
0: अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की बात करें, उसमें तकरीबन आज लगभग 1% की मजबूती भी नजर आई है। क्या ये माना जाए, जो सेंसेक्स पैक तो चूंकि छोटा है, और अगर निफ्टी 50 की भी बात करें वहाँ पे भी उतनी ज़्यादा कंपनियों का समावेश नहीं है, तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है जो चूंकि बड़ा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ पे लोगों की उम्मीदें हैं और वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन की भी उम्मीद है, इसलिए उसमें तेज़ी हुई।
2: देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप और वर्सेस लार्ज कैप जिसको बोलते हैं, जो बड़ी, जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है, जो टॉप कंपनीज हैं, 100 टॉप कंपनी लार्ज कैप्स में आती है, पिछले दिनों में, कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने बड़ी अच्छी रिटर्न दी है, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो इन पे स्पेशलाइज करते हैं, उन्होंने भी अच्छी रिटर्न दी है। कारण ये है कि एक तो जो ग्रोथ होता है, जो ऑलरेडी कंपनी बड़ी लार्ज हो चुकी है उसकी ग्रोथ रेट उतनी अच्छी कई बार नहीं हो पाती क्योंकि बेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होता है। दूसरी बात ये है कि स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं अभी ग्रोथ, उसमें एपिटाइट है, भूख है, उसमें आगे बढ़ने की भूख है, और वो फिर एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उसमें, तो जैसे सिचुएशन आती है एक लेगेसी बेस्ड इश्यूज नहीं रहते उसमें, एंड दैट्स द रीज़न। और एक और रीज़न है कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो मोस्टली देवर इन्वेस्टेड इन द लार्ज कैप्स, सो व्हेन देवर एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट and the money was flowing out of the large caps, small and caps were not that much affected by the FIIs outflows. ये सारे कारण थे जिसकी वजह से mid और small caps में आपको better performance दिखी।
0: तो ये मानने के भी हमारे पास पर्याप्त कारण है कि भारत की जो मध्यम दर्जे की कंपनियां हैं उसका प्रदर्शन निरंतर मजबूत और सतत बना हुआ है, एक स्टेडी बना हुआ है।
2: हाँ अच्छी बात है, लेकिन उनमें

0: अब हो क्या रहा है अमित जी, कि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर कई बारी ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी हैं, जो मान लीजिए जो म्यूचुअल फंड के, जो स्मॉल कैप्स के जो फंड्स हैं, तो उनको बाय फोर्स दे हैव टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स में लोग बेट कुछ ज़्यादा ही लेने लग पड़े, तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा है, तो फिर रिस्क भी ज़्यादा थोड़े हो जाते हैं कई बारी, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत वहाँ
1: और
0: रहती।
1: शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है स्मॉल कैप,
0: नहीं, शॉर्ट टर्म,
1: ऐसा नहीं?
0: लॉन्ग टर्म की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में लिए कुछ भी ठीक नहीं है आज की डेट में। यू
1: हाँ
0: नीड टू बी पेशेंट, एज आई सेड अर्लियर इन मार्केट, इन द मार्केट गेम टुडे यू नीड टू बी पेशेंट। अगर आपको, अब जैसे अमित जी ने बोला कि म्यूचुअल फंड का पिछले 2 साल में समस्या रही है, तो आपको 3 साल की बैलेंस शीट दिखेगी तो अच्छी दिखेगी, लेकिन 2 साल में समस्या है। तो म्यूचुअल फंड के लिए चैलेंज है कि मेरे पे ये विश्वास करे जा रहे हैं, तो मुझे, मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। तो म्यूचुअल फंड के लिए एक चैलेंज है अपने आप में, यही टेस्टिंग टाइम है सबका,
2: उनको बेहतर प्रदर्शन भी करना है, साथ ही
0: दिखाना
2: साथ
0: पड़ेगा,
2: निवेश
0: दिखाना पड़ेगा,
2: निवेशकों के भरोसे को भी पूरा करना
0: पूरा
2: है।
0: रखना है।
2: उसके बावजूद अगर हमारा बाजार, तकरीबन अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, लगभग 75,000 के स्तर के आसपास है,
0: हाँ जी,
2: और निफ्टी अगर ये है, तो इसमें कितनी उम्मीदें आपको भी नज़र आती हैं, या कितनी संभावनाएं नज़र आती हैं? आने वाला कुछ समय, हमारा त्योहारी सीजन भी है।
0: अभी जी इसमें निफ्टी का देखें तो एक दायरा ऐसा बना हुआ है,
2: जी
0: अभी हम दायरे के लोअर एंड पे हैं, वो तब अगर ये थोड़ी मिडिल ईस्ट में शांति थोड़ी स्थापित हो जाए।
2: वैश्विक स्थिति से अगर स्पार्क नहीं मिलेगा, तो
0: हाँ,
2: भारतीय बाजारों में तेजी का दौर देखना फिलहाल
0: नहीं, वो दो तीन चीज़ें चाहिए
2: जी
0: जो अंग्रेजी बोलते हैं विच मस्ट फॉल इन प्लेस।
2: जी
0: एक तो ये मिडिल ईस्ट की शांति चाहिए, क्योंकि तेल का भाव बहुत खतरनाक लेवल पे चढ़ रहा है,
2: जी
0: अभी फॉर्चुनेटली थोड़ा आज गिरा
1: कम
0: है,
1: है 95,
0: हाँ नहीं 100 से तो ऊपर ही रहता है अभी कुछ दिनों में, तो समस्या तो है।
2: जी
0: और इन सब के चलते दो तीन चीज़ें, और FIIs को वापिस आना पड़ेगा, तो उम्मीद
2: चलिए
0: करते हैं ये सब चीज़ें हों तो फिर मार्केट बढ़ने की उम्मीद।
1: लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड।
2: चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई यूरोपीय बाजार पर। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.3% की बढ़त से बंद हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली गिरावट से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.8% से 1% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। इस बीच यूरोस्टेट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ में महंगाई दर पिछले महीने बढ़कर 3.2% हो गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों को 3.75% के स्तर पर बरकरार रखा।
1: A look at the US markets now. Major US indices ended lower yesterday following the Federal Reserve's decision to increase its interest rate for the first time in over 3 years. The Dow Jones Industrial Average declined 1.2%, the S&P 500 dropped 0.5%, and the Nasdaq Composite ended largely flat with a negative bias. In a unanimous decision, the US Fed raised its target rate for Fed funds by a quarter of a percentage point for the first time since July 2023 to curb the persistent high inflation. The central bank, in its set of quarterly projections, also signaled that another rate hike could occur later this year. Let's hear what Fed Chair Kevin Warsh said in his opening statement of the press conference.
3: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to 3.75% to 4% in support of the Federal Reserve's dual mandate. Economic activity is expanding at a solid pace. While uncertainty remains elevated, owing in part to geopolitical developments, domestic spending has been resilient, productivity growth strong, and capital investment is robust. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated. For more than 5 years, inflation has been running above target. Policy action will support a timelier return to the committee's 2% goal. This committee will deliver price stability.
1: Meanwhile, U.S. President Donald Trump has called for sharply lower interest rates following Fed's decision. In a social media post, Trump asserted that U.S. interest rates should be 1% or less. While talking to reporters, U.S. President Trump said that interest rates were too high.
4: The interest rates are too high. We should be paying the lowest interest rate anywhere in the world because we have the strongest credit. If we wanted to get rid of deficits, which we could do with a swipe of a pen with every country, we'd make $1.5 trillion a year. We'd pay off our debt, we'd do all sorts of things, but we haven't chosen to do that, but at some point we will.
1: So Prakash ji, how do you view this whole development in the United States economic scenario?
0: Well, as we heard Trump saying that let's reduce the interest rate, but rightly so, Federal Reserve doesn't agree with them, with him, and for solid reasons. When you have inflation well above the target set by the Federal Reserve, when you have bond yields hitting all-time high, all not record highs.
1: Yes.
0: See, how can you expect interest rates to be, well, it's a political statement, at best we can say this. But when it comes to the U.S., it's not the problem is there because the prices are so high.
1: Yes.
0: The cost of living crisis is there.
1: Yes.
0: And in fact, it is the bond yields which have forced Federal Reserve. Bond yields mean, when I say bond yields, for the benefit of the common user, it means high inflation.
1: Mm-hmm.
0: It's the bond yield, the inflation, which has forced Federal Reserve to hike the interest rates. It is not out of choice.
1: Mm-hmm.
0: And it would have its own implications for the economic, because is the economy overheating? Economy is not overheating. But the interest rates have to be raised because inflation was there.
1: Mm-hmm.
2: Prakash ji, lekin agar hum yahan dekhte hain, European Sangh, wahan pe bhi mehengai ki maar hai. But uske baujood bhi Bank of England apni byaj daron ko yathavat rakhta hai, barqarar rakhta hai usi star par. America mein iska jo dabav hai ya jo pressure hai, wo bahut samay se tha. Byaj daron ko badhane ki mang agar vittiya sansthanon ki aur se badh rahi thi, lekin wahin pe political will nahi thi. इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन, कोई सामंजस्य दिखता है?
0: देखिए, ओवरऑल जो अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये डिसीजन लिया है, वो अपनी जगह उनके अपने कारण,
2: हालांकि यूरोपीय संघ से बाहर,
0: लेकिन देखिए वो उसमें ये सारी मार्केट कंडीशंस ही डिसाइड कर रही हैं. ओवरऑल जो एनवायरनमेंट, ओवरऑल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल एनवायरनमेंट इन्फ्लेशन का है, हाई इंटरेस्ट रेट का है. अब वो इंडिविजुअल सेंट्रल बैंक कैसे डिसाइड करता है, बट ओवरऑल एनवायरनमेंट इज सच दैट यू आर, एज आई सेड, यू गॉट टू लिव विद हाई इंटरेस्ट.
1: यस, एंड इन्फ्लेशन इज नाउ अ ग्लोबल फिनोमेनन.
0: इट्स डेफिनेटली लार्जली बिकॉज ऑफ द ऑयल.
1: यस, ऑयल. यस, एब्सोल्युटली.
0: यस.
1: All right, back home, Securities and Exchange Board of India, SEBI Chairman Tohinkanta Pandey today said the securities market can play an important role in meeting India's growing infrastructure financing requirements by providing capital at different stages of an asset's life cycle. Addressing the National Bank for Financing Infrastructure and Development, NABFID, Annual Infrastructure Conclave 2026, Mr. Pandey said, infrastructure requires capital that is large in scale, long-term and patient in nature. The securities market, he added, can complement government expenditure and bank financing by bringing together household savings, institutional capital, foreign capital and other long-term pool of funds. Mr. Pandey highlighted that widening participation in REITs and InvITs, continuing involvement of alternative investment funds, deepening of corporate bond market and strengthening of municipal finance as specific areas where further progress can deepen this ecosystem. How do you interpret this, Prakash ji, Mr. Pandey highlighting the participation of REITs and InvITs? How do you describe
0: that? Well, what SEBI chief is stating is specifically relevant, and he's focusing on the fund requirement for the infrastructure sector.
1: Uh-huh.
0: See, good old days you had this development financial institutions. Now, as he rightly said, if you are supposing you have to lay a power grid, or you have to set up a irrigation project, you have all those big infrastructure projects need long-term finances.
1: Mm.
0: And it is beyond the realm of the banks to provide that kind of financial support.
1: Mm-hmm.
0: It is through this new kind of a mature market, since our market has matured now, so we have the instruments like InvITs, which means, what is InvIT? InvIT is a kind of a pool of funds,
1: mm-hmm,
0: raised from the investors, and which finds its way into infrastructure development. And likewise, you have municipal bonds, which means rather than depending on the budgetary kind of a support, the municipal, the efficient local urban local bodies can raise funds directly from public, uh-huh. from institutions at a commercial interest rate.
1: Right.
0: And they are called municipal bonds. And invest in, say, sewage plant or whatever is required.
1: In infrastructure.
0: So these are the signs of a maturing financial market.
1: And India needs to invest a lot in
0: Definitely.
1: Infrastructure. It is investing also.
0: Definitely.
1: We have a robust infrastructure
0: in place. No, we need to do it. We have to continue for several years.
1: Yes, yes. Well, in United States, the House of Representatives has passed a broad package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. The move comes as lawmakers look to deprive President Vladimir Putin of the financial resources needed to wage the war against Ukraine. The bill is named after the late Senator Lindsey Graham of South Carolina, who spent more than a year negotiating it. The measure was approved in a 262-159 vote. The measure sanctions Russian officials, banks, and a shadow fleet of tankers that keeps Russian energy moving. It also directs Trump to impose up to 100% tariffs on the top five importers of Russian oil or natural gas, with an exception for countries that import less than 15% of Russia's natural gas exports and have taken significant steps to reduce those imports.
2: भारत अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. विविध स्रोतों के माध्यम से बदलते बाजार के साथ चलना जरूरी है. अमरीकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के पारित होने का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले पर आगे के घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है. मंत्रालय के अनुसार हाल के महीनों में विभिन्न अमरीकी वार्ताकारों के साथ साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई है. द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष ने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अपना दृढ़ संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है. बहुत संक्षेप में इन सब चीज़ों पे भारत की स्थिति सरकार नज़र बनाए हुए है और अपनी स्थिति को भी मजबूत करने पे लगी हुई है.
0: ये आप जब ये नहीं तो भारत सरकार ने तो बोल दिया ना कि हम तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम कमिटेड हैं और अपनी चॉइस जो है हम अपनी खुद चूज करेंगे.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है. नई दिल्ली के यशोभूमि में आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा उत्पादन स्थल बनने के लिए सभी कदम उठा रहा है. उन्होंने बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.
5: इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था. जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की. अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे. पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की. कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की. और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई.
2: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है. उन्होंने कहा कि अब नींव रखी जा चुकी है और हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर 2.0 के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है.
6: So the approach in Semicon 2.0 will be to promote the design companies in a very big way, both the startups as well as the large companies. Large companies would like to get into semiconductor design because the scope is huge now, the opportunities are huge. Startups can bring in innovative solutions which will be liked by the market.
2: प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में जो प्रधानमंत्री की मंशा है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की जो हमारी इच्छाएं हैं कि सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत को अग्रणी बनाया जाए, कितना सहमत और कितना जरूरी है?
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एआई की सारी रेवोल्यूशन है वो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पे तो डिपेंड कर रही है. तो पूरी वैल्यू चेन का बहुत क्रिटिकल पार्ट है. और अगर हमने एआई वैल्यू चेन का हिस्सा बनना है तो अगर हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
2: और हाल ही के दिनों में इनकी बहुत तेजी से डिमांड भी बढ़ी है और इसके दामों में भी बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है।
1: राइट, लुक एट द ऑयल प्राइसेस नाउ, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट देम, नाउ लेट्स गेट डाउन टू इट। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइंड टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.4% डाउन एट $102.17 पर बैरल इन द इंट्राडे ट्रेड एट अ टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट। मीनवाइल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग 2.7% लोअर एट $99.69 per barrel.
2: नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर। घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.3%

0: प्रतिशत की गिरावट से 1,51,849 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.7% के नुकसान से 2,29,642 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में अगर मैं चाहूं, डॉलर की स्थिति को देखते हुए और सोने की स्थिति को देखते हुए क्या नजर आता है कि अभी डॉलर और सोने का जो समन्वय है वो कितना और किस दिशा में चलता हुआ नजर आएगा?
1: ये इनकी कशमकश जारी रहती है। डॉलर भी एक अपने आप में एसेट्स है, सोना भी एसेट्स है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अभी सोना जो है एक स्थिरता की तरफ मुझे नजर आ रहा है।
0: चलिए, प्रकाश कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार
2: जी। इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन अ फ्लैट नोट, निफ्टी सेटल्स अबव 23,250। यूएस लॉ मेकर्स पास पैकेज ऑफ सैंक्शंस टारगेटिंग रशिया एंड ईरान की इकोनॉमिक पिलर्स। न्यू दिल्ली सेज इंडिया रिमेन्स फर्मली कमिटेड टू इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड विल कंटिन्यू टू डू सो थ्रू डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग। एंड कंट्रीज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, सेज प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Amit Goel signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार बारिश और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित गांवों के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और

प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के साथ सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंक रोधी अभियान में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। अफगानिस्तान ने भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दिल्ली में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: It will continue till the 17th of next month. Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel launched the campaign for Mr. Modi's hometown of Vadnagar in Mehsana district of the state. The first day of the campaign has been observed as Seva Divas, under which blood donation camps have been organized across the country. The Supreme Court today asked the Central Board of Secondary Education, CBSE, to consider deferring its mandatory three-language policy for Class 6 students to the 2027 academic session to ease the transition for students. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joy Mallya Bagchi and Justice V. Mohanna suggested the delay to comfort students, adding that those currently in Class 6 who wish to study three languages this year should still be allowed to do so. All person-to-person UPI transactions will remain free regardless of amount. Sources in the government said that UPI will continue to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops or scanning a QR code will remain free of any charges. The coal ministry has launched the 16th round of commercial coal mine auctions in New Delhi today. This round offers 25 coal blocks comprising 21 fully explored and 4 partially explored mines across 9 coal-bearing states: Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana and West Bengal. The ministry said that a total of 147 coal mines have been auctioned till date, with cumulative expected annual revenue of over 47,500 crore rupees and projected capital investment of more than 55,000 crore rupees across 9 coal-bearing states. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the third and final T20 match of the series in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आज सुनिए 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नेतृत्व जब विचारों से आगे बढ़कर संकल्प बनता है तो नीतियाँ केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बना देती हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। शिकायतों का सीधा समाधान देने वाला स्वागत पोर्टल हो, गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाती ज्योतिग्राम योजना या फिर प्यासी जमीन तक जल लाती सोनी परियोजना, कन्या केलावणी से बेटियों का सशक्तिकरण, कृषि महोत्सव से किसानों की प्रगति और गरीब कल्याण मेले से अंतिम व्यक्ति का अधिकार, विकास की इसी सोच ने वाइब्रेंट गुजरात और गिफ्ट सिटी के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। गुजरात के इन्हीं जमीनी प्रयोगों और अनुभवों को आधार बनाकर आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जनसेवा से देश सेवा के इस 25 वर्षों के निरंतर सफर को जानने के लिए पेश है आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारिता एवं नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद जी।
2: केतन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। 2001 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली, उस समय राज्य भूकंप, सूखे और प्रशासनिक चुनौतियों से गुजर रहा था। एक पत्रकार के तौर पर उस समय गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
3: एक पत्रकार के तौर पर मैंने 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का, उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को, तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 9 में कच्छ में जो साइक्लोन आया उसका भी काफी गहरा असर था। इंस्टेबिलिटी का, एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ।

0: था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, जिसको गुजराती में कहते हैं आपणो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी, जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ गुजरात को ध्यान में रखते हुए, उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ, कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेके बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, इसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही। और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद 2000 स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है। और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001, 2 और 3, ये 2-3 सालों में रखा गया था। उसकी नींव है वो इन सालों में रखी गई थी।
1: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते हैं, जब देश में लोग कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे, तब गुजरात में स्वागत पोर्टल आया। सीधे मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 6,07,299 मामले तुरंत निपटारा कर दिए गए थे। आपसे समझना चाहेंगे कि उस दौर के प्रशासनिक रवैये के बीच स्वागत जैसी योजना किस तरह का सरप्राइज था, और इसने ग्राउंड पर अफसरशाही का जो रवैया है कितना बदला और कैसे बदला।
2: जैसा कि केतन जी ने बताया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जब प्रशासन की बागडोर संभाली, उस समय जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कच्छ की जनता और गुजरात की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय प्रशासन से उनकी उम्मीद थी कि जनता की जो शिकायतें हैं उनका निवारण तत्काल किया जाए, जवाबदारी के साथ किया जाए, और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी, और जो शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे, और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो हर एक स्तर पे, गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, ये स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे हम सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसे आपने कहा कि अभी तक 99% जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है, और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी, और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है, और प्रशासनिक ढांचे में भी कहां कमी है जिसके कारण जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन कमियों को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको मान्यता मिली है। तो ये एक गुजरात के तरफ से पूरे देश की बहुत

0: दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योतिग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
1: पहले मैं ये जो अस्थाना जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे उसके वो कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गांव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है उनको कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांवों में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में 4-4, 6-6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर 2 सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया, जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल रखा गया।
0: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
2: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेज आयोजित किए गए।

0: जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
1: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो। कैसे देखते हैं, चूंकि आज का जमाना अलग है, आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
2: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक द्योतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है, लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था। जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है, और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है, उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं, और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है उसके सुधारे पे उन्होंने जोर दिया, इसके बाद जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोर दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब यह क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था, तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा, और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी

0: बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं, तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
1: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं, 2-3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज डिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लांड एक फिनटेक सिटी है, वो फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए उनके लिए काफी कुछ, एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
2: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है, यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहाँ की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
3: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मोरबी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की त्रासदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो उस समय बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति के अगर आप एक अवलोकन करें तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि

0: कैसे बिना किसी के जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहरी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने, जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
2: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना में क्या हुआ, क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे, तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वने के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरिकल कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव-गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे, बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए लेकिन ये उपक्रम था उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या केलवनी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ किया जो आज पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखाग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखाग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
0: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पे पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289-094-044।

0: और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में भारत भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे और नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज की विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस दृष्टिकोण को माई गॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए माई गॉव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है, तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माई भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माई गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज श्रमिकों के कल्याण और उन्हें सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग क्षेत्र में नमो श्रमिक सेवा केंद्र और गिग वर्कर्स विश्राम

0: केंद्र का उद्घाटन किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के विकास और निर्माण में श्रम, परिश्रम और लगन से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्रमिक लोगों के सम्मान, सुविधा तथा कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि श्रमिकों के लिए नमो श्रमिक सेवा केंद्र एक सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं और श्रमिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी आवश्यक सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि केंद्र पर श्रमिकों को पंजीकरण और नवीकरण में सहायता, दस्तावेजों के सत्यापन, आवेदन की स्थिति की जानकारी, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और दावों से संबंधित सेवाओं के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान गिग वर्कर्स विश्राम स्थल का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि राजधानी में और भी श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां श्रमिक निशुल्क पंजीकरण कराकर सरकार की विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
2: श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब एक श्रमिक रजिस्टर हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार की सारी योजनाओं को उनका लाभ उठा सकते हैं। तो दिल्ली में हम लगभग 34 जगहों पर नमो श्रमिक सेवा केंद्र खोल रहे हैं, जहां पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
1: श्री मिश्रा ने कहा कि सरकार ऐसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने जा रही है, जहां श्रमिकों को तकनीकी कौशल के साथ साथ विदेशी भाषा कौशल भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्षों की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृहनगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अलीपुर स्थित श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम में आयोजित 108 कुंडीय यज्ञ में हिस्सा लिया। ये यज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर दिल्ली में चल रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन की यात्रा ने जनसेवा और राष्ट्र सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी है।
3: 108 कुंडिया हवन अभी हमने संपूर्ण किया है। बाबा श्याम खाटू वालों के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और देश सेवा में वो इसी तरीके से लगातार काम करते रहे, इसकी कामना की है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज दिल्ली सचिवालय में दो विशेष गीतों का शुभारंभ किया। ये गीत दिल्ली के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों ने तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज अंगदान संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देना, प्रत्यारोपण सेवाओं को मजबूत करना और नागरिकों को अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रीमती गुप्ता ने स्वयं अंगदान की घोषणा की और इसके लिए संकल्प पत्र भी भरा। इस अवसर पर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। इसके द्वारा दिल्ली के नागरिक अंगदान संकल्प अभियान से ऑनलाइन जुड़कर अंगदान का संकल्प ले सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में शामिल हुई। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र से प्रेरित यह कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा भाव का सशक्त संदेश देता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सेवा संकल्प अभियान और एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत नई दिल्ली की लोदी कॉलोनी में पौधारोपण कर भारत वन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि पेड़ पौधों और पक्षियों के लिए बेहतर वातावरण बनेगा और क्षेत्र की जैव विविधता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
4: एक पेड़ माँ के नाम के निमित्त आज इस लोधी कॉलोनी में एक फॉरेस्ट की शुरुआत एक बड़े पार्क की, एक एकड़ के पार्क की, जिसको मियावाकी फॉरेस्ट कॉन्सेप्ट से भारत की माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने एक पेड़ लगा के करी, एक दिया जलाया जो आशीर्वाद के दिए के रूप में है, और यहाँ NDMC के स्कूल के बच्चे जिन्होंने पेड़ लगाए, पौधे लगाए।

0: 50,000 से अधिक एक पेड़ माँ के नाम, माने प्रधानमंत्री जी का संकल्प जो एनडीएमसी में आंदोलन बन रहा है उसकी एक शुरुआत है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
3: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने के अवसर दिए जाते हैं ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण मात्र 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूलकिट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी घोषणा की।
4: भगवान विश्वकर्मा जयंती, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन और सेवा दिवस के पावन अवसर पर लड्डू लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। आज से इस योजना के नए लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। अब प्रदेश के 1,80,000 रुपए तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की सभी पात्र बहन बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
1: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अम्बाला के पुलिस लाइन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से राज्यव्यापी 100 दिवसीय एनीमिया मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक नेत्र जांच और एनीमिया परीक्षण शिविर का भी उद्घाटन किया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने विभिन्न विभागों में लंबित करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के मामलों को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री वाही ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में होने वाली अनावश्यक देरी से दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। महापौर ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों से लंबित सभी अनुकंपा नियुक्ति मामलों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। सरकार में सूत्रों ने बताया है कि यूपीआई ग्राहकों के लिए निशुल्क बना रहेगा। मित्रों को पैसे भेजने पर, दुकानों पर भुगतान करने पर या क्यूआर कोड स्कैन कर लेनदेन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। एक रिपोर्ट।
6: सरकार के सूत्रों ने बताया कि यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से प्रतिमाह 1 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले विक्रेताओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सूत्रों ने बताया कि रुपए डेबिट कार्ड से जुड़े यूपीआई लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। सूत्रों के अनुसार लगभग 96% लोगों द्वारा व्यापारियों को किए गए यूपीआई लेनदेन अप्रभावित रहेंगे। हालांकि रेलवे और ईंधन के लिए 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर प्रति लेनदेन 5 रुपए का मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू होगा। 2,000 से अधिक के केवल बड़े व्यापारी लेनदेन पर 0.4% का MDR लागू होगा, जिसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा। नई यूपीआई कार्य नीति यूपीआई के दीर्घकालिक उपयोग को बढ़ावा देने के साथ लोगों के लिए भुगतान को निशुल्क बनाए रखने और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। समाचार कक्ष से सम्राट की रिपोर्ट।

0: के साथ मैं अतहर सईद।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला इस समय दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने छठे ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 86 रन बना लिए हैं। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में सुनिए लीजिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए UPI लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। और नई दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉप्लर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉप्लर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। यह कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि यूपीआई ग्राहकों के लिए निशुल्क बना रहेगा।

0: परिचितों को पैसे भेजने पर दुकानदारों के निजी खाते में भुगतान करने या QR कोड स्कैन कर लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि रेलवे और ईंधन के लिए 2,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर प्रति लेन देन 5 रुपए का मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय UPI के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में UPI लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच UPI आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में बिना विकेट खोए 109 रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said, India is emerging as a reliable destination for global manufacturing and is preparing to meet new challenges. Mr. Modi stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi today. The Prime Minister highlighted the growing demand for artificial intelligence, saying the focus is now shifting beyond transistor size to overall system integration, including memory placement and heat management.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: लेटर एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इवेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड, India's semiconductor design capabilities are recognized globally and Semicon 2.0 will focus on promoting semiconductor design companies in the country. All person-to-person UPI transactions will remain free regardless of amount. Sources in the government said that UPI will continue to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops or scanning a QR code will remain free of any charges. Sources also said that vendors earning up to 1 lakh rupees per month via UPI QR codes will continue to attract zero charges. They informed that all RuPay debit card linked UPI transactions will also continue to remain free of any charge. As per the sources, around 96% of person-to-merchant, that is P2M UPI transactions, will remain unaffected. However, transactions above 2,000 rupees in essential sectors, such as railways, fuel and others, will attract a flat merchant discount rate MDR of 5 rupees per transaction. Prime Minister Narendra Modi today said, the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards that goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal on the occasion of the release of the fourth installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
3: आज विश्वकर्मा पूजा का पावन अवसर भी है। मैं आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इसी पावन समय में आज बंगाल में एक नई परंपरा सशक्त हो रही है। आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों,
1: द भारतीय जनता पार्टी BJP हैज लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग नेशन वाइड सेवा संकल्प अभियान फ्रॉम टुडे टू मार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज बर्थडे। The campaign focuses on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The drive also marks 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. It will continue till the 70th

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मधुरिमा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं विभा, नमस्कार। कुछ राग ऐसे होते हैं जिनमें ढलते दिन की खास अनुभूति समाई होती है। थोड़ा ठहराव, थोड़ी प्रतीक्षा और कभी कभी मन में उठती कसक। ऐसा ही एक राग है राग पटदीप। दोपहर के उत्तरार्ध में गाया बजाया जाने वाला ये राग अपने सुरीले, भावपूर्ण और विरह श्रृंगार से जुड़े रंग के लिए जाना जाता है और हिंदी फिल्म संगीत ने भी इसके भावों को बेहद खूबसूरती से अपनाया है। आइए सुनते हैं एक गीत इसी राग पर आधारित फिल्म साज और आवाज से, जिसमें नौशाद साहब की मधुर धुन है और रफ़ी साहब की आवाज़।

कभी कभी किसी की याद इतनी गहरी हो जाती है कि दिल बस एक ही सवाल पूछता है कि तुम बिन जाऊं कहां। जी हाँ, फिल्म है प्यार का मौसम और इस फिल्म का ये लोकप्रिय गीत रफी साहब की आवाज और आर डी बर्मन के संगीत में घुल मिलकर राग पटदीप के भावों को एक अलग ही अंदाज में प्रस्तुत करता है। आइए सुनते हैं।

वो है राग पटदीप। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें संकोच भी है, प्रेम भी और कदम कदम पर छुपी हुई शरारत भी। फिल्म चुपके चुपके से लता दी की आवाज में।

अगला गीत अपने भीतर एक अजनबीपन, आकर्षण और किसी अनकहे रिश्ते की तलाश समेटे हुए है। फिल्म दिल से

तो ये थी आज की हमारी मधुरी माँ राग पटदीप के सुरों में ढले कुछ यादगार गीतों के साथ। आज बस इतना ही, विभा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतर सईद।
1: जी हां, हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर ताजा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले हेडलाइंस।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला नई दिल्ली में जारी। अभिषेक शर्मा 30 गेंद में शतक लगाकर सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। जापान के खिलाफ किताब बचाने के अभियान की शुरुआत करेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। वेस्टइंडीज के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और डेविस कप क्वालिफायर दूसरे दौर के मुकाबले में कल भारत का सामना कोरिया से।
1: तो शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला इस समय दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। शक्ति, इससे पहले कि हम आगे चर्चा अपनी शुरू करें, इस मैच की अब तक की ताज़ा अपडेट क्या है?
0: अतर, बता दें कि इस समय 12 ओवर और 5 गेंद का खेल हो चुका है और भारतीय टीम जो पहले बल्लेबाजी कर रही है उसने 164 रन स्कोर बोर्ड पे चढ़ा लिए हैं और वर्तमान में संजू सैमसन 50 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।
1: यानी संजू सैमसन का अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इससे पहले का कमाल की बल्लेबाजी की है अभिषेक की, जितनी प्रशंसा की जाए वो उतनी कम होगी। आशक्ति, 34 गेंद में 108 रन, क्या कहते हैं?
0: कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ऐसी पारी जिसके लिए शब्द कम पड़ जाए अतर। और जब मैदान में आज अभिषेक उतरे तो लोगों को लगा था कि क्या अफगानिस्तान क्लीन स्वीप के इरादे को नाकाम करेगी, लेकिन जिस तरह का खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने, हर तरफ शॉट और गेंद ऐसा लग रहा था कि अभिषेक के बल्ले को छूती और सीमा रेखा के पार जाती और सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गया है आज ये खिलाड़ी।
1: हालांकि ये मैच से पहले ये सोचा जा रहा था कि क्या अभिषेक आज भी कुछ कमाल कर दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने तो धमाल कर दिखाया आज। उनके बल्ले से एक के बाद एक गेंद जो है रन बटोर रही थी, तो वो जो दृश्य है वो काबिले तारीफ कहा जा सकता है। एक सवाल आपके ही शब्दों में निकलता है, क्या भारत क्लीन स्वीप कर पाएगा?
0: जी बिल्कुल, अब तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का स्कोरबोर्ड आपने 164 रन चढ़ा लिए हैं, 13 ओवर का खेल हुआ है, भारत एक बहुत विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह का डोमिनेंस इस पूरी सीरीज में अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिला है, मुझे लगता है कि दिल्ली के दर्शकों को एक तीसरे मैच में जीत लगातार स्पष्ट नजर आ रही है।
1: बिल्कुल, और मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए पहले उतरी भारतीय टीम दूसरी अपनी इनिंग की जो शुरुआत करेगी वो बल्लेबाजी से करेगी, तब तक रात गहरा चुकेगी। तो क्या ये टॉस का महत्व कितना बढ़ जाता है ऐसे में, जबकि दिल्ली में मौसम का असर इस समय देखा जाए तो ह्यूमिडिटी लगभग 60% से ज्यादा है और रात में ओस का जो प्रभाव है और बढ़ जाता है। शक्ति,
0: जी बिल्कुल, अफगानिस्तान ने आज टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन अब तक अभिषेक शर्मा के उस पूरे हिट शो के आगे फैसला बिल्कुल गलत साबित होता हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शुरुआत के दो मुकाबलों में भारत ने टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया था और परिणाम भारत के पक्ष में थे। शायद ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान के कप्तान के जहन में चल रहा होगा कि इस बार हमें मौका मिला है, हम गेंदबाजी करते हैं, मैच जीतेंगे, लेकिन पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है।
1: और साथ में शक्ति एक चीज और है, दिल्ली के दर्शक जो है भारतीय टीम को भा गए हैं। दिल्ली के दर्शकों के समक्ष 2 लगातार जीतों के बाद तीसरी जीत के मुहाने पर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम है, उम्मीद तो यही बता रही है अब तक की बल्लेबाजी के क्लीन स्वीप की ओर भारत बढ़ रहा है।
0: जी बिल्कुल, और जिस तरह की पारी देखने को मिली, कोई मुझे अभी तक यहां से हमें दो राय नहीं नजर आती हुई और भारतीय टीम एक शानदार जीत और इसके बाद जो टीम को एशिया कप खेलना है, एशियन गेम्स खेलने हैं, उसके लिए एक शानदार अभियान की तरफ बढ़ती हुई।
1: एक अंतिम सवाल, चूंकि संजू सैमसन इस वक्त जो है पूरे फॉर्म में है, तो उनसे क्या उम्मीदें लगती हैं, क्या वो भी शतक की ओर बढ़ रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि अभी खेल बचा हुआ है तकरीबन 7 ओवर का और संजू सैमसन अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, हालांकि थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे और अर्धशतक में अपना विकेट उन्हें गंवा दिया है, लेकिन एक चीज तो तय है कि भले उनका शतक नहीं हो सका लेकिन टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तर
1: बिल्कुल, आपने सही कहा और हमारी पूरी उम्मीदें, शुभकामनाएं, और साथ में ये भी है कि जो प्रदर्शन है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत निश्चित रूप से ये मुकाबला जीतने की ओर अग्रसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले सप्ताह दुबई में रिकॉर्ड 8वीं बार महिला T20 क्रिकेट एशिया कप जीतने के बाद गत विजेता और खिताब के प्रबल दावेदार भारतीय महिला टीम एशियाई खेलों में कल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। कल क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच जापान के नागायो में भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
2: दुबई में खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, लेकिन एशियाई खेलों के नॉकआउट प्रारूप में उनके पास गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होगी। महिला स्पर्धा में 8 टीम भाग ले रही है और प्रतियोगिता सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होगी। इसका मतलब है कि किसी भी टीम को प्रतियोगिता में परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए ग्रुप चरण के मुकाबले नहीं मिलेंगे और एक हार ही अभियान को समाप्त करने के लिए काफी होगी। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा का प्रदर्शन काफी अहम होगा। उन्होंने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें वे टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज के साथ साथ टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिनको स्मृति मानधना का भरपूर साथ मिलने की उम्मीद है। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर भी एशिया कप के औसत प्रदर्शन के बाद बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। गेंदबाजी में भारत के पास काफी विकल्प हैं। भारत की गेंदबाजी काफी हद तक अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और बाएं हाथ के स्पिनर श्रीचरणी के इर्द गिर्द रहेगी। भारत के सामने मेजबान जापान घरेलू मैदान पर मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। जापान को मजबूत भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना होगा, उसे भारत के स्पिन विकल्पों के खिलाफ प्रभावी ढंग से खेलना होगा और साथ ही उसके गेंदबाजों को आक्रामक शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को रोकना होगा। इससे पहले कल बांग्लादेश और चीन के बीच मुकाबला बारिश के कारण रद्द होने के बाद ICC में बेहतर रैंक के आधार पर बांग्लादेश को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया। स्पोर्ट्सकैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: शक्ति, भारतीय टीम से इस प्रतियोगिता में क्या उम्मीदें आपको लगती हैं?
0: जिस तरह की हालिया फॉर्म रही है हरमनप्रीत एंड आर्मी की, बिल्कुल वो स्वर्ण पदक को बचाते हुए टीम नजर आएगी। शानदार गेंदबाजी क्रम, मजबूत बल्लेबाजी, और थोड़ा अगर कुछ मोर्चों पे टीम और सुधार कर लेती है तो कह सकते हैं कि जापान में भारतीय टीम पोडियम फिनिश करते हुए स्वर्ण पदक के साथ नजर आ सकती है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में हमारी नजरें किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर केंद्रित हो सकती हैं?
0: जी, अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो 1, 2, 3 नहीं, भारत के पास 4 से 5 शानदार विकल्प हैं। दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, उसके बाद प्रेमा रावत, नंदिनी शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और अभी जब टीम एशियन कप जीत करके आई है वहां पे देखा जाए दीप्ति शर्मा सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी थी। 5 मैचों में 14 विकेट, और वो शानदार स्पेल जो पहले मैच में आया था बिना कोई रन दिए, वो 4 विकेट, शायद बहुत मनोबल मिलेगा जापान से पहले इस खिलाड़ी को और उनकी मौजूदगी से इस पूरी टीम के गेंदबाजी महकमे को।
1: अच्छा, बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी के मोर्चे पर हरमनप्रीत कौर की ये टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन साबित हो सकते हैं?
0: बल्लेबाजी की अगर बात की जाए अतर, तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, कुछ मोर्चों पर टीम को काम करने की जरूरत है। शेफाली वर्मा की शानदार फॉर्म, हालिया फॉर्म जो है उसका कोई तोड़ नहीं। सबसे अधिक रन बनाए, 5 मैच 236 रन, 3 शानदार अर्धशतक जिनको साथ मिलता है स्मृति मंधना का, तो कह सकते हैं कि ओपनिंग बहुत अच्छी है। मिडल ऑर्डर से कुछ और योगदान होगा तो टीम बिल्कुल पोडियम पे पहुंच रही है।
1: बढ़ते हैं अगली खबर की ओर,
0: और अब बात की जाए भारत वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला की, जहां वेस्टइंडीज के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रृंखला में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ घरेलू सरजमी पर 3 एक दिवसीय और 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। आइए सुनते हैं इस पर अपने सहयोगी सरफिरोजी की रिपोर्ट।
3: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेस्टइंडीज के साथ आगामी एक दिवसीय श्रृंखला के लिए टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी है, जबकि KL राहुल उपकप्तान और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल भी टीम का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर नीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे। इन दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर के तौर पर नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर और रविन्द्र जडेजा को स्थान मिला है। वहीं गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज और

0: औकिब नबी के हाथों में होगी। बोर्ड ने 5 T20 मैचों के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को T20 की कमान सौंपी गई, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन और संजू सैमसन का चयन किया गया है। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में स्थान मिला है। इनके अलावा अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस और मयंक यादव भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। श्रृंखला का पहला मैच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इस महीने की 27 तारीख को तिरुवेद्रम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच गुवाहाटी में 30 सितंबर को और अंतिम एक दिवसीय मैच चंडीगढ़ में 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। जबकि 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा, वहीं दूसरा 9 अक्टूबर को रांची में, तीसरा 11 को इंदौर में, चौथा मैच हैदराबाद में 14 अक्टूबर को और दौरे का अंतिम मैच बेंगलुरु में 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: साइना नेहवाल ने खेलो सानंद उत्सव 2026 का आज उद्घाटन किया। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने गुजरात के सानंद में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सानंद में सभी 105 गांवों में 18 दिवसीय ओलंपिक खेल अभियान की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर साइना नेहवाल ने कहा कि ये देखकर बेहद अच्छा लगता है कि नई प्रतिभाएं खेल के मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।
2: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों को मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए देख रही हूँ, कंपटीशन के लिए रेडी होते हुए देख रही हूँ। एंड आई एक उत्सव बनाया जाता है किसी चीज का, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स में। और इससे यही चीज सीखी जाती है कि आई एम श्योर कि अभी वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के लिए टारगेट कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें यहाँ से इतने सारे प्लेयर्स मिलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा करेंगे।
1: तो अतर जब जिलों तक खेल पहुंचता है, जब वो अंतर्राष्ट्रीय पैमानों को पार करके जिलों, कस्बों तक पहुंचता है, तो सिर्फ खेल नहीं खिलाड़ियों का मान बढ़ता है। कितने सहायक हैं इस प्रकार के मंच।
3: बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ग्रामीण अंचलों से जब खेल निकलते हैं तो जिला स्तर पर पहुंचते हैं, और जिला स्तर से निकल कर प्रदेश स्तर पर पहुंचे, राज्य स्तर पर पहुंचते हैं, और उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में वो आकर्षण का केंद्र बनते हुए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम रोशन करते हैं। अब कितने ही खेलों की हम बात करें, खेलो इंडिया का अगर हम जिक्र करें, ट्राइबल गेम्स की अगर हम बात करें, युवा खेल की बात करें, तो इनमें से जो खिलाड़ी निकल करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ढेरों पदक ला रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और जो उनका सपना है और जो उनके प्रयास हैं और जो प्रोत्साहन है, उसके अनुरूप हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, पदक ला रहे हैं, स्वर्ण पदक ला रहे हैं और भारत का नाम निरंतर रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भारतीय खिलाड़ियों को मंझने का, तराशने का एक मौका मिलता है, और तराशने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब वो पहुंचते हैं तो वो पदक भारत के लिए लाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और वो भारत के जो प्रदर्शन है वो मेडल टैली में साफ नज़र आता है कि सात समंदर दूर तक कहीं कोई प्रतियोगिता हो, भारतीय खिलाड़ी अब सिर्फ प्रतिभाग नहीं करते, पदक के साथ लौटते हैं।
3: बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से आयोजित की जा रही है। ये टूर्नामेंट शिलांग के जवाहरलाल नेहरू इंडोर कॉम्प्लेक्स में शनिवार से शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।
1: वहीं भारतीय टीम कोरिया के खिलाफ डेविस कप क्वालिफायर के दूसरे दौर के मुकाबले में कल उतरेगी, जब उसकी नजरें डेविस कप के अंतिम 8 में जगह बनाने पर होंगी, और एक बार फिर भारत के दक्षिणेश्वर सुरेश से अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की उम्मीद होगी। उनका सामना कल सियोल में कोरिया के नंबर 1 खिलाड़ी सुनवू क्लोन से होगा। और अतर कार्यक्रम में थोड़ी सी चर्चा एशियाई खेलों की भी कर ली जाए। बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, 503 खिलाड़ियों का दल है, बहुत कम समय में समझना चाहेंगे किन खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी।
3: कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम बात करें, आप शायद संक्षेप में करना चाहेंगे, तो पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा साक्षी चौधरी की। महिला बॉक्सर साक्षी चौधरी ने बेहद कम समय में अपनी खास पहचान बनाई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में साक्षी का प्रदर्शन जबरदस्त रहा और वो स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी।
1: तो जी, मैं साक्षी के आगे एक नाम अतर जोड़ देना चाहूंगा, अनाहत सिंह से भारत को प्रबल दावेदार हैं, पदकों की स्क्वाश खिलाड़ी हैं, 18 वर्षीय हैं, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं। और मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को, सबसे कम उम्र में भारत के लिए एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली ये खिलाड़ी, इसके पहले 2022 में 2 कांस्य पदक भारत के लिए महज 14 वर्ष की उम्र में जीत चुकी।

0: दो खिलाड़ियों का और जिक्र करूंगा, अनुष्का यादव हैमर थ्रो में और आयुष शेट्टी के हम जरूर चर्चा करेंगे, वो भी उलटफेर करने में सक्षम है।
1: जी बिल्कुल, दिग्गज खिलाड़ी हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और अतर को अनुमति दीजिए,
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
3: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
3: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
4: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
5: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
4: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
7: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
2: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट्स से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
7: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
8: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
9: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
8: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1 lakh crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the scent. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the fifth edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
3: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
3: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइंस और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की। कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की। और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है। और अब ये भी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
2: Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. He said 12 semiconductor projects have so far been approved and more. The government has refuted allegations that the merchant discount rate MDR on UPI has been introduced because of external pressure. Department of Financial Services in Ministry of Finance said the allegation is patently false and misleading. It said that the introduction of MDR on select high-value transactions will enable more domestic companies to operate under UPI. The department said the action of introduction of MDR is a step in protecting India's sovereignty in electronic payment ecosystem. India today said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said the country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics. The statement came amid the passage of a bill by the U.S. House of Representatives that will allow

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार। स्वच्छ भारत में जन भागीदारी, राष्ट्रव्यापी देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत आज हुई है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आज देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये कितना बड़ा अभियान मानते हैं, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा, इसके क्या मायने हैं और आम लोगों के लिए ये किस तरीके से आंका जा सकता है?
3: ये अच्छी बात है कि इस साल फिर एक बार स्वच्छता ही सेवा हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत आज नहीं है। 2014 में लाल किला की प्राचीर के ऊपर से उस टाइम नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को आह्वान दिया था और उस टाइम लोगों को चौंका दिया था कि हमें देश को स्वच्छ करना चाहिए, हमारे आदत बदलना चाहिए और हमारे जो बहन माँ और जो भी महिलाएं हैं उनकी डिग्निटी और सिक्योरिटी के खातिर, बीमारी से बचने के खातिर देश को स्वच्छ करना अति आवश्यक है और इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। तो 14 से लेके अभी तक 26 तक 12 साल हो गया ये आंदोलन चलता आ रहा है और ये पहले ऐसा कभी नहीं था। और मैं अगर कह सकता हूँ कि हमारे भारत की जो आजादी की लड़ाई है उस टाइम जो आंदोलन था उसके बाद अगर एक सचमुच के एक जन आंदोलन हुआ है तो मैं स्वच्छ भारत का मानूंगा और प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में एक बहुत बड़ा चीज शुरू हुआ जो आज तक निरंतर चल रहा है, उसका नाम स्वच्छता ही सेवा। और वो आज 17 सितंबर को शुरू होता है। पहले 2 पक्ष के लिए हुआ करता था, जैसे कि स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है उस दिन उसका कंप्लीशन हुआ करता था। अभी इस बार 1 महीना है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो है कि ये जो स्वच्छता है या देश को स्वच्छ करने का जो मुहिम है ये जनता की है। जैसे गांधी जी ने बोला था कि भाई अपने हाथ में झाड़ू पकड़ोगे तब अपना आंगन और बाहर देश साफ होगा, ऐसे ही एक अंदर में इंसान और सारे सिटीजन सबका अंदर में एक निर्णय है कि हम खुद अपना आंगन, अपना जो बाहर गली सड़क और पब्लिक प्लेसेस सारे जगह स्कूल मोहल्ला सब कुछ साफ करेंगे, हम खुद ही साफ करेंगे सब मिलके। ये 1 महीना खास कर आज से लेके तो ये स्वच्छता ही सेवा, अपने जो श्रमदान करेंगे और जगह जगह सफाई करेंगे एक मिसाल करेंगे, इसमें एक जोश आएगा। अपना स्वच्छता जो कार्यक्रम है जैसे कि 12 करोड़ शौचालय बने 2014 से लेकर आज तक, और घर घर से वेस्ट मैनेजमेंट का सारे घरों की कचरा जो है रोज आते हैं, गाड़ियां आके घर से कलेक्शन होते हैं, वेस्ट रिकवरी और वेस्ट प्रोसेसिंग का बहुत कैपेसिटी बढ़ा है, बाहर जो कूड़े का शहरों की बाहर जो लैंडफिल बोलते हैं उसका संख्या भी कम हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रहा है। लेकिन ये जो बात है स्वच्छता ही सेवा की जो 1 महीना है ये लोगों की कार्यक्रम, इसको दिखाने के लिए लोग खुद आकर बाहर साफ करेंगे वही चल रहा है और 17 से शुरू हुआ था, बहुत सफल रहा है। इसमें करोड़ों लोग हर साल जुड़ते हैं और भी होता है तरह तरह के समय में, कभी 1 हफ्ता कभी 2 दिन कभी कोई एक फंक्शन है सेरेमनी है या कोई ओकेजन है उसमें भी होता है। और से बड़ी और कंसंट्रेटेड फोकस तरीके से अगर कभी होता है और इसमें स्वच्छ भारत मिशन के जो 2 मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय एक शहरी और आवास जो मंत्रालय है उनमें से स्वच्छ भारत मिशन के जो रूरल और अर्बन दोनों पक्ष मिलके इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में काम है, लोग साफ सफाई करते हैं, सब जुड़ते हैं और एक सेवा मनोभाव से करते हैं और एक आंदोलन के तरीके से करते हैं।
2: इसमें जन भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, जागरूकता किस तरह से फैलाई जा सकती है और जागरूकता को सारी जनता आम तौर पे खुद से अपनाए, उसके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार कितनी सफल हो पाई है इसमें?
3: इसमें सफलता तो आप अगर पहली फेज में माने जैसे कि 14 से 19 पहला फेज था और 19 से 26 जो है इस साल तक दूसरा फेज है स्वच्छ भारत मिशन का, पहला फेज में तो लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त था। उस टाइम मैं सोचता हूँ कि फेज 2 जो खत्म होने वाला है और फेज 3 जो आने वाला है ये जन भागीदारी को और थोड़ा बढ़ाने की स्कोप है, जो कि पहले था 14 से 19 तक बहुत जबरदस्त था, उस टाइम गांव गांव शहर शहर लहर जैसा चल पड़ा था, उस टाइम लोग करीब करीब प्रण कर लिए थे कि हमारे गांव को या हमारे शहर को खुले शौच से मुक्त करना है, वो फोकस था उसमें खुले शौच से मुक्त जो डेफिकेशन फ्री बोलते

0: और बहुत सारे श्रोताओं को शायद ध्यान नहीं होगा, 2014 में भारत में खुले में शौच करने वाले लोगों की संख्या जो है 60 करोड़ 600 मिलियन था, और वो दुनिया के सारे खुले शौच करने का 60% था। लगता था कि भारत में ये जो काम है ये कभी बन नहीं पाएगा, और टोटल एक्सेस और यूसेज जो टॉयलेट की था शौचालय की, मान लीजिए 1947 जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके 2014 तक करीब 38% था, लेकिन 2014 से लेकर 19 के अंदर देश खुले में शौच मुक्त हुआ। इसको मेंटेन करने का और आगे बढ़ाने का बहुत जरूरत है, और इसमें 4 P बोला जाता है, 4 P। पहला P है पॉलिटिकल लीडरशिप, जो प्रधानमंत्री ने दिया और सारे लोगों को, जितने बड़े बड़े लीडर सबको इन्वॉल्व किया, सारे मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मंत्री, सारे गवर्नर, सारे MP, MLA और जितने बड़े बड़े सितारे हैं सब इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, सरकार ने काफी पैसा लगाए हैं सैनिटेशन के ऊपर, सफाई के ऊपर कभी इतिहास में इतना पैसा नहीं लगाया गया था, बहुत पैसा लगाया गया। तीसरा P है पार्टनरशिप, सबको जुड़ा, ये सफाई जो है सबके काम हो गया, किसी एक का कोई मंत्रालय का काम नहीं है, सरकार की काम नहीं है, उसमें कॉरपोरेट भी जुड़े, सिविल सोसाइटी भी जुड़े, मीडिया भी काफी जोर शोर से जुड़ा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसमें दोनों का तालमेल रहा, लोकल गवर्नमेंट जैसे डिस्ट्रिक्ट और पंचायत और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े, सबका पार्टनरशिप से काम हुआ। लेकिन जो आखिरी P जिसका की जिक्र आपने अभी किया वो है पीपुल्स पार्टिसिपेशन या लोगों की भागीदारी। जैसे अभी जो स्वच्छता ही सेवा हो रहा है उसमें यूनिट्स आइडेंटिफाई किया गया है, जो सबसे चैलेंजिंग शहर में खास करके ज्यादातर जो जो जगह एकदम जिद्दी की तरह से वहां गंदगी है उसको सब मिलकर साफ करेंगे, साफ नहीं तो माफ नहीं। बात है निपटान वेस्ट का, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का निपटान की बात हो रहा है, और ये शहरी इलाका में ज्यादा चैलेंजिंग है, गांव में इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन और जैसे गार्बेज फ्री सिटी का एक रखा गया है टारगेट, 4800 5000 करीब हमारा शहर और नगर है, तो वो गार्बेज फ्री कब होंगे और थोड़ी समय लग जाएगा, लेकिन काम निरंतर प्रयास है, क्योंकि जैसे गांव के लोग जितना जुड़ गए थे शहर के लोग शायद इतना भी जुड़ नहीं पाए हैं। और वेस्ट जो डिस्पोजल है या वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट प्रोक्योरमेंट, वेस्ट रिकवरी हुआ, वेस्ट को कन्वर्ट करना हुआ, निपटान करना हुआ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी आते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज भी आते हैं। और मुझे इसे लग रहा है कि जिस तरह का लोगों की इसमें जुड़ाव था 2014 से 19 फेज वन में, ये जुड़ाव का और एक बार थोड़ा सा इसका रिवाइवल होने का बहुत आवश्यक है। ओपन डेफिकेशन फ्री तो एक बार हो गया खुले शौच से मुक्त अभी, लेकिन उसके आगे पैरामीटर्स जोड़ जाता है कि क्या गांव में कचरे का निपटान हुआ है, क्या गंदे पानी के स्रोत बंद किया गया है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर वेस्ट का एक बार सेग्रीगेशन हो जाए तो फिर वो गोल्ड बन जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू उससे जो निकलना है बढ़िया से निकलता है, उससे वेस्ट टू वेल्थ निकलता है उसमें, क्योंकि वेस्ट जो है रिसोर्स है। ये सरकार ने खाली कहा नहीं है, ये तो अभी इंडस्ट्री और एंटरप्राइज धीरे धीरे आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना भरा हुआ है जिसको कचरा से कंचन बोला जा रहा है तो इसमें है। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन है, चाहे इंडिविजुअल घर का हो या कोई बल्क जनरेटर्स हैं, चाहे जिसे रेसिडेंशियल सोसाइटीज हो, मॉल्स हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, वहां से कचरे जब निकलेंगे ना तो वो सेग्रीगेट होकर निकलना है, नहीं तो सेग्रीगेट होकर नहीं निकलता है तो फिर वो बीमारी और गंदगी और दुनिया भर का लैंडफिल, ये सबका आशंकाएं बढ़ता है और यही सब होता है।
1: आपने बताया कि आम जनता को जिस तरह से इसमें भागीदारी करने की जरूरत है, तो कार्यालय स्तर पर यानी ऑफिस स्तर पर भी बहुत सारे हैं आजकल, चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की भी बात हमें करनी चाहिए, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो ई कचरा प्रबंधन, बहुत सारे जो कार्यालय हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के जो कार्यालय हैं उसमें भी जैसे कि सरकार ने कागज पे काम करने की बजाय वो जो ई प्रबंधन किया है या ई फाइलिंग का और ई ऑफिस का भी जो किया है, इससे कितना आसानी हुई है ये सारे कचरा निपटाने में?
0: बिल्कुल, आप देखिए ना, इलेक्शन में भी कुछ दिन काम किया था, और इलेक्शन में जब बैलेट को निकालकर ईवीएम लगाया तो कितना कागज की बचत हुआ, और कागज बचत होने का मतलब इतना खाली कागज की बचत नहीं होता है, उसमें एनवायरमेंट, ट्री, गच कटने का और कचरा, ये सबसे रिहायत मिलता है। तो ऐसे ही सरकार का एक प्रोग्राम चला हुआ है मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री लेके, कैसे ई ऑफिस होगा, कैसे कागज की यूज कम होगा, कैसे पुराना चीज निकाल के उसको डिस्पोजल होगा, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोला, क्योंकि आजकल तो हम लोगों का ऐसे हो गया ना, जैसे मोबाइल फोन बोलिए या लैपटॉप बोलिए या आईपैड बोलिए या टीवी बोलिए, जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इसको इतना चेंजेस आता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, नया नया वर्जन आता है, और लोगों का खरीदने का कैपेसिटी इतना बढ़ा है, लोग चेंज करते रहते हैं। जो पुरानी चीज है उसको अगर ठीक तरह से उसको डिस्पोजल नहीं किया गया ठीक जगह में जाके, उसको एक चैनल है जिस तरह से आइडेंटिफाई होकर जगह, ये खाली कचरे में डाल देने से नहीं होगा, इसको निकाल के इसका एक साइंटिफिक तरीका है डिस्पोजल के लिए, नहीं तो पूरा टॉक्सिक हो सकता है।

0: बहुत सारी चीज डेंजरस क्रिएट हो सकते हैं इसमें। और एक बात है, मेडिकल से जो वेस्ट होता है उसका भी एक पर्टिकुलर तरीके होते हैं डिस्पोजल होने का। एक बड़ा कंसेप्ट जो दुनिया में आया है, सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है, नीति आयोग भी बढ़ावा देता है, ये आरआरआर, ये वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल, थ्री आर। मतलब आप चीजों के, जैसे पहले जैसे गांधी जी कहा करते थे कि अपना जरूरत के हिसाब से चीजें इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं कि स्प्लॉरिज कर रहे हैं आप, है ना। तो वो बोलते हैं कि रिड्यूस, आप जो सामान यूज करते हैं रिड्यूस। लेकिन आज को मेरे को लगता है गांधीवादी बातों को सुनने के लिए शायद, और रिड्यूस करने के लिए कंजम्पशन को, ये कंज्यूमर दुनिया में रिड्यूस करने का मैं तो ज्यादा आशावादी नहीं हूं, क्योंकि देख नहीं रहा है। रीयूज रिसाइकल जरूर हो सकता है, आप कोई चीज को रीयूज करिए कोई तरीके से करके। उसका मिसाल बहुत है, जो जिसमें जैसे कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी वो जिक्र करते हैं ये रीयूज रिसाइकल का। हर चीज रिसाइकल हो सकता है, हर चीज का रीयूज हो सकता है। तो हम हर चीज पर थोड़ा सा, जैसे मेटेरियल सराउंडिंग हमारा है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, चाहे हमारे घर में हो, दफ्तर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस जहां भी हो, हम थोड़ा सा उसको यूज करने के टाइम थोड़ा सोचें। आपने शायद सुना होगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, प्रधानमंत्री जी ने एक दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया है भारत के अगुवाई में, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उसमें लगा है कि जितना आप जुडिशियस कंजम्पशन के ऊपर बात किया गया
1: जी,
0: आप जो कंज्यूम करें, तो उसका स्वच्छता के साथ लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आज के तारीख में। क्योंकि ये सब दुनिया भर का चीज इस्तेमाल करके बाएं दाएं फेंकते रहिए या और भी खरीदते रहिए, तो फिर तो कचरों जाएगा कहाँ, कचरे तो रहेगा ना वहाँ। फिर उसको निपटान करने के लिए आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, उसमें भी खर्च होता है, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। रिड्यूस रियूज रिसाइकल जो कॉन्सेप्ट है, वो मुझे लग रहा है कि एक दुनिया को सस्टेन करने के लिए, ये अपना एनवायरमेंट के लिए भी बहुत काम देता है।
1: अच्छा, जैसे इस बार 1 अक्टूबर को 1 घंटा 1 दिन 1 साथ देश भर में स्वैच्छिक श्रमदान की बात है। हमारे यहाँ ना बहुत अच्छे अच्छे सार्वजनिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, समुद्र तट हैं, मंदिर परिसर हैं, और अभी तो बहुत सारे जो इस तरीके से जो धार्मिक स्थल भी बने हैं, वहां पे स्वैच्छिक श्रमदान करने की बात करी। और आजकल का युवा भी जो है इसके बारे में काफी जागरूक हुआ है। आप देखिएगा, अगर कहीं बार हम समुद्र तट पर जाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं, तो वहां पे कूड़ा फैलाने के प्रति जो प्रवृत्ति है वो कम हुई है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
0: बिल्कुल, ये तो एकदम मिसाल सेटिंग के बारे में बात हुआ कि एक मिसाल बनेगा, उसमें रिकॉर्ड्स भी बनते हैं, कई बार रिकॉर्ड्स बने हैं, इस बार होपफुली और भी बड़ा रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन एक स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस प्रोग्राम शुरू हुआ था देश में, जितना बड़े बड़े जगह है जैसे तीर्थ और या भ्रमण की जगह जो है टूरिज्म सेंटर, उसी जगह में, क्योंकि फुटफॉल, आपने जैसे अभी कहा, फुटफॉल बहुत ज्यादा रहता है और उसमें फिर कचरा की संभावना होता है, गंदगी का संभावना होता है। लेकिन आजकल लोगों को जागरूकता इतना आया है और लोगों की तरफ से, जैसे सरकार या एजेंसीज की तरफ से इतना कोशिश होता है, पहले सैनिटेशन को सामने रखा जाता है। अब कुंभ का देखिए ना, उसके पहले तो स्वच्छ कुंभ इसको बुलाया गया था। उस टाइम कुछ भी करने के पहले सफाई का, जैसे शौचालय का, ड्रेनेज का, सीवेज का, सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट जनरेट होगा, जैसे करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोगों का जो चीजें यहाँ से निकलेगा वहां से निकलेगा, उसका कैसे बंदोबस्त है, वो पहले किया जाता है। आजकल छोटे छोटे मंदिरों में भी देखेंगे जो फूल जैसे चढ़ाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, उसके बाद उसको रिसाइकिल किया जाता है, फूलों को निकाल के ड्राई फ्लावर्स या उसमें अगरबत्ती या और तरफ से जो कॉटेज इंडस्ट्री बनाया जाता है।
1: आज भी जो विभिन्न कार्यालय हैं, आज स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई है, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में भी, यहाँ पे भी स्वच्छता, सभी कर्मचारियों की स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। ऐसा माना जा सकता है कि अब काफी लोग जागरूक होंगे इसके बारे में।
0: एक प्रण है, जैसे ये स्वच्छता एक दिन की बात नहीं है और स्वच्छता कोई जन्मगत आदत नहीं है, इस आदत को क्रिएट किया जाता है, ये एजुकेशन है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आज की तारीख में खत्म नहीं हो पाएगा, हमें इसको सस्टेन करना पड़ेगा, हमें उसको साथ साथ लेके अपने से अपने बच्चों का और आगे आगे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कचरे को निकालने का प्रक्रिया भी रोज होना चाहिए, सफाई को सिखाया जाता है, अगर सिखाया जाता है तो बच्चों को, घर में सबको अपने अपने सफाई का आदत समाज में सिखाया जाएगा,
1: घर से समाज तक, समाज से जन भागीदारी, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। चलिए अक्षय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोपके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस के रूप में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmoments.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। भारत ने दिल्ली में 3 T20 मैच की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 7 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। भारत ने अभिषेक शर्मा की 34 गेंद पर 108 रन की शानदार पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 221 रन बनाए। इसके साथ ही अभिषेक भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अंजलि। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमीकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। नाइजीरिया में जहरीला पेय पदार्थ पीने से 48 की मौत, 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। और विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: कहा कि भारत की अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़ाकर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर्स तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत पर वैश्विक भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमीकॉन 2.0,
3: सेमीकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। श्री जयशंकर ने कहा कि समझौता शिक्षा और क्षमता निर्माण के लिए भारत भूटान सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे।

0: प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदानोव गेब्रेयस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत द्वारा तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक के वर्तमान और पूर्व राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे पर हाल के महीनों में अमेरिका के वार्ताकारों के साथ चर्चा हुई है। भारत ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की अपनी प्रतिबद्धता भी स्पष्ट की है। सरकार ने कहा कि वे इन घटनाक्रमों के प्रभावों से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग निकायों के साथ मिलकर काम करेगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि हुई है। नाइजीरिया के दक्षिणी ओंडो प्रांत में स्थानीय स्तर पर बनाए गए जहरीला पेय पदार्थ पीने से 48 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ओंडो पुलिस के प्रवक्ता अबामोई जिहो के अनुसार मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में 19 लोग घायल हो गए। कीव में 10 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया गया। रूस के एक ड्रोन ने तंजानिया के झंडे वाले एक कमर्शियल जहाज पर हमला किया। इसमें जहाज के कैप्टन की मौत हो गई और 3 क्रू मेंबर घायल हो गए। स्वीडन में पूर्व प्रधानमंत्री मैंडेलेना एंडरसन की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। विपक्षी मध्य वामपंथी गठबंधन ने हालिया संसदीय चुनाव में 349 में से 176 सीटें जीतकर मामूली बहुमत हासिल किया। इसके बाद प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत ने दिल्ली में 3 T20 मैच की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 5 विकेट पर 69 रन बना लिए। भारत ने अभिषेक शर्मा की 34 गेंद पर 108 रन की शानदार पारी की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 221 रन बनाए। इसके साथ ही अभिषेक भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस ने कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। नाइजीरिया में जहरीला पदार्थ पीने से 48 की मौत, 100 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती और विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार वो नहीं जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ रहे, प्यार तो वो है जो मुश्किल में भी आपका हाथ थामे रहे, जो आपकी खामोशी को समझे और बिना कहे आपके दिल का हाल जान ले, जिसके साथ सफर छोटा हो या लंबा हर रास्ता खूबसूरत लगे। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो इसी खूबसूरत साथ के नाम है।

दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं है। मोहब्बत तो उस रिश्ते को हर दिन निभाने का नाम है। किसी के अच्छे बुरे हर दौर में उसके साथ खड़े रहना, उसकी खुशी में खुश और उसके दर्द में उसका सहारा बनना, यही तो सच्ची मोहब्बत है। आइए इसी खूबसूरत एहसास के नाम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 102.1 MHz पर। शमीम है अभी आपके साथ।

दोस्तों, जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। कभी धूप आती है तो कभी सर्दी होती है, तो कभी रास्ते में बारिश भी हो जाती है। लेकिन अगर साथ चलने वाला कोई अपना हो, कोई हम सफर हो, तो सफर आसान सा लगने लगता है, क्योंकि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है किसी अपने का हमारे साथ चलना। आइए इसी सफर का एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। वो लीजिए, आपकी तरफ आ गया।

दोस्तों, किसी रिश्ते की सबसे खूबसूरत और ज़रूरी चीज़ क्या है? शायद प्यार से भी पहले भरोसा। ये विश्वास कि सामने वाला हालात बदलने पर भी नहीं बदलेगा, कि मुश्किल वक्त जब आएगा तो वो हाथ नहीं छोड़ेगा, वो साथ नहीं छोड़ेगा। और इसी भरोसे की धुन पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।

0: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating

0: Namaskar and welcome to Market Mantra. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों और शेयर बाजार की हलचल पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला. प्रकाश, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार.
1: सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ लालिमा.
0: थैंक यू अमित. यस, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन फ्लैट नोट. निफ्टी सेटल्स अबव 23,250. U.S. lawmakers pass package of sanctions targeting Russia and Iran's key economic pillars. New Delhi says India remains firmly committed to ensuring energy security and will continue to do so through diversified sourcing. And country's semiconductor ecosystem is expanding rapidly, opening new opportunities for innovation, investment and growth, says Prime Minister Narendra Modi.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा. निफ्टी 23,250 के स्तर से ऊपर दर्ज. अमरीकी कानून निर्माताओं ने रूस और ईरान के मुख्य आर्थिक आधार पर प्रहार करने के लिए प्रस्ताव पास किया. भारत ने कहा कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न स्रोतों से आपूर्ति करना जारी रखेगा. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का सेमीकंडक्टर वातावरण तेजी से मजबूती की ओर नवाचार, निवेश और विकास की नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.

0: Well, before we move any further, here's a disclaimer for our listener friends. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Right.
1: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर घरेलू शेयर बाजार में आज आम तौर पर खास बदलाव नहीं नजर आया मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स लगभग पूरे स्तर पर बना रहा जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मामूली बढ़त से बंद हुआ सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर दर्ज हुआ जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ एनएसई मिडकैप सूचकांक में 0.9% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई हालांकि कारोबार की शुरुआत में अमरीकी फेडरल रिजर्व के रुख और वैश्विक परिस्थितियों पर चिंता के कारण बाजार दबाव में नजर आए बाद में दोनों सूचकांक संभल गए और बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए
0: इन द इंडियन स्टॉक मार्केट टुडे सेंसेक्स एंडेड लार्जली अनचेंज्ड व्हाइल निफ्टी क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट सेंसेक्स डिप्ड 22 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,315 निफ्टी एडेड 53 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,271. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.9%, while the small-cap 100 index added 0.8%. Earlier, the markets opened mildly lower after a hawkish stance from the U.S. Fed Reserve and concerns over geopolitical developments. However, both the indices soon recovered and traded with gains for most of the volatile session, supported by value buying.
1: सेंसेक्स पैक की 30 में से 21 कंपनियों में आज बढ़त दर्ज हुई मजबूती वाले प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील 2.8% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2.4% और इंडिगो 2.3% की बढ़त से बंद हुए हालांकि एचडीएफसी बैंक 1.3% टाइटन 1.1% और आईसीआईसीआई बैंक 1% की गिरावट से बंद हुए
0: Let's take a look at the sectors now. Well, in the sectoral indices on the BSE, 18 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, insurance advanced 3.2%, capital goods jumped nearly 2%, and industrials gained 1.5%. In contrast, top 10 banks declined 0.7%, private banks index shed 0.6%, and BankEx dropped 0.5%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,686 companies advanced and 1,642 declined and 207 remained unchanged.
1: अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ प्रकाश किस तरह से आंकते हैं बाजार में एक तरफ तो ये भी नजर आता है कि अगर तकरीबन 2,700 कंपनियां आज अगर बीएसई की हम बात करते हैं तो वो मजबूती की तरफ थी जबकि

0: तकरीबन 1650 कंपनियों में आज दबाव नजर आया या गिरावट नजर आई, लेकिन फिर भी सेंसेक्स अपने स्तर के आसपास ही दर्ज हुआ। वैश्विक परिस्थितियों का कारण था, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो अनाउंसमेंट की है उसका असर था, या अभी भी जो अमेरिका ने नए जो टैरिफ लगाने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं ये उसका असर है?
1: नहीं, खास तौर पे आम तौर पे जो ज्यादा संभावना है कि क्या रहा होगी, किस तरह के कारण रहे होंगे कि आज की मार्केट की जो परिस्थिति है उसमें वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वही हावी रही इस पे। चूंकि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसने जो इंटरेस्ट रेट, जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है 25 बेसिस पॉइंट से, वो अपने आप में एक एक्सपेक्टेड था, वो एक तरह का डिस्काउंटेड था। 90% लोग वैसे ही उम्मीद कर रहे थे कि उसकी मीटिंग से बढ़ेंगी और तो डिस्काउंटेड था, इसलिए कोई मार्केट में बहुत बड़ा ना उछाल को अदला बदली नहीं हुई, एक तरह का एक्सपेक्टेड ही था। दूसरा, जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम थी वो तो पिछले कई दिनों में हालात तो खराब ही हुए थे, तो अब उस चलते क्योंकि मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो चुकी थी थोड़ी बहुत। ये जो फेडरल रिजर्व का डिसीजन था एक तरह का क्या होता है, मार्केट को ना अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता पसंद नहीं है, तो अंग्रेजी बोलते हैं इट्स आउट ऑफ द वे नाउ कि कम से कम मालूम पड़ गया 25 बेसिस पॉइंट है। हालांकि जैसे लालिमा जी ने वो कहा कि फेडरल रिजर्व का टोन अभी भी हॉकिश है, हॉकिश के मायने ये हैं कि अभी भी हम इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन में, अभी भी जो महंगाई है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, और महंगाई अमेरिका क्या पूरे संसार में दिक्कत हो रही है, तभी इंटरेस्ट रेट जिसको हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसके माने यही है, इन्फ्लेशन है इंटरेस्ट रेट। पिछली कार्यक्रम में मैंने कहा था कि वो जो पार्टी टाइम था ना, लोअर इंटरेस्ट रेट वाला, इजी मनी वाला, द पार्टी टाइम इज ओवर, तो उसके चलते ये सब वैश्विक परिस्थितियां जा रहे हैं जो आज के मार्केट को एक तरह का ब्रीफली बताएं तो ये है।
2: Why do we see a bit of a dichotomy? Sensex is largely unchanged, but Nifty ends on a positive note.
1: It's a funny thing. I think it should not have happened because what has happened is a new system, what is called CAS, has been introduced for over a month now in the Indian market. It's still in the trial stage, and it throws this kind of surprises now and then. And then finally, when the fine tuning is done, you find a different thing. But it is quite confusing and the traders are concerned about it. They have conveyed their concerns to the market regulator SEBI, and let's hope this is sorted out.
2: For people who want to invest in the stock markets, is this the right time? Because for a change we see, as they say, no news is good news, or should we wait and watch? Because as you said, markets don't like uncertainty. Now it's the certainty is that there is, you know, uncertainty in a way.
1: I'll tell you what, when it comes to Indian investors, there's one channel which always remains open now, what is called systematic investment plan, what is SIP to so to speak,
2: right,
1: which is done through mutual fund. Something like 30,000 crores of rupees is mopped up every month through SIP. And a lot of these professionals, young professionals, are committed to that. It is only because of that commitment that mutual funds or DIIs are able to mobilize that kind of amount. And this is the amount which is providing stability to our market.
0: तो प्रकाश, क्या इसके क्या ये मायने माना जाए कि भारतीय जनमानस या भारत का जो घरेलू निवेशक है उसको अपने बाजार की क्षमताओं पर, उसको अपने बाजार की स्थिरता पर पूरा भरोसा है, बाजार अगर गिरता है या उठता है, लेकिन वो जो निवेशक है जो सतत निवेश कर रहा है, निरंतर निवेश कर रहा है, वो छोटी छोटी मात्रा में ही सही, वो निरंतर निवेश कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसका निवेश सुरक्षित है और उसको उस निवेश पर एक निश्चित आय जरूर होगी।
1: देखिए क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो हमारे मुल्क में है वो बड़ी मैच्योर हो गई। अब हमारे यहाँ इतनी हंड्रेड्स ऑफ स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की, और इनकी एक संस्था है एमफी बोलते हैं जिसको, उन्होंने एक नैरेटिव चलाया हुआ है एड कैंपेन बड़े सालों से जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन है उसमें जैसी जैसी परिस्थितियां बनती हैं उस हिसाब से वो लोग अपना टोन एंड टेनर चेंज करते हैं, तो वो दे हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू सेंड दिस मैसेज कि भाई मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म टिकना पड़ेगा।
0: वहां पे मतलब पेशेवर लोग हैं जो प्रोफेशनल
1: जो आपको

0: नजर आई है, क्या ये माना जाए? जो सेंसेक्स पैक तो चूंकि छोटा है, और अगर निफ्टी 50 की बात करें वहां पे भी उतनी ज्यादा कंपनियों का समावेश नहीं है, तो ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप है जो चूंकि बड़ा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां पे लोगों की उम्मीदें हैं और वहां पे बेहतर प्रदर्शन की भी उम्मीद है, इसलिए उसमें तेजी हुई।
1: देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप और वर्सेस लार्ज कैप जिसको बोलते हैं, जो बड़ी जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है, जो टॉप कंपनीज है 100 टॉप कंपनी लार्ज कैप्स में आती है, पिछले दिनों में कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने बड़ी अच्छी रिटर्न दी है, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो इन पे स्पेशलाइज करते हैं उन्होंने भी अच्छी रिटर्न दी है। कारण यह है कि एक तो जो ग्रोथ होता है, जो ऑलरेडी कंपनी बड़ी लार्ज हो चुकी है उसकी ग्रोथ रेट उतनी अच्छी कई बार नहीं हो पाती क्योंकि बेस बहुत ज्यादा हाई हो चुका होता है। दूसरी बात यह है कि स्मॉल कैप जो कंपनीज है अभी ग्रोथ उसमें एपिटाइट है, भूख है उसमें, आगे बढ़ने की भूख है, और वो फिर एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है उसमें, तो जैसी सिचुएशन आती है एक लेगेसी बेस इश्यूज नहीं रहते उसमें, एंड दैट्स द रीजन। और एक और रीजन है कि जो FIIs हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो मोस्टली देवर इन्वेस्टेड इन द लार्ज कैप्स, सो वेन देवर एग्जिटिंग फ्रॉम द इंडियन मार्केट and the money was flowing out of the large caps, small and caps were not that much affected. So by the FIIs outflows, ये सारे कारण थे जिसकी वजह से mid और small caps में आपको better performance दिखी।
0: तो ये मानने के भी हमारे पास पर्याप्त कारण है कि भारत की जो मध्यम दर्जे की कंपनियां हैं उसका प्रदर्शन निरंतर मजबूत और सतत बना हुआ है, एक स्टेडी बना हुआ है।
1: हाँ अच्छी बात है, लेकिन उनमें अब हो क्या रहा है अमित जी कि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर कई बारी ऐसे रूल्स रेगुलेशन भी हैं, जो मान लीजिए जो म्यूचुअल फंड के जो स्मॉल कैप्स के जो फंड्स हैं तो उनको बाय फोर्स दे हैव टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स, तो स्मॉल कैप्स में लोग बेट कुछ ज्यादा ही लेने लग पड़े, तो स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा है तो फिर रिस्क भी ज्यादा थोड़े हो जाते हैं कई बार, तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत वहां है।
2: और शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है स्मॉल कैप?
1: नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी ठीक नहीं है आज की डेट में, यू नीड टू बी पेशेंट एज आई सेड अर्लियर इन मार्केट, इन द मार्केट गेम टुडे यू नीड टू बी पेशेंट। अगर आपको अब जैसे अमित जी ने बोला कि म्यूचुअल फंड का पिछले 2 साल में समस्या रही है, तो आपको 3 साल की बैलेंस शीट दिखेगी तो अच्छी दिखेगी, लेकिन 2 साल में समस्या है, तो म्यूचुअल फंड के लिए चैलेंज है कि मेरे पे ये विश्वास करे जा रहे हैं, तो मुझे अब मेरे लिए चैलेंज है कि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, तो म्यूचुअल फंड के लिए एक चैलेंज है अपने आप में, यही टेस्टिंग टाइम है सबका,
0: उनको बेहतर प्रदर्शन भी करना है साथ ही साथ निवेशकों के भरोसे को भी पूरा करना
1: है, रखना है।
0: उसके बावजूद अगर हमारा बाजार तकरीबन, अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, लगभग 75,000 के स्तर के आसपास है और निफ्टी अगर ये है, तो इसमें कितनी उम्मीदें आपको भी नजर आती हैं या कितनी संभावनाएं नजर आती हैं? आने वाला कुछ समय हमारा त्योहारी सीजन भी है
1: जी, इसमें निफ्टी का देखे तो एक दायरा ऐसा बना हुआ है
0: जी,
1: अभी हम दायरे के लोअर एंड पे हैं, वो तब अगर ये थोड़ी मिडिल ईस्ट में शांति थोड़ी स्थापित हो जाए,
0: वैश्विक स्थिति से अगर स्पार्क नहीं मिलेगा तो भारतीय बाजारों में तेजी का दौर देखना फिलहाल
1: नहीं, नहीं वो 2-3 चीजें चाहिए जो अंग्रेजी बोलते हैं विच मस्ट फॉल इन प्लेस, एक तो ये मिडिल ईस्ट की शांति चाहिए क्योंकि तेल का भाव बहुत खतरनाक लेवल पे चढ़ रहा है
0: जी।
1: अभी फॉर्चुनेटली थोड़ा आज गिरा है, 100 से तो ऊपर ही रहता है अभी कुछ दिनों में, तो समस्या तो है
0: जी,
1: और इन सब के चलते 2-3 चीजें और FIIs को वापस आना पड़ेगा,
0: चलिए
1: तो उम्मीद करते हैं ये सब चीजें हो तो फिर मार्केट बढ़ेगी,
2: लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड।
0: चलिए नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजार पर। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.3% की बढ़त से बंद हुआ, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली गिरावट से बंद हुआ।
2: ऑलराइट, बैक होम, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी चेयरमैन तोहिन कांता पांडे टुडे सेड द सिक्योरिटीज मार्केट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग इंडियाज ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल at different stages of an asset's life cycle. Addressing the National Bank for Financing Infrastructure and Development, NABFID, Annual Infrastructure Conclave 2026, Mr. Pandey said, infrastructure requires capital that is large in scale, long-term and patient in nature. The securities market, he added, can complement government expenditure and bank financing by bringing together household savings, institutional capital for

0: capital and other long-term pool of funds. Mr. Pandey highlighted that widening participation in REITs and InvITs, continuing involvement of alternative investment funds, deepening of corporate bond market and strengthening of municipal finance as specific areas where further progress can deepen this ecosystem. How do you interpret this, Prakashji, Mr. Pandey, highlighting the participation of REITs and InvITs? How do you describe that?
1: Well, what SEBI chief is stating is specifically relevant, and he's focusing on the fund requirement for the infrastructure sector. See, good old days you had this development financial institutions. Now, as he rightly said, if you have, suppose you have to lay a power grid, you have to lay set up a irrigation project, you have all those big infrastructure projects need long term finances, and it is beyond the realm of the banks to provide that kind of financial support. It is through this new kind of a mature market, since our market has matured now, so we have the instruments like InvITs, which means, what is InvIT? InvIT is a kind of a pool of funds raised from the investors, and which finds its way into infrastructure development. And likewise, you have municipal bonds, which means rather than depending on the budgetary kind of a support, the municipal, the efficient local urban local bodies can raise funds directly from public, from institutions at a commercial interest rate.
0: Right.
1: And they are called municipal bonds. And invest in, say, sewage plant or whatever is required.
0: In infrastructure.
1: So these are the these are the signs of a maturing financial market.
0: And India needs to invest a lot in infrastructure. It is investing also.
1: Definitely.
0: We have a robust infrastructure.
1: No, we need to do it. We have to continue for several years.
0: Yes, yes. Well, in United States, the House of Representatives has passed a broad package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. The move comes as lawmakers look to deprive President Vladimir Putin of the financial resources needed to wage the war against Ukraine. The bill is named after the late Senator Lindsey Graham of South Carolina, who spent more than a year negotiating it. The measure was approved in a 262-159 vote. The measure sanctions Russian officials, banks, and a shadow fleet of tankers that keeps Russian energy moving. It also directs Trump to impose up to 100% tariffs on the top five importers of Russian oil or natural gas, with an exception for countries that import less than 15% of Russia's natural gas exports and have taken significant steps to reduce those imports.
2: भारत अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है. विविध स्रोतों के माध्यम से बदलते बाजार के साथ चलना जरूरी है. अमरीकी कांग्रेस में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले अधिनियम के पारित होने का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मामले पर आगे के घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है. मंत्रालय के अनुसार हाल के महीनों में विभिन्न अमरीकी वार्ताकारों के साथ साथ इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय चर्चा हुई है. द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर इसके संभावित प्रभावों को भारतीय पक्ष ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है. मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष ने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का अपना दृढ़ संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है. बहुत संक्षेप में इन सब चीजों पे भारत की स्थिति, सरकार नजर बनाए हुए है और अपनी अपनी स्थिति को भी मजबूत करने पे लगी हुई है.
1: ये आप जब ये नहीं, तो भारत सरकार ने तो बोल दिया ना कि हम तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम कमिटेड हैं और अपनी चॉइस जो है हम अपनी खुद चूज करेंगे.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है. नई दिल्ली की यशोभूमि में आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा उत्पादन स्थल बनने के लिए सभी कदम उठा रहा है. उन्होंने बताया कि भारत का सेमीकंडक्टर सिस्टम तेजी से बढ़ रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के लिए नई संभावनाएं पैदा कर रहा है.
3: इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था. जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे. पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीज पर चर्चा शुरू की. कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की. और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर्स तक

0: पहुंचना शुरू हुई।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि अब नींव रखी जा चुकी है और हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर 2.0 के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
2: So the approach in Semicon 2.0 will be to promote the design companies in a very big way, both the startups as well as the large companies. Large companies would like to get into semiconductor design because the scope is huge now, the opportunities are huge. Startups can bring in innovative solutions which will be liked by the market.
1: प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में, जो प्रधानमंत्री की मंशा है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की जो हमारी इच्छाएं हैं कि सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत को अग्रणी बनाया जाए, कितना सहमत और कितना जरूरी है?
3: बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एआई की सारी रेवोल्यूशन है वो सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पे तो डिपेंड कर रही है, तो पूरी वैल्यू चेन का बहुत क्रिटिकल पार्ट है। और अगर हमने एआई वैल्यू चेन का हिस्सा बनना है तो अगर हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
1: और हाल ही के दिनों में इनकी बहुत तेजी से डिमांड भी बढ़ी है और इसकी दामों में भी बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है।
4: Right. Look at the oil prices now. We've talked a lot about them. Now let's get down to it. Global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 3.4% down at $102.17 per barrel in the intraday trade at a time of writing this report. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 2.7% lower at $99.69 per
1: नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर। घरेलू सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 0.3% की गिरावट से 151,849 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.7% के नुकसान से 229,642 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। प्रकाश, बहुत संक्षेप में अगर मैं चाहूं, डॉलर की स्थिति को देखते हुए और सोने की स्थिति को देखते हुए क्या नजर आता है कि अभी डॉलर और सोने का जो समन्वय है वो कितना और किस दिशा में चलता हुआ नजर आएगा?
3: ये इनकी कशमकश जारी रहती है। डॉलर भी एक अपने आप में एसेट्स है, सोना भी एसेट्स है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अभी सोना जो है एक स्थिरता की तरफ मुझे नजर आ रहा है।
1: चलिए, प्रकाश कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
4: जी, इन इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स एंड्स ऑन अ फ्लैट नोट, निफ्टी सेटल्स अबव 23,250। यूएस लॉ मेकर्स पास पैकेज ऑफ सैंक्शंस टारगेटिंग रशिया एंड ईरान्स की इकोनॉमिक पिलर्स। न्यू दिल्ली सेज इंडिया रिमेन्स फर्मली कमिटेड टू इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड विल कंटिन्यू टू डू सो थ्रू डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग। एंड कंट्रीज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, ओपनिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वेल फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। दिस इज माय सेल्फ लालिमा अनेजा डैंग एंड माय को-एंकर अमित गोयल साइनिंग ऑफ। नमस्कार।
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह

खास स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों, कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आज यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की

0: 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने बताया कि कंपनी ने भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक वैध रहेगा। इन दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने अंतरिम आदेश में दोनों गुटों को आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से अलग अलग चिन्ह चुनने और नया पार्टी नाम रखने को कहा है। दोनों गुटों को सुबह तक 3 पसंदीदा नाम और चुनाव चिन्ह बताने होंगे। आयोग ने कहा कि अरूप रॉय और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ रूस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल मॉस्को में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा जनरल सेठ ने रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से 20 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पुणे जिले के लोनावाला में कैवल्य धाम के गोवर्धन दास सेक्सरिया योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद वे पुणे के ऐतिहासिक नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले पुणे महोत्सव में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे T20 मैच में 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 108 और संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhumi in New Delhi yesterday.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है रजनीगंधा, आवाज है लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा। रात के इस पहर में न जाने कितने घरों में आखिरी कप चाय अभी बाकी होगी। कहीं कोई बंद किताब करके उसे उठाएगा, कहीं कोई दिन भर की थकान के साथ बालकनी में आएगा। किसी घर में दो लोग बिना किसी खास बात के साथ बैठकर चाय पी रहे होंगे, और कहीं कोई अकेला होगा जिसे चाय से ज्यादा किसी आवाज की जरूरत होगी। अजीब है ना, एक ही शहर में रात सबके हिस्से अलग अलग कहानी लिखती है। किसी के लिए ये रात आराम है, किसी के लिए याद, और किसी के लिए अगले दिन की तैयारी। और रेडियो पर बजता कोई पुराना गीत इन सबको एक ही पल के लिए एक ही दुनिया में लेकर आता है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

कुछ गीतों की उम्र जो होती है ना, वो हमारी उम्र से भी बहुत लंबी होती है। वे बरसों बाद भी बजें तो कमरे में वही पुराना मौसम उतर आता है। आज रात ऐसा ही कोई गीत सुनते हुए शायद आपको अपना कॉलेज याद आ जाए, या किसी दोस्त की हंसी याद आ जाए, या किसी स्टेशन पर छूटी हुई छोटी सी मुलाकात, या वो रास्ता जिस पर कभी रोज हम चला करते थे साथ साथ। चेहरे बदल गए, शहर बदल गए, लेकिन गीत अपनी जगह ही खड़ा रहा। जैसे किसी पुराने परिचित ने अचानक भीड़ में आपका नाम पुकार दिया हो और आपने पीछे पलटकर अचानक देखा हो और सामने वही परिचित चेहरा नजर आ जाए। रात के रेडियो की खूबसूरती शायद यही है कि गीत समाप्त हो जाता है, पर उससे जुड़ी हुई यादों का सफर बहुत देर तक हमारे मन के अंदर चलता रहता है। तो सुनते हैं एक ऐसा ही गीत और फिर करेंगे आपसे आगे की बातें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आपके साथ हूं मैं जयती। अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है होली आई रे, आवाज है मुकेश की।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज है अमित कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात में देर से घर लौटने वाले जानते हैं कि रात के साथ साथ शहर का चेहरा कितना बदल जाता है। दिन में जिन सड़कों पर भीड़ होती है, वहीं रात में पीली रोशनियां साथ चलती हैं। कहीं चाय की दुकान अब भी खुली होगी, कहीं कोई ऊँगते हुए पहरा दे रहा होगा, किसी टैक्सी में धीमा संगीत बज रहा होगा, कोई अपने घर का दरवाजा खुलते ही सारी थकन बाहर छोड़कर घर के अंदर जाएगा। घर पहुंचने की वो छोटी सी खुशी शायद दुनिया की सबसे सादी खुशियों में से एक है। एक परिचित कमरा, एक ग्लास पानी और किसी अपने की आवाज, बस इतना ही चाहिए होता है कभी कभी पूरे दिन को मुकम्मल करने के लिए। अगला गीत, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी, आवाज है किशोर कुमार की।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि इससे थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच

0: ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक वैध रहेगा। इन दोनों में से जो अवधि पहले पूरी होगी पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त हो जाएगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के दोनों पक्षों को पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने अंतरिम आदेश में दोनों पक्षों को आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से अलग अलग चिन्ह चुनने और नया पार्टी नाम रखने को कहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वो 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने आज उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event yesterday, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said investment commitments worth around 1 lakh crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. He

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में पहला गीत महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फिल्म का नाम है बीन का जादू।

अच्छा, अब एक ऐसी बात याद दिलाती हूँ जो हम सबके साथ कभी ना कभी जरूर हुई होगी। कभी ऐसा होता है ना कि जब हम अपनी कोई पुरानी अलमारी अचानक खोलते हैं और उसमें बहुत सारे पुराने कपड़े मिलते हैं हमें, और पता है वो कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, उन कपड़ों में रची बसी होती हैं हमारी सुंदर सुंदर यादें। एक पुराना रुमाल, किसी समारोह का बचा हुआ कोई कार्ड, और जेब में रखा हुआ कोई पेन जो अब चलता नहीं, या फिर जेब में रखा हुआ भूला हुआ कोई कागज। हर चीज के साथ कोई ना कोई चेहरा, कोई ना कोई याद जुड़ी होती है। हम सामान संभालते संभालते अपना पूरा दिन संभाल रहे होते हैं, बीता हुआ समय संभाल रहे होते हैं, और फिर एक दिन वही चीज जब हमारे हाथ में आती है तो हम मुस्कुरा देते हैं। न दुख, न शिकायत, बस एक मीठी सी पहचान कि हम कभी ऐसे भी हुआ करते थे। रात ऐसी मुलाकातों के लिए बहुत सुंदर सी जगह बनाती है, बहुत सारा समय देती है। जब हम अपनी यादों के जमाने में लौट पाते हैं और बहुत कुछ बीते हुए वक्त के साथ जीने लग जाते हैं। सुन रहे हैं आप गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की,

कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन की जो सबसे प्यारी कहानी होती है, या यूं कहें कि बहुत ढेर सारी छोटी छोटी सुंदर सुंदर कहानियां जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर अचानक से मिल गई कोई मुस्कुराहट, पुस्तकालय में पूछी गई एक छोटी सी बात, रास्ते में किसी अजनबी ने पकड़कर दिया, रास्ते में कि कोई अजनबी मिला और उसने क्या किया कि सफर में आप जा रहे हो, आपको उसने रास्ता दे दिया अचानक से, या फिर किसी अजनबी ने आपको पकड़कर कुछ प्यारी सी कोई बात कह दी हो, या फिर कहीं हम चलते चलते किसी से टकरा गए हों और उस टकराहट के बाद एक छोटी सी प्यारी सी कोई बात जन्म ले ली हो। मुलाकात तो बस दो ही मिनट की होती है, लेकिन उसका असर बरसों तक हमारे दिलों में पलता रहता है। हम अक्सर बड़ी घटनाओं को याद रखते हैं, जबकि दिल को छूकर गुजरने वाली जो बातें होती हैं वो बहुत मामूली सी बात होती है। यूं कहें तो अक्सर हमारा ध्यान उन बातों पर तब तक नहीं जाता जब तक हम खुद उन बातों से होकर नहीं गुजरते। कितनी मामूली सी होती है एक विनम्र शब्द, एक सच्ची मुस्कुराहट, या अनजान का सहज अपनापन। शायद यही बातें इस दुनिया को रहने लायक बनाती हैं, क्योंकि हर दिन में कहीं ना कहीं कोई अनजान व्यक्ति हमारी कहानी का एक सुंदर सा छोटा सा वाक्य बन जाता है और हमारे दिल में घर कर लेता है। सुन रहे हैं आप गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार और उषा खन्ना की, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है बनफूल। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल थिम्फू में भूटान नरेश जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ शंकर ने कहा, भूटान और भारत के बीच विशेष मित्रता को और मजबूत करने के लिए भूटान नरेश का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक वैध रहेगा। अमरीका ने ईरान के राष्ट्रपति मजूस पेजेश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची सहित वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों को अगले सप्ताह न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए वीजा मंजूर किया है। अमरीकी विदेश विभाग के अनुसार ईरान के मुख्य प्रतिनिधिमंडल और जरूरी कर्मचारियों को भी वीजा दिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमरीका और ईरान के बीच 6 महीने से अधिक समय से संघर्ष जारी है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह आयोग आवंटित करेगा। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पुणे जिले के लोनावला में कैवल्य धाम के गोवर्धन दास सेक्सरिया योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा 9 और 10 सितंबर को देश भर के 272 शहरों में 454 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को तीसरे T20 मैच में 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 221 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 108, संजू सैमसन ने 50 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 14 ओवर 1 गेंद में 94 रन पर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है दो रास्ते, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई और साथ हूं मैं जयती। और अब कुछ बातें करते हैं, जब इतनी सारी बातें हमने कर ली तो कुछ बातें रविवार की। कुछ घरों में रविवार आज भी देर तक सोने और साथ खाना खाने का नाम है। सुबह की बनी चाय दोपहर तक चलती है, अखबार आधा पढ़ा हुआ रखा रहता है, रसोई से आती खुशबू सबको धीरे धीरे एक ही जगह पर खींच कर ले आती है। किसी को बाजार जाना है तो किसी को कपड़े धोना है, किसी को बस आराम करना है और किसी को बातों बातों में पुराने किस्से निकालना है। और वही कहानी तीसरी बार भी हंसा देती है। तीसरी क्या, हम तो कहते हैं चौथी पांचवी छठी सातवीं, जितनी बार भी सुनो वो किस्से हर बार आप हंसेंगे। जिंदगी शायद ऐसे ही छोटे छोटे किस्सों से, छोटे छोटे दृश्यों से बनती चली जाती है। उनकी कोई

और आज जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें कि हमारी पुरानी पुरानी यादें निकल कर आ रही हैं, तो ऐसे में वो बात हम कैसे भूल सकते हैं। जरा सोचिए, जब हम घर से कहीं बाहर जा रहे होते थे और स्टेशन हमें छोड़ने के लिए हमारे अपने साथ होते थे, स्टेशन पर विदाई हमेशा थोड़ी जल्दी में होती है। आज भी ट्रेन खड़ी रहती थी और घड़ी आगे बढ़ती रहती थी, और कहने को उस वक्त कितना कुछ बचा रहता था। कोई बार बार वही बात पूछता था, सामान रख लिया, जबकि असली सवाल कुछ और होता था। ट्रेन चलती थी, हाथ हिलते थे और वो चेहरे धीरे धीरे करके पीछे छूटते जाते थे, और फिर आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ता था। कानों में बार बार यही सुनाई देता था, पहुंचकर जरूर बताना, बस चार शब्द, लेकिन उनमें पूरा अपनापन समाया होता था। रिश्ते शायद बड़े वादों से कम और ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से ज्यादा पहचाने जाते थे, और अगर हम कोशिश करें ना, तो हम ये वाले दिन अब भी साथ ला सकते हैं। सुन रहे हैं आप रात सुरमई। अगला गीत फिल्म का नाम है हीर रांझा, आवाज है मोहम्मद रफी की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई

मैं आपके साथ हूं, मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सफर, आवाज है मुकेश की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात का जो समय होता है ना, रात के समय में शहर अपने दूसरे रूप में जाग रहा होता है। अगर आप इस वक्त सड़क पर निकलेंगे तो शहर आपको बिल्कुल अलग ही नजर आएगा, बिल्कुल नया लगेगा। बंद दुकानों के शटर, दूर तक जाती हुई सड़क और किसी पेड़ के नीचे सोते हुए जानवर और चौराहे पर अब भी जलती कभी लाल और कभी हरी बत्ती। दिन का शोर कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन शहर पूरी तरह सोया हुआ भी नहीं रहता। कहीं कोई जाग रहा है तो किसी घर में किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही है, किसी ऑफिस में कोई अपनी आखिरी फाइल पूरी कर रहा होता होगा। हर रोशनी के पीछे एक कहानी है, हर जागती आंख के पीछे एक वजह, और हम अपने छोटे से रेडियो के साथ इस तरह की अनगिनत कहानियों के बीच ये रात मिलकर साझा कर रहे हैं। अगला गीत फिल्म का नाम है जवानी दीवानी, आवाज है आशा भोसले और किशोर कुमार की।

और अब वक्त आ चला है आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विकास हो रहा है, इससे नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। श्री चौहान ने तेलंगाना के थिम्पापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावाला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति पुणे जिले के लोनावाला में कैवल्य धाम के गोवर्धन दास सेक्सरिया योग और सांस्कृतिक संश्लेषण महाविद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड के ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह आयोग भी आवंटित करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज से शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे करोगी एथलेटिक पार्क में होगा। दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला होगा। एशियाई खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से आयोजित की जा रही है। ये टूर्नामेंट शिलांग के जवाहर से शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

3:11 हुए हैं दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ड्यूएट प्रोग्राम जिसे आप और हम कहते हैं हमराही। और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कभी रास्ते लंबे हो जाते हैं, कभी मंजिल दूर नजर आती है, मगर जब दिल में किसी अपने का साथ हो तो हर सफर आसान और हर राह हसीन लगती है। किसी का इंतजार हो तो पल पल सदियों सा लगता है, और जब वही हम सफर लौटाए तो जैसे सूनी राहों पर बाहर उतर आती है। तो आइए आज इसी इंतजार, इसी चाहत और इसी मीठी पुकार को एक सदाबहार नगमे में महसूस करते हैं। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत ऊंचे लोक फिल्म से।

कभी कभी मोहब्बत को कहने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती, एक करीबी ही काफ़ी होती है। जब किसी ख़ास इंसान का साथ मिल जाए तो जैसे दुनिया की सारी बेचैनियाँ थम सी जाती हैं, दिल को एक सुकून मिलता है और हर धड़कन में प्यार की एक नई कहानी लिख जाती है। वो पल जब दो दिल एक दूसरे के और करीब आते हैं, वक्त जैसे वहीं ठहर जाता है और खामोशी भी मोहब्बत की जुबान बन जाती है। तो आइए इसी खूबसूरत एहसास को संगीत में महसूस करते हैं। फिल्म वक्त का ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

होंठों पे तो ना थी, दिल में हाँ थी। कोई दिल ना देगा अनजान अनाड़े को, हमने दे दिया तो मैंना मानो एहसान किया। ये लाइनें सिर्फ गाना नहीं, एक जमाने का मिजाज है। और जहाँ इनकार भी अदा से होता था और इकरार भी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस गीत की जिसको हमने लिया है फिल्म जब जब फूल खिले से। और इस गीत को आवाज़ें दी थी मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी।

आंखों में मोहब्बत हो, होठों पर खामोशी हो और दिल में किसी का नाम, फिर भला ये राज कब तक राज रहेगा। कभी कभी नजरें झुकाकर, कभी मुस्कुराकर, कभी बातों को बदलकर आप चाहे कितना छुपा लें, मगर दिल की धड़कनें तो चुगली कर ही देती हैं। तो चलिए इसी मीठी सी शिकायत और नटखट मोहब्बत के साथ सुनते हैं फिल्म नीला आकाश का ये बेहद खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

0: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, शकील बदायूं की तहरीर में ताजमहल सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं बल्कि इश्क की दास्तान है जो सारी दुनिया को मोहम्मद की निशानी दे गई। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐसा ही गीत जिसे हमने लिया है लीडर फिल्म से, और इस गीत को आप अपनी मखमली आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

दोस्तों 3:36 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर इस समय मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमराही। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और गीतों की। कभी कभी जिंदगी को खुशियों की लंबी फहरिस्त नहीं चाहिए होती। जी बिल्कुल सही बात है कि खुशियों के लिए जिंदगी में बहुत ज़्यादा हमें डिमांड नहीं रखनी चाहिए। बस एक ऐसा हमसफ़र चाहिए होता है जिसकी मौजूदगी से हर पल थोड़ा और जो वक्त है वो खूबसूरत लगने लगे। कहते हैं साथ सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, साथ तो वो एहसास है जो दूर रहकर भी दिल के करीब बना रहे। तो आइए इसी प्यारे एहसास को महसूस करते हैं एक खूबसूरत नगमे के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म कांच की गुड़िया से। आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की।

दोस्तों, मोहब्बत भी तो एक ऐसा ही राज है जिसे आंखें कह देती हैं, होंठ छुपा लेते हैं और दिल उम्र भर संभाल कर रखता है। कभी किसी की याद को दिल में यूं ही छुपा लीजिए कि ज़माना पूछता रह जाए और दिल बस मुस्कुराता रहे, क्योंकि हर प्यार का इजहार ज़रूरी नहीं होता और कुछ एहसास खामोशी में ही सबसे खूबसूरत लगते हैं। तो आइए इसी खामोश मोहब्बत के नाम सुनते हैं फिल्म ममता का ये सदाबहार गीत, जिसे गाया है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने।

छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लौ दिएगी। इस खूबसूरत से गीत को अभी आप सुन रहे थे ममता फिल्म से, आवाज़ें थी हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की। दोस्तों, कभी किसी की एक नज़र दिल की सारी दुनिया ही बदल देती है। धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, लफ्ज ठहर जाते हैं और दिल बस यही कहता है ज़रा रुकिए, पहले इस खूबसूरत एहसास को महसूस तो कर लूँ। इश्क शायद इसी को कहते हैं जहाँ सामने वाला कुछ कहे बिना भी दिल बहुत कुछ समझ लेता है। तो आइए इसी मासूम सी मोहब्बत और मीठी सी बेखुदी में डूबते हैं। फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं का गीत सुनते हैं। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की।

बहरहाल अभी इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए थोड़ा समय बाकी है, इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप कहीं मत जाइएगा, बस बने रहिए मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ कार्यक्रम हमराही में। कुछ रिश्ते लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, बस दिल में उतर जाते हैं और फिर हर धड़कन में अप

जगह बना लेते हैं। किसी को चाहना आसान है, मगर किसी को दिल से चाहना, ये वो एहसास है जिसमें कोई अपना आपकी मुस्कान की वजह, आपकी खामोशी की आवाज़ और आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। तो आइए इसे सच्चे और प्यारे एहसास को महसूस करते हैं फिल्म चांद और सूरज के इस गीत में, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने।

कहते हैं मोहब्बत भी बड़ी अजीब सी है, लफ्ज कम पड़ जाते हैं मगर एहसास भूलते रहते हैं, और जब हुस्न अदा और संगीत एक साथ मिल जाएं तो एक खूबसूरत नगमा जन्म लेता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं फिल्म गुमनाम के इस गीत की, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और शारदा ने।

और चलते चलते बस यही कहेंगे कि कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, उनमें चांदनी खुली होती है, हवाओं में कोई मीठी मीठी सी बात होती है, और साथ हो कोई ख़ास हमसफ़र तो हर पल एक खूबसूरत याद बन जाता है। तो कार्यक्रम के आखिर में आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया फिल्म एन इवनिंग इन पैरिस का ये गीत, और मुझे यानी अर्चना बिसारिया को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री चौहान ने तेलंगाना के थिम्पापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोड मैप तैयार किया है। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे 20 सितंबर तक महाराष्ट्र में रहेंगे। इसके दौरान वे मुंबई, लोनावला और पुणे में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने बताया कि सम्मेलन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों के लिए आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT 40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को पार्टी के नाम और फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल से रोक दिया है। आयोग ने दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने लिए 3-3 नाम और मुक्त चुनाव चिन्हों के 3-3 विकल्प देने को कहा है। इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह आयोग आवंटित करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने लद्दाख सरकार के सहयोग से 1 महीने का प्रत्यक्ष शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। ये कार्यक्रम लद्दाख के सरकारी स्कूलों में कक्षा 12, 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए है। CBSE ने बताया कि यह कार्यक्रम 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लेह, नुब्रा, जानसर, कारगिल, द्रास, चांगथांग, सांकू,

भूटान और अन्य उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विद्यालय शामिल हैं। CBSE ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कक्षा आधारित सहायता के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारी को मजबूत करना है। एशियाई खेल 2026 में भारत का अभियान आज से शुरू होगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे करोगी एथलेटिक पार्क में होगा। दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला होगा। एशियाई खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। मौसम विभाग ने आज बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार दोस्तों, सुबह की सुनहरी किरणों के साथ यादों की मीठी खुशबू और संगीत की प्यारी धुनों को लेकर हाजिर हूं मैं आपके अपने कार्यक्रम अरुणिमा में। 4:11:05 हुए हैं और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर। तो कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और बस यही कहती हूँ मैं, यानी आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया की, कल चाहे जैसा भी था आज को खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में है।

ज़िंदगी में गम आएंगे, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन हर मुश्किल के सामने रुक जाना ही तो ज़िंदगी नहीं है। कभी कभी ज़रूरी होता है कि कुछ देर के लिए परेशानियों को किनारे रखें, चेहरे पर मुस्कान लाएं और खुद से कहें, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले पल को ज़रूर बेहतर बना सकते हैं।

0: खुश रहना समस्याओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें हिम्मत के साथ सामना करने की ताकत जुटाना है। तो आज अपने दिल से कहिए, थोड़ा गम छोड़िए, जिंदगी को महसूस कीजिए, क्योंकि हर नया दिन अपने साथ एक नई उम्मीद भी लेकर आता है।
1: 10 दिन बीत गए बैजू, मैं तो थक गई चलते चलते।
2: अरे सावली, काबुल के गुलजार खान कह गए हैं कि तन हारो, मन हारो, धन दौलत हारो, खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं।
1: बैजू, चरिंदे जागे, परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
2: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो। अरे हम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना मुस्कुराना, एक जरा सैंपल आपने थोड़ा सा।

जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी कदम कदम पर मुश्किलें मिलती हैं, लेकिन हमारी असली ताकत इस बात में है कि हम उस हालात का सामना कैसे करते हैं। हर परेशानी के बीच अगर हम उम्मीद की एक छोटी सी किरण बचाकर रख लें तो अंधेरा भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए आज अपने दिल से कहिए, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करें, जो बदला जा सकता है उसके लिए कोशिश करें, और जो पल आज मिला है उसे मुस्कुरा कर जिए, क्योंकि मुस्कान सिर्फ खुशी की निशानी नहीं, कई बार यही हमारी सबसे बड़ी पहचान होती है।

जिंदगी में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, खुद से नजरें चुरा कर जीना कोई रास्ता नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अपनी कमियों से घबराइए मत, अपनी गलतियों से शर्माइए मत, क्योंकि यही अनुभव हमें कल से बेहतर इंसान बनाते हैं। दुनिया क्या कहेगी ये सोचते सोचते कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ही आवाज़ सुनना भूल जाए। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखिए, अपने कदमों पर विश्वास रखिए और पूरे आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी छुपकर नहीं, खुलकर हिम्मत से और मुस्कुराकर जीने का नाम है।

दोस्तों, आप इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अरुणिमा मेरे यानी अर्चना बिसारिया के साथ। दूसरों के लिए यानी दूसरों के किए हुए व्यवहार को अपनी खुशी और अपनी पहचान पर कभी हावी मत होने दीजिए। जो बीत गया उससे सीख रखिए, मगर वहीं ठहरिए मत। अपने भीतर इतनी मजबूती रखिए कि कुछ मुश्किलें आएंगी तो आप कह सकेंगे मैं टूटूंगा नहीं या मैं टूटूंगी नहीं, मैं इससे सीख कर और मजबूत होकर आगे कदम बढ़ाऊंगा।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ गम ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले सहना मुश्किल लगता है, लेकिन जब कोई अपना पास बैठकर कह दे तुम अकेले नहीं हो, तो वही दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है। याद रखिए, मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि हम हर परेशानी अकेले झेले। कभी किसी का हाथ थामना, किसी की बात सुनना और किसी के दर्द में उसके साथ खड़ा होना भी हिम्मत है। और जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो मुश्किल रास्ते भी थोड़े आसान लगने लगते हैं।

एक जिंदगी कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। कुछ पल याद बन जाते हैं, कुछ अनुभव हमें बदल जाते हैं और कुछ अधूरे सपने दिल में रह जाते हैं। लेकिन गुजरा हुआ वक्त सिर्फ पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं होता, वो हमें सिखाता है कि आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाया जाए।

दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आसान सवाल नहीं पूछती। कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां हमें अपनी हिम्मत, अपने धैर्य और अपने फैसलों पर भरोसा रखना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, मुश्किल वक्त हमारी पूरी कहानी नहीं होता, वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा होता है। हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है, हर ठोकर हमें संभलना सिखाती है और हर मुश्किल के बाद आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खुल जाता है।

और दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम के अंत में बस हम यही कहेंगे कि इम्तिहान चाहे जितना मुश्किल क्यों ना हो, अपनी कोशिश और अपनी उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हाँ, लेकिन अभी आपको एक गाना ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन मुझे यानी अर्चना विसारे को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की शुरुआत के बाद दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री चौहान ने तेलंगाना के थिम्मापुर में किसानों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार किया है। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव एस. कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, 2 सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। इसके साथ ही ये सार्वजनिक उपक्रम के पवनहंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सेट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपने उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने लद्दाख सरकार के सहयोग से 1 महीने का प्रत्यक्ष शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम लद्दाख के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। CBSE ने बताया कि यह कार्यक्रम 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लेह, नुब्रा, जांस्कर, कारगिल, द्रास, चांगथांग, सांकू, चिकतान और अन्य उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों के विद्यालय शामिल हैं। CBSE ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कक्षा आधारित सहायता के माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की शैक्षणिक तैयारियों को मजबूत करना है। एशियाई खेल 2026 में भारत आज से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। मौजूदा महिला क्रिकेट चैंपियन भारत मेजबान जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुकाबला भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से एथलेटिक पार्क में होगा। दोनों टीमों के बीच ये पहला मुकाबला होगा। एशियाई खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने अफगानिस्तान को 3-0 से हरा दिया है। कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत ने 127 रन से जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: वाणी। द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Prime Minister Narendra Modi has positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
1: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
2: Later, addressing a press conference on the sidelines of the event yesterday, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said investment commitments worth around 1 lakh crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. The BJP launched a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan yesterday to mark Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday. The campaign focuses on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The drive also marks 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. It will continue till the 17th of next month. The Election Commission of India has asked the two rival factions of the All India Trinamool Congress AITC not to use the party name and flowers and grass symbol during the ensuing assembly by-elections in West Bengal. In its interim order, the Commission has asked them to submit the names of their groups by which they may be recognized by Commission by 11 a.m. today. The Commission gave its interim order after hearing the leaders of the two factions of the party led by Mamata Banerjee and Arup Roy. The National Testing Agency NTA has released the final answer keys for the UGC NET June 2026 examination conducted in three subjects, English, Commerce and Sociology. The keys have been made available on the official website www.ugcnet.nta.nic.in. The examination was held on 9th and 10th of this month at 454 centres across 272 cities in the country. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuk in Thimphu yesterday. In a social media post, Dr. Jaishankar said the Bhutan King's guidance to further deepen the unique friendship between India and Bhutan is valuable. India said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said the country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics. The statement came amid the passage of a bill by the U.S. House of Representatives that will allow President Donald Trump to impose tariffs of up to 100% on countries for procuring Russian

5:10 हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर, और आइए इस वक्त आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में, मैं आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म ज़मीन आसमान से।